ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 14वीं तिथि। तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण प्रारंभ होता है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

ये आकाशवाणी सागर है, सुबह के 6 बजने को हैं। अगला प्रसारण दिल्ली से होगा बस कुछ ही देर में।

0: भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर

0: आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं ये मातृवंदना समूह स्वर में।

समूह स्वर में ये मातृवंदना भी आपने सुनी और अब आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना। अनूप जलोठा और साथियों के स्वरों में

अनूप जलोटा, अनुराधा पौंडवाल और साथियों की आवाज़ों में ये भजन अभी आपने सुना। और अब आइए सुनते हैं एक ये भक्ति रचना पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में।

संत कबीर दास की यह रचना अभी आपने सुनी पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शर्मा बंधुओं से ये भक्ति रचना।

और इसी भजन के साथ भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। 6:25 हुए हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। स्वर होगा अनुराधा पौंडवाल का। भूले बिसरे गीत जरूर सुनिएगा सुबह 6:40 पर। 6:55 यह समय होगा कार्यक्रम संस्कृत समाचार सुनने का, रिले करेंगे दिल्ली से। 7 होगा दैनिक कार्यक्रम सुबह और 7:05 पर कृषि संकेत। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे। 7:20 यह समय होगा साप्ताहिक

रेडियो पत्रिका गागर में सागर का 7:50 पर संगीत सरिता का आनंद आप ले सकेंगे। 8:00 समाचार प्रभात दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8:15 पर सुनिएगा लोक संगीत। साप्ताहिक कार्यक्रम होगा बाल सभा सुबह 8:30। 9:00 विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। जिले की चिट्ठी हम सुनेंगे 10:00 रिले करेंगे भोपाल से। 10:05 पर होगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम के प्रथम भाग के प्रायोजक होंगे 287 मेरी चाय तन मन जगाए बात बन जाए। 11:00 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। दोपहर में 2:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण सुनिएगा रिले करेंगे भोपाल से। 2:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से ही रिले किए जाएंगे। दोपहर समाचार दिल्ली से रिले करेंगे दोपहर 2:15 पर। दिन में 2:30 से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे और शाम 5:00 भोपाल से सुनिएगा इस घंटे की सुर्खियां। 5:02 से कार्यक्रम होगा युववाणी। शाम 5:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं। शाम 5:40 वक्त होगा कार्यक्रम संगीत सरिता के लिए। शाम 6:00 चित्रपट संगीत 6:15 पर सुनिएगा संगीत सरिता। शाम 6:30 सुनिएगा कार्यक्रम सदाबहार गीत। 6:45 पर सुनिएगा लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। शाम 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे। 7:20 पर सुनिएगा लोक रंग और शाम 7:30 पर दिल्ली से रिले करेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आंखों देखा हाल। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर दिल्ली से। 9:00 फिर एक बार ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का आंखों देखा हाल जारी रहेगा। 10:45 रात्रि सुनिएगा चित्रपट संगीत। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 MHz पर। 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अनुराधा पौंडवाल के स्वर में।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया।

श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अभी आपने सुना अनुराधा पौंडवाल के स्वर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। वक्त हुआ है 6:40, पेश है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आशा भोसले, हेमंत कुमार और साथियों की आवाज़ों में परिवार फिल्म का ये गाना भी आपने सुना। इसकी धुन बनाई थी सलिल चौधरी ने। और अब आइए सुनते हैं फिल्म माँ का गाना मन्ना डे, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में।

0: की मदद से काम हो इंसान का।
1: अरे वाह वाह वाह
0: दोस्तों, सबकी मदद से काम हो इंसान का।
2: अच्छा जी,
0: जंग में लड़ते सिपाही और नाम हो कप्तान का। मैंने काम क्या किया, सबने साथ जो दिया, उनकी पैंट कोट काट के रुमाल कर दिया।

0: लाओ हलवा पूरी दाल, हो गया है बुरा हाल। अब तो चूहों ने पेट में धमाल कर दिया,
1: नाच नाच नाच नाच बुरा हाल कर दिया। ओ जियो जियो मेरे लाल।
0: अरे तेरी झटपट भूख मिटाता हूँ, अरे नहीं।

0: ये सब हम कुछ नहीं जानते, हम लोग शीर जीत कर लाए हैं, आज दावत होनी ही चाहिए।
1: लेकिन कैसे
0: ऐसी भाई?
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
3: सो योर प्लेस और माइन।
4: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
3: कॉन्डम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
7: और अब कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का अगला नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में है। ये फिल्म का नाम है आज और कल। साहिर लुधियानवी ने ये गीत लिखा है और धुन तैयार की है रवि ने। तो मोहम्मद रफी की आवाज में आज और कल फिल्म का ये गाना आपकी नजर।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकंडक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांतेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढ़विश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीन

0: कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 तम वर्षान्तं यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सानंद क्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायाम् एषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार बहरीन कुवैत ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमंत्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-23 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुबह।

कार्यक्रम सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोताओं को ब्रिजेश रिचारिया का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, प्रायः सभी कुछ न कुछ काम करते हैं, जाहिर सी बात है। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह की ये बात है, काम तो करते ही हैं। हाँ, कुछ जीवन यापन यानी जीव को उपार्जन के लिए, तो कुछ समृद्धि के लिए, तो कुछ नाम के लिए। कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम तो करना है, करना ही होता है। करने वाले की कुशलता का आकलन परिणाम से कर लिया जाता है। कहीं प्रशंसा मिलती है तो कहीं निंदा, और कहीं सुझाव। वैसे सभी स्वागत योग्य होने चाहिए। हाँ, काम करने में कोई आनंदित होता है, कोई थकता है, तो कोई मजबूरी का अनुभव करता है। काम के प्रति और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई काम का दीवाना होता है, कोई उससे जी चुराता है, तो कोई उसमें डूबा रहना चाहता है। किसी को काम का जुनून होता है, तो कोई जुनून को ही काम बना लेता है। ये कहा जा सकता है कि काम रहेगा सभी के साथ, उसे कैसा रखना है ये हम पर निर्भर करता है। आनंदित होकर करेंगे तो बदले में सब कुछ मिलेगा, ऐश्वर्य, प्रशंसा और सुकून, खुद को भी और जहां जहां तक आपका कर्म पहुंचेगा, उन सबको, उन सभी स्थानों पर, वहां जो जो उससे जुड़ेंगे, उसका फल जिन जिन के सामने आएगा, वे सभी सुकून पाएंगे, उन सभी को सुकून होगा। क्षेत्र कोई भी हो सकता है, इसका चयन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। शायद चयन में सावधानी इसलिए भी आवश्यक होती है कि काम बोझ न बन जाए, आपके सुख सुविधा का सामान बना रहे। आपने प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी, खेल प्रेमी सुने होंगे, वैसे ही कर्म प्रेमी भी होते हैं, और उन्हीं के लिए आज राष्ट्रीय कर्म प्रेमी दिवस भी मनाया जाता है। जी हाँ, 5 जुलाई को राष्ट्रीय कर्मठ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो निश्चित है, ये दिवस आया कैसे, कैसे बना, कर्म प्रेमी ये शब्द कहाँ से आया, जब कोई मिलेगा तभी तो, क्योंकि किसी को आप प्रकृति के साथ प्रेम करते देखते हैं, पशुओं की देखभाल करते, उनके प्रति लगाव आप देखते हैं, तो उसका नामकरण कर देते हैं, उसे प्रकृति प्रेमी या पशु प्रेमी कह देते हैं। वैसे ही कर्म के प्रति लगाव रखने वाले, कर्म से बेहद प्रेम करने वाले लोग दिखे होंगे, तभी ये इस तरह के दिवस की कल्पना की गई। और वाकई बहुत अच्छा भी लगता है, इस तरह की चीज़ें जब ध्यान में आती हैं, इन तरह को सोच करके, देख करके, और कर्मठ दिवस के रूप में मनाना, निश्चित है कर्मठ लोगों के कारण ही बहुत सारी चीज़ें आज हमारे सामने हैं। जो निरंतर विकास की धारा बह रही है, जो हम देखते हैं, वो उसके पीछे किसी न किसी का कर्म होता है। तो उन कर्मठ व्यक्तियों के प्रति भी हमारे मन में आदर होना ज़रूरी है, आवश्यक है, हमें उनका आदर करना चाहिए। और उन आदरणीय लोगों की पंक्ति में हम भी खड़े हो जाएं, इसके लिए हमें निरंतर कर्म करना पड़ेगा, अपनी कर्मठता को जीवित रखना होगा, उसे जीवटता प्रदान करनी होगी, लगातार उसे हमें काम करते रहना होगा। तो आज के लिए सुबह सुबह में बस इतना ही।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। वक्त हुआ है 7:05। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत में गोरस ऐप मध्य प्रदेश पशुपालन और डेयरी विभाग की पशुपालों का सहायक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बी के शर्मा।
1: पशुपालक साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विकसित गोरस मोबाइल ऐप एक डिजिटल पहल है जो कि पशुपालकों को गाय और भैंसों के लिए वैज्ञानिक व संतुलित आहार की सटीक जानकारी देकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए मदद करता है। इस ऐप को आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लिंक भी हम आप लोगों तक उपलब्ध करा देंगे। इसकी विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूं। गोरस ऐप की प्रमुख विशेषताएं जो हैं कि संतुलित आहार की जानकारी आप घर बैठे अपने मोबाइल पर निकाल सकते हैं कि आप अपनी गाय को क्या क्या चीज दे रहे थे, दुग्ध उत्पादन क्या है, सब उसमें आपको नाम डालना पड़ेगा, आपकी पशु की उम्र डालना पड़ेगी, वजन डालना पड़ेगा, आप क्या क्या आहार दे रहे हैं, कितना दूध देती है एक

0: दिन में, ये सब डालने के बाद में उसमें फिर बहुत सारे संतुलित आहार हैं, उस पे आप टिक करते जाइए कि कौन सा आहार आप कितनी मात्रा में दे रहे हो। आखिरी में उसका रिजल्ट निकल आएगा कि आप कम दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं या उचित दे रहे हैं। उसके बाद हम संतुलित आहार की जब जानकारी लेते हैं तो उसमें पशु की नस्ल, वजन, दूध की मात्रा, गर्भावस्था के आधार पर यह ऐप सटीक और वैज्ञानिक तरीके से बताता है कि पशु को क्या, कब और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक्सपर्ट आपको आपके घर तक ये बताने नहीं आ सकता, लेकिन ऐप की ये बहुत अच्छी सुविधा है। दूसरा एक चीज और बताएं कि स्थानीय चारे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें 28 से अधिक प्रकार के स्थानीय चारों की विस्तृत जानकारी है कि किस चारे में कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, हर चीज की आपको जानकारी मिलेगी। फिर आपको कैलकुलेटर मिलता है, तो उसके माध्यम से आपकी लागत कम कैसे की जा सकती है कि आप किस चीज को किस चीज से बदल सकते हैं। अगर आप महंगा दाना आपके क्षेत्र में मिल रहा है तो आप किस चारे से उस दाने को घटा सकते हैं, तो इस आधार पर आपको आपकी लागत कम हो सकती है। और मौसम के अनुसार आपको चारे का उपयोग भी और गर्भावस्था के अनुसार सुझाव मिलेगा कि आप गर्मी के मौसम में पशु को कैसा चारा पानी देना है या क्या क्या आपको बदलाव करना है, ये आपको से ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। ऐप एक और आपको बहुत अच्छी सलाह देता है कि नस्ल विशिष्ट के लिए आपको मार्गदर्शित करता है कि गिर, साहिवाल, थारपारकर, मुर्रा, भदावरी जैसी प्रमुख नस्लों के लिए अलग अलग सटीक मार्गदर्शन इस पर उपलब्ध है। इस ऐप में नस्ल सुधार और स्वास्थ्य सलाह भी ऐप के माध्यम से आपको बार बार हीट में आना है, गर्भधारण न करने जैसी समस्याओं के समाधान भी इस ऐप पर उपलब्ध हैं और बिना इंटरनेट के संचालन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं भी है तब भी आपका ये पूरा कार्य करता है, और पूरी तरह से ये हिंदी भाषा में है जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। और डेयरी में या पशुशाला में आपके आर्थिक लाभ का अनुमान भी लगाया जा सकता है कि क्या क्या उपाय करेंगे तो आपकी डेयरी फायदे में जाएगी या आपको कैसे कैसे आपको फायदा हो सकता है। तो यह गोरस ऐप आप लोग अवश्य डाउनलोड करें, यह पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा ऐप बनाया है पशुपालन विभाग ने। इसका उपयोग करके सभी पशुपालक लाभान्वित हों। धन्यवाद।
1: ये था हमारा आज का कृषि संकेत। मध्य प्रदेश पशुपालन और डेयरी विभाग की पशुपालकों का सहायक गोरस ऐप। विशेषज्ञ थे डॉक्टर बी के शर्मा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे बस कुछ ही देर में।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया, कहा यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात

0: के सांणंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया।
1: मुझे बताया गया है यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांणंद संयंत्र में निर्मित चिप्स का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के औद्योगिक विकास के विजन को नई गति मिलने की आशा है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के संयंत्र से इस इलाके में विकास को गति मिलेगी।
2: पुरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3,000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ये 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कि 2014-15 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल इंदौर में कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधे संवाद में कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों और बीएलओ ने मिलकर एसआईआर का काम बहुत अच्छा किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है, जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों, नागरिक समाज और जनता से सामूहिक तथा समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5,017 नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षकों के 4,067 एवं प्राथमिक शिक्षकों के 950 पदों को नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा ये नियुक्ति आदेश 3 और 4 जुलाई को जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन मंत्री श्री नारायण सिंह

अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में रीवा बाणसागर और सीधी बाणसागर मल्टीविलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के सावेर में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेज भवन के निर्माण का निरीक्षण किया। वहीं इंदौर में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के बरगांव में आज सुबह 10 बजे से विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कैरियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा के ओंकारेश्वर के प्रसिद्ध ममलेश्वर मंदिर में विकास कार्यों की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आगरमालवा के सुसनेर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तौर तरीके सिखाए। और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान भारत, सिकल सेल और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांणंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 MHz पर सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर।
1: गागर में सागर
2: पत्रिका गागर में सागर को लेकर हाजिर हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस पत्रिका कार्यक्रम में सबसे पहले पेश है सागर मंथन।
1: सागर मंथन।
2: राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर सागर जिले में स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर एक विशेष पहल देखने को मिली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर कपूरिया में एक दिवसीय टीबी जांच और जागरूकता शिविर के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी से लेकर जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर तलहा साध ने बताया,
3: इस शिविर में कई सारे मरीजों की जांच की गई और टीबी से संबंधित और अनेकों अनेक जो बीमारियां आज के समय में व्याप्त हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, इसके बारे में भी मूलभूत जानकारी मरीजों को दी गई। आम जनता ने इससे काफी ज्यादा लाभ उठाया और आने वाले समय में इस प्रकार की आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि सरकार के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जैसा काम कर रहा है, जो कि सागर में 247 केंद्र हैं, उनमें और आगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस तरह के जागरूकता शिविर आयोजित करता रहेगा।

0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 का शुभारंभ रविवार को मकरोनिया नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 16 के संत रविदास वार्ड स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में किया गया, जहां सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े ने बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस विशेष अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। अभियान के पहले दिन पोलियो बूथ पर बच्चों को दवा पिलाई गई, फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सेविकाओं की टीम ने घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाई। ये हैं उनके अनुभव।
1: माया अहलवाल, ANM है। हम जानना चाहते हैं ये पल्स पोलियो अभियान कैसा रहा, कब से कब तक रहा, और आप लोगों ने बच्चों को कैसे पोलियो ड्रॉप पिलवाए इसके बारे में।
2: अच्छा जी, पल्स पोलियो मतलब 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है दवाई जी। अपना 28 तारीख से 30 तक का 3 दिन का प्रोग्राम था जी। पहले दिन तो अपन आंगनबाड़ी में बैठकर बूथ बनाते हैं, जो मतलब जितने बच्चे रहते हैं तो आंगनबाड़ी सहायक जो कार्यकर्ता रहती है सब लोग बुला कर ले आते हैं बच्चों को। फिर दूसरे दिन का रहता है दूसरे, और तीसरे दिन घर घर का रहता है जी। इसमें कोई बच्चा छूट ना पाया अपना तो घर घर जाके पूरा क्षेत्र कवर करते हैं, जो भी कार्यकर्ता रहती है अपने इसमें पोलियो अभियान में। सफलतापूर्वक अच्छे से हुए अपन जैसे वैक्सीन, जैसे अपन जो 1.5 माह में बच्चा होता है वैक्सीनेशन होता है उसके साथ पिलाते, फिर 1 महीने बाद फिर पिलाते हैं इसमें।
0: डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस के विभाग द्वारा वर्ल्ड ड्रग डे पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें नशाखोरी से होने वाली समस्याएं और उनसे निपटने के उपाय पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम की कन्वीनर रही क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर ममता पटेल। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में सीजन के अंतिम दिन पर्यटकों को रोमांचक नजारा देखने को मिला। जंगल सफारी के दौरान बाघ N3 और बाघिन N112 एक साथ दिखाई दिए। इस दुर्लभ पल को लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया। मानसून के चलते अब टाइगर रिजर्व अगले 3 महीने तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। जंगल सफारी का संचालन पुनः 1 अक्टूबर से शुरू होगा।
3: अधिक जानकारी देते हुए हमारे साथ मौजूद हैं
4: DFO वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व श्री रजनीश कुमार सिंह।
3: आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पर्यटन पर 3 महीने की रोक लगती है टाइगर रिजर्व में, ये क्यों है, क्या है और इससे लाभ क्या है?
5: देखिए, जो हम वन्य प्राणी क्षेत्रों में पर्यटन के लिए जाते हैं तो हम ऐसा समझें कि हम वन्य प्राणियों के घर में उन्हें देखने जाते हैं, उनके व्यवहार को, उनके रहन सहन को देखने जाते हैं, और निश्चित ही हम उनके घर में जब घुसते हैं तो थोड़ा वो असहज होते होंगे। तो एक तो सोच ये है कि कम से कम 3 महीने तो उन्हें हम आराम से रहने दें, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे वन्य प्राणी बारिश के समय ही बच्चे देते हैं, क्योंकि हिरण और दूसरे जो डियर और एंटीलोप्स हैं उनके बच्चों के लिए बहुत सारी हरी नरम घास होती है, तो वो भी इसी समय बच्चे देते हैं, और कार्निवोर्स भी बहुत सारे इसी समय बच्चे देते हैं। तो उन वन्य प्राणियों के जो बच्चे हैं, शावक हैं या छौने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी होता है। और तीसरी बात यह है कि हमारे जंगलों में कोई पक्की रोडें तो होती नहीं है, जंगल की कच्ची मिट्टी की रोड होती है, तो पर्यटकों की गाड़ी उसमें फंस सकती है, उनको कोई दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। तो पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से भी बारिश के समय वन्य प्राणी क्षेत्रों में पर्यटन बंद रखा जाता है।
0: भारत सरकार की नागरिक सुरक्षा संवर्धन योजना के अंतर्गत होमगार्ड मैदान में आयोजित होमगार्ड एवं SDRF का 7 दिवसीय सिविल डिफेंस क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपदा के समय पहला रिस्पोंडर स्थानीय नागरिक ही होता है, इसलिए इस विशेष शिविर में 150 युवाओं, वार्डन और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को आपदा राहत से जुड़े आधुनिक उपकरणों का कड़ा और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। नागरिकों को आधार सेवाओं का त्वरित और सुगम लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। सभी विद्यालयों में जुलाई व अगस्त माह में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर बताया गया है कि 5 से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करना अनिवार्य होगा। समय पर अपडेट होने से छात्रवृत्ति सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने में सरलता होगी।
4: अधिक जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन जी।
6: मैडम, एक शासन की योजना है, इसमें क्या है, हम इसके माध्यम से सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों के जो बच्चे हैं उनकी अपार आईडी बनाते हैं। अपार आईडी में कभी कभी क्या होता है कि आधार की जो डेट ऑफ बर्थ या उनकी मार्कशीट

0: उसमें कुछ मिसमिस हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमको उनके आधार अपडेट करेंगे, इसके लिए हमारे सभी विकास खंडों में उनकी आधार मशीन लगाई गई हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सारे बच्चों की हमारी अपाराडी बन जाए। अपाराडी लगभग 70% तक जिले की बन पाई है
1: जी।
0: तो इसमें क्या अगर बन जाती तो वो अपाराडी बहुत महत्वपूर्ण है काम की। मान लो आप मुंबई में हो और कोई कुछ काम है तो आपको अगर आप अपाराडी बता दो, अपाराडी में सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपके मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट है, आधार है, सब कुछ रहेगा उसके अंदर में। तो आप कुछ नहीं करना, आप विदेश में भी तो अपराडी से आपका सारा काम हो सकता है। बहुत हेल्पफुल है और आपकी बहुत सहयोग, कुछ नहीं ले जाना आप कहीं भी, आपको एक आप मोबाइल पर डाल लीजिए, अपराडी डाल लीजिए अपनी, तो सारी कुछ आपको जानकारी मिलेगी और आपको सारा कुछ डाटा ले लिया जा सकता कहीं है नहीं है। उससे आपके निवास प्रमाण पत्र, आपके मार्कशीट डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे आपको उसमें।
1: सागर जिले में इस वर्ष मानसून करीब 15 दिन की देरी से पहुंचा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसका असर अब जुलाई मौसम पर भी दिखेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि जून में सामान्य से 17 मिलीमीटर कम बारिश दर्ज होने के बाद जुलाई में भी झमाझम बारिश की संभावना दूसरे वर्षों की तुलना में कम रह सकती है। प्रशांत महासागर में सक्रिय एलनीनो की स्थिति और मानसूनी गतिविधियों की अनिश्चितता के कारण जून और जुलाई दोनों महीनों का बारिश का कोटा पूरा होना चुनौतीपूर्ण रहे। अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, शिखर की ओर।
2: शिखर की ओर
1: आज इस प्रोग्राम में लाए हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धि। चर्चा में हमारे साथ हैं सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े।
3: देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उम्मीद और आकांक्षाओं के नायक, हिंदुस्तान के क्षितिज पर दैदीप्तमान हस्ताक्षर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से हिंदुस्तान की दशा और दिशा को बदला है, जिस तरह से 2014 में उन्होंने जब सबसे पहले शपथ ली थी और लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था उसको शब्दशः धरातल पर उतारने का उन्होंने कार्य किया है और आज उनके कार्यकाल के सफल यशस्वी 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो ऐसे कई कार्य हैं जिन्होंने हर वर्ग को छूना है, काम किया है, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है और जिस तरह से उन्होंने भारत को विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना की है, जो मंत्र दिया है, आजादी का जो अमृत महोत्सव जो हमने मनाया था तो उन्होंने समस्त भारतवासियों को पंच प्रण दिए थे जिसमें हमारा एक प्रण है विकसित भारत। तो विकसित भारत के निर्माण के लिए जो भी उसके आधारभूत तत्व हैं जिनसे हम विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, उन्होंने कहा कि देश में कोई जातियां नहीं है, देश में केवल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। यदि हमने इनका सशक्तिकरण कर दिया, इन्हें सशक्त कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकती और इसी दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं, निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज हमारा युवा आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो और युवा हमारा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है। किसानों की जिस तरह से समृद्धि हो रही है, कृषि को लाभ का धंधा बनाने के जिस तरह से प्रयास हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए हैं वे ऐतिहासिक है, अद्वितीय है। इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित करना चाहता हूं, इस दिशा में भी उन्होंने ठोस कदम उठाया और उन्होंने देश में आज 14 करोड़ जिस तरह से शौचालय बनाकर आधी आबादी को जिस तरह से उन्होंने एक उनका सम्मान सुनिश्चित करने का काम किया है, इज्जत घर बनाकर दिए हैं, ये चिंता कभी पूर्व में किसी ने नहीं की कि महिलाओं के लिए ये कितनी तकलीफ की बात होती थी कि इस जमाने में भी आजादी के 50 वर्ष बाद भी किसी ने महिलाओं की इस दिक्कत को नहीं सोचा। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो शब्दशः किया और आज सभी ऐसा कोई घर नहीं होगा देश में जहां शौचालय ना हो। इस तरह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, आज हमारे देश में हमने 10 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का ध्येय लिया है जिसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं, अपने आत्म सम्मान के साथ वो जी रही हैं, वो स्वावलंबी बनी हैं, आत्मनिर्भर बनी हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी सरकार का 12 वर्ष का है और साथ ही जिस तरह से आप सब देखते हैं कि इतनी सारी योजनाएं और आज जिस तरह से जनधन योजना के माध्यम से हम समझते हैं हमारे देश के 95 लोगों के खाते खुले हुए हैं और लोग जनधन योजना का लाभ ले रहे हैं, जिस तरह से सारी की सारी योजनाओं का 100% लाभ हितग्राहियों को उनके खाते में मिल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत यह बना है, यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ साथ ही जिस तरह से युवाओं के लिए स्वरोजगार से जुड़ने के लिए स्टार्टअप जैसी योजनाएं, युवा स्वरोजगार योजनाएं, युवाओं को 10,000 से लेकर 10 करोड़ तक का लोन देकर उनको उद्योग स्थापित करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको रोजगार बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारी चारों जात, जो उन्होंने कहा है कि देश में कोई जात पात नहीं है, केवल चार जातें हैं, उनका सशक्तिकरण करने की दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का जो संकल्प लिया है, जिस तरह से लोक कर्तव्य पथ बना है, जिस तरह से हमने धारा 370 हटाकर हमारे इतिहास के कलंकों को धोने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और भी ऐसी राम मंदिर बनाकर देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र भगवान राम का मंदिर बनाकर लोगों में जो विश्वास और लोगों में जो आस्था और जो भक्ति थी उसको जागृत करने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है, ये सब उनकी जो 12 वर्ष की उपलब्धियां हैं। देश की सुरक्षा सीमा की यदि मैं बात करूं, जिस तरह से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके जो उन्होंने संदेश देने का काम किया है कि अब भारत ना रुकता है, ना झुकता है, ना दबता है, अब भारत भारत है, भारत के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, ये विश्वास देश के 140 करोड़ लोगों को देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है, ये हमारे 12 वर्ष की अनंत उपलब्धियां हैं।
1: और अब बारी है इस पत्रिका के अगले चरण की, सागर के मोती।
2: सागर के मोती।
1: आज के इस अंक में शामिल हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल श्री विजय अहिरवार। कहते हैं कि जिद और लगन के आगे मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं। इस बात को सच कर दिखाया है सागर के 27 वर्षीय विजय अहिरवार ने। विजय जी ने लगातार 6 असफलताओं का डटकर सामना किया और आखिरकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद हासिल कर लिया। खास बात यह है कि विजय जी ने SC कैटेगरी में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह एक साधारण परिवार से हैं और उनके पिता शिक्षक हैं। विजय जी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने शुरुआत से ही केवल MPPSC को ही अपना एकमात्र लक्ष्य माना। उन्होंने कभी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म तक नहीं भरा। हालांकि ये सफर बेहद कांटों भरा था। वे 6 बार परीक्षा में बैठे, जिसमें से 2 बार वो अंतिम इंटरव्यू राउंड तक भी पहुंचे, लेकिन मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। हर हार के बाद उन्होंने अपनी कमियों को सुधारा और रोजाना कई घंटे किताबों के साथ बिताए। विजय जी की ये संघर्षपूर्ण कहानी आज सोशल मीडिया पर उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो परीक्षाओं में असफल होकर हताश हो जाते हैं।
4: मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ है, जिसमें मेरा 16वां स्थान आया है और SC कैटेगरी में मेरा प्रथम स्थान आया है। जो इसका जो नोटिफिकेशन है खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद का, 2025 में आया था शुरुआत में, तो उसका इसके लिए मुझे प्रॉपर 1 साल का समय लगा है और 14 दिसंबर को इसकी परीक्षा हुई थी, तो कुल मिलाकर इसमें मैंने अपना 1 साल का समय दिया है। इसके अलावा 2020 से मैंने निरंतर मध्य प्रदेश लोक सेवा की जो परीक्षाएं हैं, जो राज्य सेवा परीक्षा है और वन सेवा परीक्षा है, उसके मैंने सभी 2020 से लेकर निरंतर अभी वर्तमान तक सभी मेंस लिखे हुए हैं और उसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ और आज मैं वर्तमान में अभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर चयन हुआ है।
1: अगले पायदान पर ये है माटी की महक।
2: माटी की महक।
1: आज ई कार्यक्रम में हमारे संगे हैं बुंदेली कलाकार,
5: और खास बात यह है कि इतने युवा होके भी अपनी जो संस्कृति है वो को आगे लेके चल रहे। तो भैया का नाम तुम्हारो?
6: हमारा मैम राजा जाटव नाम है और हम दिल्ली गांव के रहने वाले हैं।
5: अच्छा, तो राजा जा बताओ कि जो बुंदेली लोक गीतों का जो शौक भाव वो कब से भाव?
6: मैडम हम छोटे हते जब सो का हो के कहूँ मोहल्ला पड़ोस में ऐसे भजन अजन होते, तो मतलब अंदर ही से रुचि सी रही शुरू से, तो मम्मी पापा ने भी तो रोको टोको नैया भी सपोर्ट में रहे हमारे, तो ऐसे जात रहे धीरे धीरे, तो अभ्यास करत रहे तो दिमाग में तो।
5: अभी आप कह रहे थे कि बचपन से गा रहे अपन, तो कुछ कुछ लाइनें याद आ रही हुई है तो।
6: हाँ मैडम बिल्कुल सुना रहे हम, एक हमने लिखी थी कटाई कटाई हुई लगा थे तो महिलाएं मतलब अपने आत्मन से कह रही है।

0: अरे वाह भैया, जा तो बहुत अच्छी। देखो तुम महिलाओं की विपदा भी समझ रहे हैं। जाओ और बताओ राजा, हम जा जानना चाह रहे हैं कि जब बुंदेलखंड के ही कहा है तुम, तो बुंदेलखंड की और का का चीजें हैं जो अपन को बहुत भात।
1: सबसे बड़ी बात तो बुंदेलखंड में रेवड़ी सबसे बड़ा सौभाग्य की बात कहा है। कैसे इनमें एक से अच्छे कलाकार रहे, सूरवीर रहे, और इतने की माटी की जितनी महानता करी जाए उतनी कम है। हम अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझा था कि बुंदेलखंड में हमने जन्म लाओ। बुंदेलखंड वीरों की धरती कहा उस
0: क्या बात है भैया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। और राजा जाटव जो नाम एक ऐसा हो रहा हो कि देखो आजकल या जुग जो है तो आधुनिक जुग है, जो सोशल साइट रहे तो वहाँ पे भी लोग बहुत प्रसार प्रचार कर रहे हैं। तो भैया हमने सुनी कि राजा जाटव भी खूब छाए हैं, तो जा सोशल साइट पे आप लोग गीत तो लगात हो, और ओके अलावा का का लगात।
1: जैसे बुंदेली में अपना जो कछु सरकारी योजना कड़ियात जैसे, तो उसमें अपन अपनी डील के माध्यम से लोगों को बताऊ थे कि भैया ऐसी ऐसी जा योजना है। जैसे कोनो अपने बुंदेली में कछु सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो तो उसके बारे में अपन और अपनी डीलों के माध्यम से बताते हैं।
0: का बात है, देखो राजा आप तो लोगों को जागरूक कर रहे, कहा है
1: हाँ बस
0: जा तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप जा बता दो कि कछुआ और सुना रहे हमारे श्रोताओं के लाने।
1: बिल्कुल सुना है।

गान गुजरिया कछु बचत ना उतर जात सब मस्ती। बात खो तनक बेचार और ए बात खो तनक।

0: अब राजा हम पूछना जा चाह रहे कि जैसे तुम गात हो तो क्या कछु वाद्य यंत्र भी बजाए जा तो गावे के साथ साथ, तो बजा लेत कछु?
1: आओ मैडम, हम ढोलक बजात हैं और लंगड़िया भी बजा लेते हैं।
0: तो एक काम और कर दो, देखो नगड़िया भी रखी और ढोलक भी रखी, तनक ढोलक बजा अपन को सुना दो, श्रोता खुश हो जाए और नगड़िया भी सुना दो।

0: अरे भाई वाह, मतलब तुम तो संगीत जगत से जुड़े भाई कहा है। अब चलत चलत हम राजा ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बुंदेली लोकगीत गायक है जो उनका लोकगीत आपको अच्छा लगे, तो हम आपको सुनवा रहे और श्रोताओं को सुनवा रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारा लाने लालजी पटेल है, जो उनको हमें देवी जी को एक भजन बहुत अच्छा लगा थे, नौ दिन को चली आई हो दुर्गा माई।
0: थोड़ा गुनगुना दो फिर हम राजू पटेल जी की आवाज में भी सुनवा दे रहे।
1: ये नौ दिन को चली आई हो तारे दा, नौ दिन हो

0: इस सप्ताह चर्चा में अब बारी है इस सेगमेंट की।
1: इस सप्ताह चर्चा में
0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को सेशेल्स की संसद राष्ट्रीय सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हिंद महासागर भारत और सेशेल्स को अलग नहीं करता बल्कि जोड़ता है, इसी वजह से हम अजनबी नहीं पुराने दोस्त की तरह मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया। ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, जलवायु बदलाव से निपटने के प्रयास और छोटे द्वितीय देशों की मदद के लिए दिया गया ये अवार्ड पहली बार किसी विदेशी को मिला है। एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी बुराई जिसने समाज की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया है, जिसे हम मादक पदार्थों की लत या नशाखोरी कहते हैं। नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार और उनका दुरुपयोग आज किसी भी देश, समाज और वर्ग की समस्या नहीं रह गया, बल्कि ये एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। इस वैश्विक संकट के प्रति दुनिया भर के देशों को जागरूक करने, एकजुट करने और इस खतरे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के उद्देश्य से हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में भी ये दिवस दुनिया भर में एक नए संकल्प, नई ऊर्जा और नई रणनीतियों के साथ मनाया गया। इस वर्ष का मूल मंत्र और हमारा परम लक्ष्य स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य का संकल्प। ये नारा केवल एक औपचारिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि हमारे समाज के हर नागरिक, विशेषकर युवा पीढ़ी को नर्क की इस दलदल से बाहर निकालने और एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व की स्थापना करने का एक वैश्विक आह्वान है। और अब साहिबा को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह होगी फिर मुलाकात। निर्माण व स्वर साहिबा नासिर का, प्रस्तुति व संयोजन दीपक निषाद का।
1: गागर में सागर।
2: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर, प्रस्तुति दीपक निषाद की थी।

0: आकाशवाणी सागर का प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:50 हुए हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। पहले सुनते हैं ये कुछ संदेश।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
2: अरे काय भैया, ये सब मुंह लटकाए काय कहूं दिए थे?
3: अब का बताएं भज्जा तुमके, कोनो ये कहु परेशानी होए तो बतावे, ये तो राम भाई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
2: अरे भैया ये सब का होगा, कुछ तो बताओ।
3: अब तुम्हें का बताएं भज्जा, कबहू जो ढोर बीमार, कबहू वो ढोर बीमार, कहूं एक खोजा परेशानी, कहूं वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
2: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 से फोन लगत है, वो में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
3: अच्छा अच्छा हाँ। हाँ,
2: हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20। हाँ, हाँ। और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845। बड़े समझदार हो, इसमें कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, और सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर है 9774 3227।
3: एक बार फिर से बता दे भैया।
2: भैया फिर से लिख लो, ये में कछु परेशानी नहीं, 9774 3227।
3: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लो तो फिर बात साहब।
2: अरे
3: अच्छा जा बताओ भज्जा, ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
2: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें, लगाओ हेलो।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: और अब संगीत सरिता में आइए सुनते हैं ये गीत सपना अवस्थी की आवाज में।

और इसी के साथ अब कार्यक्रम संगीत सरिता समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं समाचार प्रभात, कुछ ही देर में रिले करेंगे दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
5: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये है आकाशवाणी का सागर केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये लोकगीत सीताराम कुशवाहा के स्वर में।

आवे जो भी उन्हें रिझावे आज नजरिया

0: सीताराम कुशवाहा और साथियों की आवाज़ों में ये लोकगीत अभी आपने सुना।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब आइए सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये लोकगीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत के तहत कुछ बुंदेली लोक गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शकुंतला राजपूत से ये लोक गीत।

शकुंतला राजपूत के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा।

स्वागत है सभी नन्हे श्रोताओं का आपकी अपने मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा में और आप सभी को ऋतु दीदी का जय हिंद। प्यारे बच्चों, कर ली है हमने आपसे मुलाकात और हम आपसे करेंगे बहुत सारी बात। करते हैं पहले बाल धमाल की बात। जी हाँ बच्चों, और बाल धमाल की बात होगी तो बात होगी आप बच्चों की। बच्चों, बाल धमाल तो हमें करना ही है, क्योंकि हम नन्हे नन्हे बच्चे धमाल ना करें तो फिर कैसे मजा आएगा, है ना बच्चों। लेकिन नई क्लासेस शुरू हो गई है ना, और नए नया जाना स्कूल में बहुत अच्छा लग रहा है ना बच्चों। नया सत्र, नई किताबें, नए दोस्त, नए टीचर, है ना। तो नए सपनों के साथ आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर आ गया है। तो बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करें, शिक्षकों का सम्मान करें, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, और याद रखें आज की मेहनत ही आपके उज्जवल भविष्य की नींव है। तो दीदी की बताई बातों को हमारे बच्चे जरूर याद रखेंगे, हम जानते हैं। और अब करते हैं धमाल।

0: जादू। हाँ बच्चों, नाम सुना है ना? हाँ प्यारे बच्चों, अरे देखो देखो यूएफओ, ये नाम आपने भी सुना होगा। यूएफओ कभी कभी आसमान में ऐसी रहस्यमयी चीजें दिखाई दे जाती हैं जिसे पहचानना मुश्किल होता है। ऐसा ही है यूएफओ। बच्चों यूएफओ क्या है? जादू सुनकर हमें कुछ याद आया ना। यूएफओ का पूरा नाम है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी उड़ती हुई वस्तु जिसकी पहचान तुरंत ना हो सके। ध्यान रखे बच्चों, जिसकी पहचान तुरंत ना हो सके। कई वर्षों से दुनिया भर के लोग यूएफओ के दिखने का दावा कर रहे हैं। किसी ने आसमान में चमकती गोल रोशनी देखने की बात कही है, तो किसी ने तेज गति से उड़ती हुई अजीब आकृति देखने का दावा किया है। इन घटनाओं से लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है। यूएफओ से जुड़ी कहानियाँ, फिल्में, किताबों और कॉमिक्स में भी हम बहुत पढ़ते हैं और ये बहुत लोकप्रिय भी हैं। बच्चों और बड़ों दोनों को ही यह कल्पना रोमांचित कर जाती है कि कहीं ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी जीवन हो सकता है। वैज्ञानिक भी अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार अभी तक एलियंस के होने का कोई सही तथ्य सामने नहीं आया है। तो बच्चों, हालांकि हर यूएफओ एलियंस का अंतरिक्ष यान नहीं होता, कई बार लोग किसी ग्रह, उपग्रह, मौसम, गुब्बारे और ड्रोन या विमान को देखकर भी अचंभित हो जाते हैं और हमारे वैज्ञानिक ऐसी ही घटनाओं की जांच करते हैं और उनके पीछे के कारणों को भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं समझ और समय से पहले अचंभित कर जाती हैं। यूएफओ का रहस्य हमें सिखाता है कि जिज्ञासु बनो और सवाल पूछो। विज्ञान भी सवालों से आगे बढ़ता है और हमारे बच्चे भी सवालों के जवाबों को ढूंढते हैं, जिज्ञासु हैं और हर पल सीखते रहते हैं, है ना बच्चों? तो आज जानी हमने यूएफओ की बात और अब चलते हैं रेडियो की पाठशाला की ओर।
1: तो बच्चों ये है
2: रेडियो की पाठशाला।
0: अरे बच्चों, रेडियो की पाठशाला की बात अब हम आपसे करेंगे और आज जानेंगे रेडियो की पाठशाला में बच्चों, साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता और मेजबानी भारत कर रहा है। ये बात आपने पढ़ी भी है, सुनी भी है। ब्रिक्स मूल रूप से दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी इकोनॉमिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य शामिल हैं। ब्रिक्स 2026 का लोगो भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। कमल शांति, शक्ति और आगे बढ़ने का प्रतीक है। यह लोगो भारतीय संस्कृति, एकता और सहयोग की भावना को प्रदर्शित करता है। लोगो के केंद्र में नमस्ते मुद्रा में दिखाया गया है, जो सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। कमल की पंखुड़ियां ब्रिक्स देशों के रंगों को दर्शाती हैं, जो एकता, विविधता और साझे उद्देश्यों यानी कॉमन पर्पस का संदेश देती हैं। ब्रिक्स 2026 की थीम बिल्डिंग फॉर रेसिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्यारे बच्चों, ये बात आपने सुनी भी है, पढ़ी भी है, क्योंकि ये बात पहले की है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम फिर भी जानकारी के लिए रेडियो की पाठशाला में हर बार कोई ना कोई ज़रूरी बात आपके लिए लेकर आते ही हैं। तो बच्चों, ब्रिक्स का लोगो और थीम हमें सिखाते हैं कि मिलकर काम करने से हम बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, नई सोच और मेहनत से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और प्रकृति की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। रेडियो की पाठशाला में बात इतनी ही और अब बात करेंगे झांकी हिंदुस्तान की।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं
2: झांकी हिंदुस्तान की।
0: बच्चों झांकी हिंदुस्तान की में आज फिर एक नई जरूरी बात हम आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चों बात करते हैं मोईदम्स। ये नाम शायद बच्चों आपने नहीं सुना होगा, हो सकता है किसी किसी बच्चे ने इस नाम को सुना भी हो। तो आइए इस बार असम के मोईदम्स के बारे में जानते हैं। बच्चों मोईदम्स असम राज्य में स्थित राजाओं और रानियों की कब्रें यानी कि रॉयल बरियल माउंट्स हैं। ये असम के चराईदेव जिले में स्थित हैं, इसलिए इन्हें चराईदेव मोईदम्स भी कहा जाता है। मोईदम शब्द का अर्थ है आत्मा का घर। इनकी तुलना मिस्र के पिरामिडों से की जाती है। इनके अंदर एक समाधि कक्ष यानी बरियल चैम्बर होता है जिसमें राजाओं के साथ उनकी उपयोग की चीजें भी दफन की जाती हैं। मोईदम्स मिट्टी और ईंट से बनी टीले नुमा संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स हैं जिनका आकार ऊपरी आकार शंकु या कौन जैसा दिखाई देता है। वर्ष 2024 में यूनेस्को ने चराईदेव के मोईदम्स को विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो बच्चों झांकी हिंदुस्तान की में हमने बात की मोईदम्स की और अब हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आज बाल मंच में किससे मुलाकात होगी। तो आइए
1: लेकर आए बच्चों का शो
3: बाल मंच।
0: और आज हमारी स्टूडियो में नन्हे कलाकार जो आए हैं बड़े प्यारे से हैं, छोटे से हैं और आइए इनसे मिलते हैं, इनका नाम जानते हैं। बेटा आपका क्या नाम है?
4: कश्यप शुक्ला।
0: कश्यप आप ये बताइए कि आज हमारे जो नन्हे श्रोता आपको सुन रहे हैं उन्हें आप क्या सुनाएंगे?
4: मेरी टीचर सबसे न्यारी दुनिया में है सबसे प्यारी, प्रेम पाव का पाठ पढ़ाती, नए खेल सिखाती।
0: बहुत ही अच्छी कविता जो है कश्यप ने सुनाई है। तो आपकी टीचर इतनी प्यारी है और क्या सिखाती हैं आपकी टीचर?
4: अनार।
0: और ये कविता आपको किसने सिखाई है?
4: मम्मा ने।
0: वाह, अब हम एक और प्यारी प्यारी सी बिटिया से बात करते हैं और ये बहुत ही क्यूट सी लग रही है। बेटा आपका क्या नाम है?
5: मेरा नाम कंचन।
0: कंचन आप ये बताइए कि आप आज हमारे नन्हे श्रोताओं को क्या सुनाएंगी?
5: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्व सरगों में सास, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना कभी ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोटा खोल लगाती हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आती हैं, मिलते नहीं सहजीले मोटी गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजीले मोटी गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भाग को तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,

0: इतनी प्यारी सी बिटिया और प्यारे शब्दों में इसने अपनी कविता को सुनाया है और ये बहुत ही बड़ी और प्रेरणादायक कविता है। बेटा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये कविता आपने कहाँ से सीखी है।
1: ये कविता मैंने अपनी मम्मी से सीखी है।
0: माँ जो होती है वो बच्चों की प्रेरणादायी होती है। माँ से प्रेरणा लेकर बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आप अपने नन्हे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई बड़े हो तो उनका आदर सम्मान कीजिए और उनके साथ प्रेम से रहिए। धन्यवाद।
0: बहुत ही अच्छी बात की है कंचन ने कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और उनकी बताई हुई सीख को अपने अंदर लेना चाहिए ताकि हम भी उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बाल मंच, मजा आया ना? और अब जानते हैं हम कि दीदी ने इतनी सारी बातें की, बाल मंच में बाल कलाकारों से मुलाकात भी हो गई, लेकिन बाबा के पिटारे की बात अब आ गई है। बच्चों, तो आइए

बच्चों, बाबा फिर आ गए लेके एक और प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है पानी से भरी बदली। बच्चों, बहुत पुरानी बात है, एक थी छोटी सी बदली, उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे। देखो देखो कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली, देखो देखो। सारे बच्चे यही चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। बदली ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? हवा ने कहा, हाँ तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। अच्छा तो चलो, मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, बदली ने कहा। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था। बदली उसमें अपना रूप ना निहार सकी। हवा उसे उड़ाकर एक नदी के ऊपर ले गई। गर्मी के कारण नदी की धारा भी सूख गई थी, कहीं कहीं कीचड़ या गंदा पानी बह रहा था। बदली नदी में भी अपना मुंह नहीं देख पाई। उसने सोचा, समुद्र में तो पानी होता है, वहीं चलते हैं। उसने हवा से कहा, हवा बहन मुझे समुद्र की ओर ले चलो। हवा गर्दन हिलाती हुई बोली, ना ना मैं वहां नहीं जा सकती, समुद्र तो बहुत दूर है और मुझे काम भी है। तुम भी सुनो, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। कौन सा काम? बदली ने पूछा। तभी काले बादलों का झुंड गड़गड़ाता हुआ उसके पास से गुजरा। बदली ने उनसे भी पूछ लिया, बादल भैया क्या मैं सुंदर हूँ? बादल जोर से गड़गड़ाए और बोले, हमारे पास ये सब देखने की फुर्सत नहीं है, देखती नहीं हो, धरती सूखी है, हमें अपना काम करना है, प्यासी धरती पर पानी बरसाना है। अरे हाँ, मेरा भी तो यही काम है, अपनी सुंदरता निहारने के फेर में मैं तो अपना काम ही भूल गई। ये कहकर बदली भी बादलों के साथ चल दी। उसने बादलों के साथ मिलकर खूब पानी बरसाया। अपना काम पूरा करके उसने बड़ा हल्का महसूस किया। वो फिर हवा में तैरने लगी। अपनी सुंदरता देखने की इच्छा उसकी मिटी नहीं थी। वो हवा से बोली, देखो हवा बहन, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां मैं अपना सुंदर सा मुखड़ा देख सकूं। हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब का पानी तो मटमैला था, अभी अभी बारिश जो हुई थी।

मिट्टी पानी के साथ बहकर आई थी। तालाब का दर्पण धुंधला था, बदली अपना रूप ना देख सकी। हवा उसे नदी के ऊपर ले गई, वहां भी वही हाल था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। बदली उदास हो गई। वो रुआंसी होकर बोली, हवा बहन, मैं अपना सुंदर चेहरा कहाँ देखूं? हवा, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? हवा मुस्कुराई और बोली, तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? तो चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। हवा उसे खेतों और मैदान के ऊपर ले आई। उसने बदली को नीचे झांकने को कहा, पर यहाँ तो कोई दर्पण नहीं है। बदली नीचे देखकर बोली, वो देखो, खेतों में खुशी खुशी हल चलाते किसान, वो पानी में उछलते कूदते बच्चे, वो खुशी से झूमते पेड़, चहचहाते पक्षी, वो धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, इन्हीं के चेहरों में तो तुम्हारा सौंदर्य है। ध्यान से देखो अपनी सुंदरता को। बदली ने देखा और देखती रही धरती के सौंदर्य को, प्राणियों के चेहरों पर फैली हुई सुंदरता को। वो खिल उठी, सचमुच मैं बहुत सुंदर हूँ। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? हमें जरूर बताना, बाबा फिर आएंगे लेके एक और प्यारी सी कहानी। तब तक बाबा ये चला।

प्यारे बच्चों, अच्छी लगी ना कहानी? बाबा के पिटारे में से हर बार बहुत ही जानकारी भरी नई नई कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ हम सुनते हैं। और अब बात करते हैं बातों में। जी हाँ बच्चों, बातों बातों में आप बच्चों के साथ हो तो समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब बातों बातों में आज बात करते हैं बच्चों, चमगादड़ उल्टे लटक कर क्यों सोते हैं? बच्चों, चमगादड़ उल्टा इसलिए सोते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें और आसानी से उड़ सकें। बच्चों, चमगादड़ के उल्टे लटक कर सोने का मुख्य कारण उनकी विशेष शारीरिक बनावट है, जिस कारण वे जमीन से सीधे उड़ान नहीं भर सकते। उल्टे लटकने से वे आसानी से उड़ान भर सकते हैं और सुरक्षित रहते हैं। उनके पैरों की पकड़ यानी कि जो ग्रिप है वो बहुत मजबूत होती है। जब वे किसी डाल या छत को पकड़ते हैं तो उनके पैर अपने आप लॉक हो जाते हैं, जिससे उन्हें लटकने में कोई मेहनत नहीं लगती। इसलिए आपने देखा होगा ना, चमगादड़ उल्टे लटक कर ही सोते हैं। तो अब आपको पता चल गया? हाँ। और अब फिर से करते हैं बाल धमाल।

और प्यारे बच्चों, यूं ही हंसते मुस्कुराते आप रहें, इन्हीं दुआओं के साथ घड़ी की टिक टिक करती सुई इशारा कर रही है कि समय हो चला है अपने नन्हे श्रोताओं से अनुमति लेने का। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। अपनी ऋतु दीदी को कार्यक्रम बाल सभा से अनुमति दीजिए और सभी बच्चों को जय हिंद।

अभी आपने सुना खासकर बच्चों के लिए संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.6 MHz पर। सुबह के 9 बजने को हैं, अगला प्रसारण मुंबई से होगा बस कुछ ही देर में।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में यारियां फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे बैंगिस्तान फिल्म का गाना। लीजिए सुनिए लव ब्रेकअप्स जिंदगी, इस फिल्म का गाना बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और तर्ज बनाई है सलीम सुलेमान ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है देवी श्री प्रसाद ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं मोहसिन शेख, ज्योतिका टांगरी मेलोडी और ऐश्वर्या भंडारी की। दानिश साबरी ने लिखा इसे और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

तो दोस्तों, आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाज़ें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर की, और इस गाने का तमिल रैप का अंश गाया है श्रीचरण कस्तूरी रंगन ने। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अयंगर के, संगीत विशाल शेखर का। तो मैं कहता हूँ आपसे, लेट्स गो ना ऑन द डांस फ्लोर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, ने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद नेहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: दामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: जीवन का कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलेख है गणेश कुमार बाविस्कर का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर में ताप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी उफान पर है और राजघाट के 3 शिव मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। बढ़ते जल स्तर ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। SDRF की टीमें घाटों पर तैनात हैं, जबकि नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। ताप्ती के तेज बहाव को देखते हुए गुजरात के सूरत प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बुरहानपुर में साइबर ठगों की चाल नाकाम करने के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.0 अभियान तेज हो गया है। बीते दिनों शाही जामा मस्जिद परिसर में मुस्लिम समाज के बीच पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, OTP, UPI और KYC फ्रॉड के नए हथकंडों के प्रति सावधान किया। पैम्फलेट बांटे गए और साइबर शपथ दिलाई गई और चेतावनी दी गई कि अनजान लिंक पर एक क्लिक से बैंक खाता खाली हो सकता है। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन शुक्रवार को पूरी तरह से भक्तिमय रंग में रंगा दिखाई दिया, जब 191 वरिष्ठ श्रद्धालुओं का जत्था जय माता दी के गगनभेदी जयघोष के बीच वैष्णो देवी धाम के लिए रवाना हुआ। विधायक अर्चना चिटनिस और महापौर माधुरी पटेल ने श्रद्धालुओं को पुष्पमाला पहनाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 3 से 8 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में भोजन, आवास, चिकित्सा और सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने सुनिश्चित की हैं। बुरहानपुर पहुंचे निमाड़ रेंज के DIG सिद्धार्थ बहुगुणा ने बीते दिनों समीक्षा बैठक में लंबित मामलों, महिला अपराध, साइबर फ्रॉड, संपत्ति अपराध और कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए। त्योहारों के दौरान बेहतर पुलिसिंग पर बुरहानपुर पुलिस की सराहना की। बैठक में थाना प्रभारियों को ई विवेचना के लिए टैबलेट वितरित किए गए, जिससे जांच प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत बुरहानपुर जिले के 163 हितग्राही परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की। सिंगल क्लिक के जरिए बीते दिनों 3,46,00,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सीधे DBT से बैंक खातों में भेजी गई, जिसमें सामान्य मृत्यु के 153 और दुर्घटना मृत्यु के 10 प्रकरण शामिल हैं। जिला मुख्यालय के NIC कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया, जहां जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हितग्राही मौजूद रहे। बुरहानपुर के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों को सपनों के पंख दे रही है। पात्र हितग्राहियों को 1.20 लाख रुपए की सहायता और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी मिल रही है, जिससे पक्के मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। जिले की समीक्षा बैठक में बीते दिनों स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। PM किसान सम्मान निधि, EKYC, आधार अपडेट और फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं PWD के सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा गया कि तय समय सीमा में सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं। बुरहानपुर जिले में वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर बीते दिनों सुहागिन महिलाओं ने पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ व्रत रखा। शाहपुर में महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और विधि विधान से वट पूजन कर पति की बरगद जैसी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान भक्ति परंपरा और सुहाग का अनुपम

0: संगम देखने को मिला। बुरहानपुर में भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पखवाड़े के तहत स्वामी परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, शिक्षा, योगदान और राष्ट्रहित में उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, विधायक मंजू दादू, जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने सहित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीते दिनों कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में कृषि चौपालों का आयोजन कर खेती की आधुनिक व प्राकृतिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्नत बीजों की थैलियों की आकर्षक ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। बैठक में डीएपी, बीज, उर्वरक उपलब्धता और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
2: आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: फोन करें गीत सुने इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय तन मन जगाए बात बन जाए।
1: श्रोताओं नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सुब्रता यादव। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
2: सलमान शाहनामल से।
1: सलमान जी क्या करते हैं आप?
2: प्रसन्नता जी मैडम,
1: कोई समस्या है आपको क्या?
2: हाँ तो मैडम,
1: आप दिव्यांग हैं। तो सलमान जी ये बताइए कि फिर आपके काम काज कैसे होते हैं?
2: मम्मी करती हैं।
1: क्या उम्र होगी आपकी?
2: 25 साल है मैडम।
1: सलमान जी आप अपने खाली समय में क्या करते हैं ये बताइए, कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं?
2: अपने पानी वानी भर लेती है, कपड़े मपड़े धो लेती है अपन।
1: गीत संगीत तो सुनते होंगे?
2: हाँ, गाना सुनते रहते हैं। आपकी मन चाहेगी और आप लोग अच्छे अच्छे मिलती है, सुबह सुबह भी मिलता है।
1: अच्छा, गानों में आपका क्या टेस्ट है? आपको किस दशक के गाने अच्छे लगते हैं? किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं?
2: हमें नए वाली गाने अच्छी लगती हैं।
1: तो बताइए आपकी फरमाइश क्या है आज?
2: हमारी फरमाइश है दिल लगा लिया मैंने सबसे तैयार करके।
1: जी जी बिल्कुल, सुनवाएंगे हम आपको। और गाना सुनवाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हम अपने कार्यक्रम में एक मुद्दे की बात लेकर आते हैं, और आज के हमारे कार्यक्रम में मुद्दे की बात है कि हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। आप बताइए आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करते हैं?
2: अच्छे अपन कम खाना खाते हैं, अपन ज्यादा बीमार भी हो जाती है, और दूसरा से भी कितने ऐसे गर्मी पड़ रही है, खाना पीना कम खा, चावल है दाल है जी।
1: हाँ, खाना बहुत जल्दी खराब होता है, तो खाने को सुबह का शाम मत खाएं, और जो भी खाएं अच्छा खाएं, हल्का भोजन करें, गरिष्ठ भोजन से बचें, और मौसमी फल है जो हमारे छाछ है, नींबू पानी है, इनका सेवन करें। चलिए सलमान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब आपको सुनवा दे

0: ताजगी का एहसास, ऐसा ही स्वागत बारात का होना चाहिए।
1: जी समदन जी, बारात का स्वागत हम करेंगे 287 मेरी चाय के साथ।
2: दिल मिलाए, रिश्ते बनाए, 287 मेरी चाय।
0: अभी खरीदें 287 मेरी चाय और पाएं सेकंड फ्लश की क्वालिटी।
1: बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: 287 मेरी चाय।
1: हाँ, मानसून आने को है, अब चाय ज्यादा लगेगी।
0: अभी चाय खरीद ले तो सेकंड फ्लश की क्वालिटी मिल जाएगी।
2: तन मन जगाए, बात बन जाए, 287 मेरी चाय।
3: कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने।
4: मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
3: मनोज जी, क्या करते हैं आप?
4: मैं फर्नीचर का काम करता हूँ मैडम।
3: तो अभी आपका काम कैसा चल रहा है?
4: काम बढ़िया चल रहा है, अभी काम पर ही थे
3: जी।
4: और इसका समय हमें याद ही था कि आज रिकॉर्डिंग होने वाली है, तो आपको फोन लगा लें।
3: चलिए, बहुत अच्छा किया ये तो आपने हमें कॉल लगा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मनोज जी, हमें ये बताइए कि आप जब काम करते हैं तब क्या साथ में रेडियो चलाते हैं?
4: नहीं मैडम, घर पर जब रहते हैं तो रेडियो पर सुनते हैं। और जब कहीं साइट पर काम पड़ा जाते हैं तो अपने न्यूज़ ऑन ARI ऐप के माध्यम से सुनते रहते हैं।
3: एक हमारा OTT प्लेटफॉर्म आया है वेव।
4: जी जी हाँ, डाउनलोड किया हुआ है।
3: अरे वाह, चलिए आप तो बहुत जागरूक श्रोता है हमारे।
4: अच्छा, जी हम तो जो भी गतिविधि आकाशवाणी की होती है, किसी भी केंद्र की हो, चाहे सागर का हो, जबलपुर का हो, भोपाल का हो या छतरपुर का हो, अब सबको उसको जानकारी दे देते हैं और अपने मोबाइल में जो भी है, जैसा भी है, उसको कर लेते हैं। और आपको इसमें हम पत्र भी भेजते हैं, मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से बन जाएगी तो मैं आपकी पसंद में
3: उसका नाम शामिल होता रहता है, समय समय पर सुनते रहते हैं। अच्छा, आपको बता दें, हम आज हम बातचीत लेकर आए हैं स्वास्थ्य के विषय में, तो आप बताइए इस मौसम में किस तरह अपना ख्याल रख रहे हैं?
4: मौसम क्या है मैडम, बरसात का तब शुरू हो ही गया है, बारिश से भी बचना है ताकि कोई बीमारी वगैरह बीमार ना हो पाए। पानी विशेष तौर से छान कर और गर्म पानी पीना चाहिए, इससे बीमारी भी नहीं होती। जगह जगह पानी भरा नहीं होना चाहिए, मच्छर पैदा होती है, इससे बीमार पड़ जाती है।

0: और सब्जियां वगैरह जो आप खिलाती हैं उनको धोकर बनाया जाए तो और अच्छा रहेगा।
1: चलिए मनोज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आज हमारे विषय पर। अब बता दीजिए आज आपकी फरमाइश क्या है?
0: फिल्म का नाम है सागर और गीत की बोल है सागर किनारे।
1: आकाशवाणी सागर से सुनते हैं सागर फिल्म का ये गीत।

0: आह, ताजगी का एहसास, ऐसा ही स्वागत बारात का होना चाहिए।
1: जी समदन जी, बारात का स्वागत हम करेंगे 287 मेरी चाय के साथ।
2: दिल मिलाए, रिश्ते बनाए, 287 मेरी चाय।
0: अभी खरीदें 287 मेरी चाय और पाएं सेकंड फ्लश की क्वालिटी।
1: बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: 287 मेरी चाय।
1: हाँ, मानसून आने को है, अब चाय ज्यादा लगेगी।
0: अभी चाय खरीद लें तो सेकंड फ्लश की क्वालिटी मिल जाएगी।
2: तन मन जगाए, बात बन जाए, 287 मेरी चाय।
3: नमस्ते सर।
4: नमस्ते, बताइए भाई साहब, कौन बोल रहे हैं?
3: हरी किशन है, वो बोल रहे हैं मैडम जी, मुड़ी गया से।
4: हरी किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या करते हैं आप?
3: मैडम जी विकलांग हैं, सोरा से रीत हैं।
4: जी आप कहाँ से दिव्यांग हैं?
3: लगता है मैडम।
4: अभी आपने कुछ पढ़ना लिखना सीखा है ब्रेल लिपि में?
3: मैडम जी अब देखता नहीं है तो कुछ नहीं सीखा।
4: देखिए आप ना मन से हार मत मानिए, कुछ ब्रेल लिपि सीखिए अगर आप, तो उससे क्या है आप बहुत सारी किताबें हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं और किताबों के माध्यम से आप दुनिया देख सकते हैं।
3: जी मैडम
4: जी, कभी भी देर नहीं होती, आप कुछ भी कर सकते हैं। किशन जी बताइए आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, क्या करते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है?
3: मैडम जी चले भार पास सुना पर मैडम जी, और का
4: आप अपने समय में कहीं व्यस्त हैं तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकता है और मन को शांति भी मिलती है।
3: जी
4: देखिए आज हम ऐसा ही विषय लेके आए हैं, विषय है हमारा स्वास्थ्य की देखभाल करें। आप बताइए कुछ स्वास्थ्य के विषय में बताना चाहें, आप क्या क्या करते हैं अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए?
3: मैडम घर से सुरक्षित रहे, खाना पीना सुरक्षित खाते में, पर्यावरण बचाए मैडम जी, पेड़ पौधा लगाए।
4: आप थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं घर से, कुछ थोड़ा बहुत टहलने वहलने जाते हैं?
3: जी जाते हैं मैडम।
4: हाँ, वही सबसे जरूरी है कि हम प्रकृति के थोड़ा करीब रहे।
3: हम तो सबसे वही मैडम जी के पेड़ पौधा लगाए, पर्यावरण बचाए।
4: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कहना है आपका।
3: जी मैडम
4: जी, आपको किस तरह के गीत संगीत का शौक है?
3: मैडम जी मोहरा फिल्म को सुनाओ, टिप टिप बरसता पानी।
4: अब आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का मोहरा फिल्म का ये गीत।

0: ताजगी का एहसास, ऐसा ही स्वागत बारात का होना चाहिए।
1: जी समदन जी, बारात का स्वागत हम करेंगे 287 मेरी चाय के साथ।
2: दिल मिलाए, रिश्ते बनाए, 287 मेरी चाय।
0: अभी खरीदें 287 मेरी चाय और पाएं सेकंड फ्लश की क्वालिटी।
1: बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: 287 मेरी चाय।
1: हाँ, मानसून आने को है, अब चाय ज्यादा लगेगी।
0: अभी चाय खरीद लें तो सेकंड फ्लश की क्वालिटी मिल जाएगी।
2: तन मन जगाए, बात बन जाए, 287 मेरी चाय।
3: नमस्कार मैम।
4: नमस्कार,
3: हम बोल रहे राजा राम कुशवाहा ग्राम सरका खेरा से बोल रहे मैम।
4: सरका खेरा किधर पड़ता है राजा राम जी?
3: मैम एक टीकमगढ़ के पास पड़ता है, बड़ा गांव धसान, मतलब तहसील बड़ा गांव लगता है मैम।
4: तो राजा राम जी करते क्या है आप?
3: मैम दिखता नहीं है हमको, हम तो केवल बैठे रहते हैं, संगीत के शौकीन है हम मैम ज्यादा। वो ऑर्गन होता है मैम?
4: हाँ
3: हाँ, वो बजाते हैं।
4: बहुत अच्छी बात है, देखिए आपने अपनी जो दिव्यांगता है उसको बाधा नहीं बनने दिया, उसके बावजूद आपने कुछ सीखा है और आप उसको बजाते हैं। कुछ अगर आपके पास रखा हो तो थोड़ा सा सुनाएंगे हमको?
3: नहीं मैम, पास तो रखा है मैम, अभी लाइट नहीं है मैम, बजना सुना देता मैम।
4: चलिए तो बताइए ना, कैसे आपने, किससे सीखा, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी?
3: मैम वैसे कि हमारे गुरु तो मैम अभी तक कोई नहीं है, हमने अपनी इच्छा से सीखा है, हमको मन में लगा था कि मैं ये बजाना ठीक रहेगा, तो पापा मम्मी से बोला था कि हमारे लिए ऑर्गन ले दो, मैं ऑर्गन बजा के अपना, मतलब जो भी है, देखो मैम तो पैसे कमाना तो पड़ेगा, जिंदगी बहुत लंबी है अभी, आजकल कोई किसी का नहीं होता है मैम, ये तो आपको पता होगा।
4: देखिए ये नहीं कह सकते हम, ये एकदम सर्वमान्य सत्य नहीं कह सकते कि कोई किसी का नहीं है, बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए करते हैं।
3: वो तो ज्यादा, फिर भी मैम जैसे कि जिंदगी बहुत लंबी है अभी।
4: आपके पास ये आय का भी जरिया है क्या, आप इसको कहीं और प्रोग्राम वगैरह में भी बजाते हैं?
3: हाँ मैम प्रोग्राम में जाते हैं, जो जैसे भागवत संगीत होता है, वो राम कथा होती है 9 दिन की, और प्रोग्राम में भी चले जाते हैं, जैसे युगल गीत है, कुछ भी है।
4: चलिए बहुत अच्छी बात है, हमें आपकी जज्बे को हम सलाम करते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और आपके माध्यम से हम अपने अन्य श्रोताओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि कुछ करिए।
3: तो अपने श्रोताओं से भी ये कहता हूँ कि देखो कुछ ना कुछ करना जरूरी है, कुछ अपने लिए करो, दूसरों के लिए भी करो, जिसमें आपके बच्चे भी सुरक्षित हों, वो भी आगे के लिए कुछ कहना सीखें।
4: अजय राम जी देखिए आपके माध्यम से अन्य श्रोताओं तक ये बात पहुंच रही है कि आप कभी देर नहीं होती, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए।
3: कुछ लोग सोचते हैं मैम जैसे ढोलक बजाना होता है, तो बहुत से आदमी ये कहते हैं कि अब मैं 30 साल का हो गया हूँ, अब मेरे हाथ नहीं लौटेंगे, तो मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन में अगर लगता है कि मैं, मतलब मैं ये काम कर लूंगा, तो मैम कोई कितना भी कुछ कहे, आपको दूसरों की बात सुननी नहीं है, अपने काम से काम लेना होगा, तो हर चीज में आपको कामयाबी मिल सकती है। मैं तो यही कहूंगा अपने दोस्तों से और श्रोताओं से कि दूसरों के बात को अनदेखा करें, अपने काम से काम लें मैम, हर चीज में जो भी कल्ला कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती मैम।
4: बहुत अच्छे विचार आपके।
3: हाँ मैम।
4: राजा राम जी आपसे हम बातचीत करेंगे तो पता नहीं कितनी देर बात चलेगी, चलिए हम पहले अपने विषय पे लौट आते हैं। आज के हमारे फोन करें गीत सुने का विषय है स्वास्थ्य की देखभाल करें, आप बताइए स्वास्थ्य के लिए आप क्या करते हैं?
3: मैम मैं तो यही कहता हूँ कि धूमपान से बचे रहें, अगर रोड पर बाइक या कोई भी फोर व्हीलर चला रहे हैं तो मैम अपने सेहत का ध्यान रखें, तेज गाड़ी ना भगाएं, अपने स्पीड को नियंत्रित रखें।
4: और इसके अलावा आप योग व्यायाम ये सब भी कर सकते हैं, आप कुछ करते हैं योग व्यायाम या सैर पे जाना कुछ इस तरह, आपने कुछ अपनी दिनचर्या में अपनाया हुआ है?
3: अभी हमारे एक, मतलब 2-4 दोस्त हैं, हमको भले नहीं दिखता मगर उनको दिखता है, उनके साथ में जाते हैं करीबन 5 बजे से 6 बजे तक दौड़ लगाते हैं मैम, और अपने योग योग जो भी बनता है थोड़ा बहुत वो भी करते रहते हैं।
4: बहुत अच्छे विचार लगे राजा राम जी आपके, अब बता दीजिए आज हमारे कार्यक्रम में आप फरमाइश क्या लेकर आए हैं?
3: कजरा मोहब्बत वाला, अपनी हमें ऐसे डाला।
4: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ताजगी का एहसास, ऐसा ही स्वागत बारात का होना चाहिए।
1: जी समदन जी, बारात का स्वागत हम करेंगे 287 मेरी चाय के साथ।
2: दिल मिलाए, रिश्ते बनाए, 287 मेरी चाय।
0: अभी खरीदें 287 मेरी चाय और पाएं सेकंड फ्लश की क्वालिटी।
1: बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: 287 मेरी चाय।
1: हाँ, मानसून आने को है, अब चाय ज्यादा लगेगी।
0: अभी चाय खरीद लें तो सेकंड फ्लश की क्वालिटी मिल जाएगी।
2: तन मन जगाए, बात बन जाए, 287 मेरी चाय।
3: फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक थे 287 मेरी चाय, तन मन जगाए, बात बन जाए।
4: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
4: ग्राम का नया निचल सुप्रीवे शहरवार।
5: प्रवेश जी, बताइए क्या करते हैं आप?
4: सर कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं अभी।
5: किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
4: सर अभी हम 8वीं पढ़ रहे हैं मैम।
5: रेडियो सुनने की आदत आपकी हो चुकी है यानी?
4: जी रेडियो सुन रहा है अभी।
5: कौन कौन से कार्यक्रमों को पसंद करते हैं आप?
4: मैम मुख्य कार्यक्रम सुनते हैं, जैसे आकाशवाणी या समाचार है, न्यूज है और लोकगीत है, गीत है, किसान वाणी है।
5: यानी आप बहुत सारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। और एक हमारे यहाँ बच्चों के लिए अलग से कार्यक्रम आता है, बाल सभा। आपने उस कार्यक्रम को सुना है?
4: जी बाल सभा कार्यक्रम सुनते हैं।
5: कैसा लगता है आपको बाल सभा?
4: सर बाल सभा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है आपका।
5: उसमें हमारे यहाँ एक कहानी का सेगमेंट आता है, वो सुना है आपने?
4: हाँ जी, होता है बाबा वाली कहानी का।
5: हाँ, बाबा का पिटारा,
4: एक नंबर लकिया की कहानी।
5: और एक कार्यक्रम और आता है उमंग।
4: जी
5: उमंग कार्यक्रम भी बच्चों के लिए बनाया गया है, 11 बजे आता है सोमवार से शुक्रवार। तो उमंग कार्यक्रम भी आप सुनिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आती हैं, पढ़ाई के लिए भी और मनोरंजन के लिए भी।
4: मैं सुनते हैं, आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
5: अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है प्रवेश जी। हमारे आज के कार्यक्रम में हम मुद्दे की बात लेकर आए हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और खान पान का ध्यान रखना चाहिए। घर का ही खाना खाना चाहिए।
4: मैम जी खान पान करना चाहिए?
5: हाँ, आप बताइए आपका खान पान कैसा है? आप बाहर का तो नहीं खाते बहुत ज्यादा?
4: नहीं मैम, हम तो घर का ही खाते हैं बहुत
5: ज्यादा। तला भुना भी नहीं खाना है? रोज रोज पूड़ी कचौड़ी नहीं खाना है?
4: जी मैम।
5: आप बताइए, आप स्कूल में टिफिन ले जाते हैं?
4: हाँ जी ले जाते हैं, उसमें मैम दाल है, चावल है, रोटी है, ये सब ले जाते हैं।
5: पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी?
4: पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है, अभी पेपर होगा, 75 नंबर बने हैं।
5: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी कि आप जीवन में कुछ बहुत अच्छा हासिल करें। बताइए आज आप गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
4: मेला दिनों का गाना सुनना चाहते हैं, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है।
5: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो
5: जी, नमस्कार, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम का नाम है, फोन करें, गीत सुने।
4: नमस्कार, मैं खातेगांव जिला देवास।
5: नाम बताइए।
4: गोविंद जलपुरिया।
5: चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, क्या कर रहे थे आप?
4: मैं बस टेलीफोन ही लगा रहा था आपको।
5: अच्छा, वैसे करते क्या है आप गोविंद जी?
4: मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, रिटायरमेंट है मेरा।
5: तो कैसी चल रही है रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी?
4: रिटायरमेंट बस यही आलो फरमाइश वगैरह, ये वो करना है, यही इससे समय निकलते हैं।
5: बहुत अच्छी बात है, रेडियो के साथ आप सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं घर बैठे बैठे।
4: हाँ, शुरू से ही है, वो तो बचपन से ही मेरे को रेडियो से लगाव है। मैंने रेडियो की दुकान ही खोली थी, और मतलब पहले बाल वाले रेडियो लगते चलते थे, तो मैंने ट्रेनिंग दी थी इंदौर में।
5: अभी भी चलती है आपकी रेडियो की दुकान?
4: नहीं, आपने मेरे से बनता नहीं है, पहली बार तभी मेरा टेलीफोन लगा है।
5: चलिए, अब उम्मीद करते हैं आप हमें यूं ही कॉल लगाते रहेंगे, ये पहली बार आखिरी बार नहीं होगा हमारे लिए, है ना?
4: ठीक है।
5: तो गोविंद जी, ये बताइए, आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की जो जिंदगी है, इसमें आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख रहे हैं?
4: हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं ना सर, सुबह घूमने जाते हैं।
5: कितने किलोमीटर जाते होंगे लगभग?
4: सुबह मैं जाता हूँ, बस ज्यादा लेट भी नहीं और दिन भी नहीं, मतलब सुबह 6 बजे के करीब निकलता हूँ, 7 बजे 7:30 बजे तक।
5: यानी कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर आप चल लेते हो। खान पान का कुछ ध्यान रखते हैं?
4: खान पान का रखते हैं, हम ये चावल वावल नहीं खाते।
5: क्या खाते हैं? मोटे अनाज शामिल किए आपने अपने डाइट में?
4: साग रोटी पे ज्यादा विशेष ध्यान रखते।
5: कई बार हम देखते हैं लोग रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उनको मानसिक स्वास्थ्य की भी समस्या आती है, थोड़ा डिप्रेशन का शिकार।
4: हाँ, वो

0: हाँ तो थोड़ा है वो, सही है बिल्कुल।
1: हाँ, बहुत सारे लोगों को इस तरह देखा है कि रिटायरमेंट के बाद उनको लगता है अब हम किसी काम के नहीं हैं, और अब
0: सही
1: तो
0: है।
1: बस रिटायर हो गए, अब तो हम क्या बुढ़े हो गए एक तरह से।
0: चलो
1: तो हमें आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। आप
0: वो
1: बताइए ना, आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं?
0: मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर क्या, एक तो अरे ये बहुत मेरे लिए तो भैया रेडियो सुनना, गाने सुनना, आइए सबसे बड़ा आयुर्वेदिक इलाज है।
1: चलिए, यूं ही आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी कामना है। बता दीजिए, आज आप कौन सा गीत सुनना
0: सर
1: चाहेंगे?
0: ये हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का, बरसात पिक्चर है पुरानी, इसका गाना है।
1: बहुत अच्छा गीत है, बहुत प्यारा गीत है, और बहुत दिनों बाद ये गीत सुनने को मिलेगा। चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का बरसात फिल्म का ये गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: हेलो सर, नमस्कार।
2: नमस्कार, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: गोविंद कुशवाहा बोल रहे हैं, चार नंबर के साथ।
2: क्या करते हैं आप?
1: मेरा नाम जी, बस ये चल रहा है खेती किसानी का काम।
2: बखन्नी हो गई?
1: हाँ, बखन्नी बस लगी है, बस हो रही है।
2: चलो गोविंद भैया, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छी बारिश हो और सभी अन्नदाताओं के घर में बहुत सारा अन्न आए, अच्छा फायदा हो आप लोगों को। तो गोविंद जी बताइए, आप करते क्या है इसके अलावा, खेती किसानी के अलावा?
1: खेती किसानी के अलावा तो ये करते हैं, मैडम जी दुकान खोले थे किराने की दुकान पे, आपको रेडियो सुनता रहती थी, FM चलती है, आपके पूरे कार्यक्रम सुनते हैं मैडम जी, बहुत अच्छे। ये फोन करे गीत पर ना, फोन करे लोक गीत पर ना, सुबह सुबह मानस गान और ये भक्ति
2: जी,
1: और ये किसान बाड़ी पे चलता है ये सब।
2: अच्छा, कोई एक कार्यक्रम बताइए जो पूरे दिन में सबसे अच्छा कार्यक्रम आपको लगता हो।
1: मैडम जी ऐसा है कि फोन करे गीत सुना है, इसके तो ज्यादा बेटर है कि फोन करे गीत सुने आएगा, रविवार को जैसा आता है तो माना ये लगता है कि फोन करे गीत सुने आ रहा है,
2: यानी फोन करेंगे सुने का इंतजार रहता है, चाहे आपका कॉल लगे चाहे ना लगे।
1: सुनते रहते हैं बराबर।
2: देखिए क्या होता है, फोन करेंगे सुने एक ऐसा कार्यक्रम है अन्य श्रोताओं का, जिसमें कॉल आता है और आप उन लोगों के बारे में भी जान पाते हैं, देख नहीं पाते पर आप उन लोगों को सुन के जानते हैं, उनके विचार जानते हैं।
1: मैडम जी ये तो रहता है कि श्रोताओं की बात भी होती रहती है और मनपसंद की गाने भी सुनने को मिलते
2: हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है तो अच्छा मनोरंजन भी होता है। गोविंद जी, आज हमारे कार्यक्रम में हम मुद्दे की बात लेकर आए हैं, उस पर आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख रहे हैं?
1: ये तो मैडम जी ऐसा है कि कहा है कि जो साफ सफाई को रखने से ज्यादा से ज्यादा मच्छर माने एकत्र न होने चाहिए, पानी भरो न रहने चाहिए और एक तो साफ सफाई रखनी ही चाहिए।
2: एक चीज हम आपके माध्यम से हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं तक पहुँचाना चाहेंगे कि इंटरनेट पे देख के अपना इलाज न करें, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो डॉक्टर को दिखाएं। आजकल क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, कुछ भी दिक्कत हुई तुरंत उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया और इलाज अपनाने लग गए।
1: और क्या मैडम, कहा है देरी नहीं करनी चाहिए, जैसा हो भी गया है कोई बीमार तो तुरंत डॉक्टर को दिखाओ।
2: हाँ, डॉक्टर को जरूर दिखाओ, बिल्कुल सही कहा, देरी ना करें। लोग टालते रहते हैं, अपने लक्षणों को नजरअंदाज करते रहते हैं और वो समस्या फिर बड़ी बन जाती है।
1: और क्या, छोटी सी गलती बहुत बड़ी हो जाती है।
2: डॉक्टर के पास जाने से ना घबराएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, समय पर उठें, समय से अपना थोड़ा योग व्यायाम करें, सैर पे जाएं, खान पान अच्छा रखें। जी जी, चलिए गोविंद जी बता दीजिए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैडम जी दिलवाले को सुनवा दीजिए, ऐसी वो एक लड़की से मैं प्यार करता था, गीता था जिसके लिए।
2: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का दिलवाले फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने का अब समय हो रहा है। जाने से पहले आपको बता देते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में मुद्दे की बात का विषय। हम अगले कार्यक्रम में मुद्दे की बात लेकर आएंगे कि बारिश के जल का संरक्षण करें। देखिए श्रोताओं, बारिश का मौसम आ रहा है, ऐसे में हमें आने वाले समय के लिए जल बचा के रखना है। तो उसके लिए अभी से आप वर्षा के जल के संचयन के लिए जो पुरानी परंपराएं चलती थी उनको अपनाइए। जैसे पुराने घरों की छतों से पानी इकट्ठा करने की परंपरा, कुएं और बावड़ी का पुनर्जीवन करिए जिससे उसमें पानी भर सके और पानी की बचत हो सके। तो श्रोताओं, ये रहेगी हमारे अगले कार्यक्रम में मुद्दे की बात, और इसी के साथ अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आपने सुना फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। और ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया सुब्रता यादव ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। 11 बजने को हैं, अगला प्रसारण मुंबई से होगा बस कुछ ही देर में।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ, मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का।
0: वाह,
1: एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते। आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया
1: जी।
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी जी
0: रहे
1: जी
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है, आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई, और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नवरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी, और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे, और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मन पसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया

इतिहास पैदा कर, मांगने से कब मदद मिलती, अरे भिक्षुक अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे, कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है, इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: तुम क्षमा मैं भूल हूँ, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी,
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर
0: जी हाँ।
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार,
0: जी
1: और
0: हाँ।
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की है।
1: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी। एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की,
1: जी
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशौरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था, और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी,
0: जी
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे, और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी
0: जी
1: फिल्म के
0: जी
1: लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था,
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था, और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की, और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई, और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत, और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
0: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोताओं, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज़ को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज़ हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा, और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका, और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं।

0: है इस दुनिया में, और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतन आनंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या
1: जी
0: किया था,
1: जी
0: क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
2: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूँगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने। यू नो, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आ गए तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सर करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में। फिर उन्होंने
3: ट्रैक पर भी गया,
2: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीज़ें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है। वो छोटी छोटी चीज़ें प्लान है, बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग। जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीज़ें उसने, बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है। स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल
0: जी
1: की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफ़ी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फ़ैन थे। और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में,
0: जी
1: ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था,
1: जी
0: बहुत ही हिट था उन दिनों। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे,
1: जी हाँ,
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बड़ा ही मजहबी किस्म का ख़ानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं
0: जी।
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था,
0: जी
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा। जो आमतौर से लोग बहुत ज़्यादा सीख कर गाते हैं, उस
0: जी
1: तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है,
0: जी
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना, इस तरह बचपन से मुझे काफ़ी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊँगा
0: कामयाब होंगे।
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर BCOM तक पढ़ाई की, खींचातानी करके।
0: अच्छा।
1: घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नज़र नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं। तो मैंने फिर भी काफ़ी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि आप कुछ भी हो, वक्त बर्बाद नहीं करना है,
0: मुंबई चले आना।
1: हाँ। बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे, कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ। यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा, अभी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा था?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो, तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया।
0: अच्छा।
1: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म मर्द के लिए, अमिताभ बच्चन।
0: अच्छा।
1: तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। और मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया, तो रिस्पांस इतना अच्छा था, क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और जाकर
0: जिक्र करते,
1: हाँ, कि अरे फला एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अन्नू मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
0: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया,
1: नहीं
0: तो
1: इसका,
0: कैसे मिला
1: इसका
0: था ये
1: तो
0: मौका?
1: कमाल है। आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और हूं और आगे भी रहूंगा।
0: रहेंगे।
1: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के, तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
0: जी जी
1: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशिलाल नायर, कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफ़ी साहब की बर्सी है और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है।
0: अच्छा।
1: कि रफ़ी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन, तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कही है या रफ़ी साहब की चाहत थी क्या थी, कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा, मुझे मुन्ना कहते हैं ना,
0: जी
1: प्रिट नेम है बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है, तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
0: जी,
1: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर, इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि रोज का काम है उनका, वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एक तो सन्नाटा छा गया। वो
2: न फनकार तुझसा

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व। गाना जब बनता था ना तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
0: जी।
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को
0: जी,
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है।
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
0: जी,
1: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया
0: जी, जी।
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ
0: क्या
1: पूरा हो गया
0: है?
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था?
1: मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एस डी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
0: जी,
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाए हैं ये सब, बिहार का सिचुएशन देख कर पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब? जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला। देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
0: अच्छा,
1: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अदना एक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज़ दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: उसके बारे में बताइए।
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा, इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी जी,
1: नात मनकबत जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी,
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है।
0: अच्छा,
1: वो सारे हनुमान चालीसा, सारा टाइटल भी आपने सुना होगा, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइयां दोहे जो जो थे वो सारे सब मैंने गाया। मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है, और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए।
0: अच्छा,
1: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं
0: जी,
1: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो इसमें 4 सिंगर है, तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था
0: जी।
1: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2,500 है, और 4,000 के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने
0: जी जी,
1: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10,000 के ऊपर गाने हैं मेरे।
0: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
1: 17 या 18।
0: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
1: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते
0: मगर मनीषा
1: हैं।
0: जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस
1: वापस
0: आएंगे विविधा का अगला
1: आएंगे।
0: अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को, आपकी मित्र मनीषा जैन।
0: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ये एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

जमाने को दिखाना है। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बरसात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और येसु दास की आवाज़ों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज़ में ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रिमिनल फिल्म से।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आपने सुना, इंदिवर के बोल, एमएम क्रीम का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने तो इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम एक बार बता देते हैं वो इबारत कि कोई फुर्सत के पल ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है तलाश, कोई सबसे दूर होकर खुश होता है तो किसी को चाहिए सब आसपास, उम्मीदों आशाओं चाहतों और ज़रूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी यहाँ दुख की बदली छाए तो कभी फैले भोर की उजास, क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहाँ किसी के पास। तो ये है आज की इबारत जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्दों को चुनकर आपको बताना है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आपकी और हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बात के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे साथी कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और साथी कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो गर्मी में सूरज से निकलती कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव ढूंढता है तो ठंड के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, जीवन का यही है रंग रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही। हम लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई सारी चीज़ें अधूरी अधूरी रहती हैं जीवन में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या इस तरह से कहें कि काम करता है कि उसे हर चीज़ अधूरी लगती है। जो भी चीज़ पूरी हो जाती है उससे आगे क्या, ये सोच जब हमारे मन में होती है तो हमें कई चीज़ें अधूरी लगती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज़ की तलाश है। जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इसमें आवाज किसकी है, क्योंकि हमें तलाश है इस जवाब की।

0: सके रात दिन दिल ढूंढता।
1: ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के। इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज को, जो कि हमने आपसे पूछा था, सवाल का सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना। तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ों का अनुभव लिया है या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं, उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की पहली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी कभी गम कभी धूप कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सह लेता है हर दर्द को जो हंसकर, असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज़ में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति थोड़ा सुकून तो होता ही है। वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।
2: डियर सर, सेवा में निवेदन है,

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कहने की आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह क्या बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है वो, जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ, तो शायद अपना अधूरापन भी पूरा लगने लगे। वहीं हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी

बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है, उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं। लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है, तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है, और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं। लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज़ में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

0: सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका हैं इस फिल्म में बता देंगे, तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं। वही लेकिन हमारे साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते न सपने न लोग न जिंदगी, हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है, जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज़ की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह, आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी चाहत जन्मती। इसी तरह इसी आकाश के नीचे कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है, बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज़ की तलाश सबसे ज़्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाज़ें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत, और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफ़र विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं, और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, कि हमारे जीवन में हर चीज़ मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज़्यादा किसी चीज़ की चाह नहीं है, या जिन चीज़ों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है, या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ज़िंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफ़र जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे हैं कि मैंने भी कहा जो हुक्म मेरे आका पर, मार्केट सुरीला सफ़र प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई वो बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं। और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं, उसमें से कुछ तो ज़रूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नेहा जी, इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती बल्कि

दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। आम चीजें भी खास लगने लगती हैं। सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नज़रिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीज़ें भी बदलती जाती हैं। हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज़ की तलाश नहीं है, तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिला है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की। रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की, या आपका आपकी छुट्टी सप्ताह के किसी और दिन होती है, ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवीन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्नाडे, आशा भोसले, बतीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया, अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वहीं हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूँ जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया, पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं, और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फार्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फार्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का ज़रूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाज़ार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाज़ार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मानसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई है, इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिज़ायर लेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है, सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के ज़माना देखा, तो ये इनका कहना है। साथी कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, भाई सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी कौर साथी कहती हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अदद नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही। हमारे एक और साथी ने इतवार का क्या प्लान है ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बताइए। और हमें ज़रूरत है कि इस गीत को किसने गाया है ये भी आप हमें बताएं।

0: जरूरत।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने के आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं, इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कहने की आज इतवार है, फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में, गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कहने की हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी, उनके फरमाइश की एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कहने की अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूँ, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कहने की रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कहने की आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं वो बताने कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की, क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी को देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने किस्सा लिख भेजा है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईने के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गईं और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि चार हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि चार हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ज़रूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इन ज़रूरतों को ज़रूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया, फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना, के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक लिंटोन की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ। भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की ज़रूरत है क्योंकि हम अकेले हैं, कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। मैं पत्नी को मिस कर रहा हूँ जो अब नहीं है। बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं। आपको समय पर चाय नाश्ता खाना तो ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से ज़रूर मिल जाएगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती हैं और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूँ। भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं। हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं।

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका बड़ा ही मजेदार इतिहास है। दरअसल सन 1947 में 20 से 27 जुलाई तक एक जाने माने वनस्पति शास्त्री MS रंधावा ने वन महोत्सव आयोजित किया था। इसका मकसद ये था कि देश हरा भरा हो। सन 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वनों की कटाई को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से पूरे देश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन वन महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पौधे लगाएं, रस्म अदा करें और उसके बाद उन्हें भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करें, उन्हें संजोएं, संभालें, बड़ा करें और इस तरह से जिम्मेदारी निभाएं अपने पौधे के प्रति।

आनंद बख्शी का लिखा, एस टी बर्मन का संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर का गाया, ये फिल्म का गीत था चुपके चुपके फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
1: डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे।
0: अब से कुछ देर में शिवपुरी के स्थानीय पोलो ग्राउंड में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के 211 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजनबाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रोबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया और उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P652 ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। दोनों नवजात शावकों की उम्र लगभग 10 दिन के आसपास हो गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार सुनेंगे दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध

0: एशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: एंड ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन दिस टू लार्ज कंट्रीज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: दीने दीने वो मारा ढाला पे है जैसे पानी में घूरा है ढेला।
5: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
6: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
7: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दो भैया सेना ले चला। सावन में
5: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकर

0: आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपये की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का

0: संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा अल्लाह।

0: जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: होशियार।

हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी हमसे मोहब्बत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गुमनाम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ सूर्यकांत सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी के पसंद पर सुनिए ये गीत जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म शिकार।

गीत। और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहु बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो,

दस नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किन की फरमाइश पर शामिल होने वाला ही बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंगी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज़। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव कमलेश रावी साहू हनी हिमांशु डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत राजे जाधव संचित वायात सर्वद देशमुख प्रथमेश देशमुख प्रणाली सानवी और कल्पना की आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति मनहर दास की आवाजें सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
2: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
3: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
2: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
4: कौन रानी हीरावती?
2: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों?
3: मित्र, अब क्या किया जाए?
4: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
2: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
5: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
6: भला हम कौन होती हैं
5: महाराज की साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
6: चलो।
2: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
4: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
3: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
2: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है,

0: माया भागिन बीच में आती ही क्यों?
1: परंतु देवी,
0: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
1: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
0: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की सात पूरी कर देंगे। आनी पुणिका, हम चलें यहाँ।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुलावलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी ईरावती ने महाराज।
1: लगता है ईरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी ईरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देके कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए। हाँ। मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा उसमें लेके
1: ओ जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाई देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आज ये गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
6: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरीर का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े
5: हैं। फांसी का लो, मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला न हो।
5: मेरा तो अंगंगा करता जा रहा है, सारे शरीर में विष फैलता जा रहा है।
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम, तनिक संभालिए, धीरज से काम लीजिए।
5: महाराज, मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाथ मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
6: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
6: देव की कैसी आज्ञा।
0: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हो वो क्षमा की।
3: नहीं नहीं नहीं, अरे गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
6: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु

0: इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा डली हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
1: मेरी मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
0: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गोकुल।
2: जयसिंह ये अंगूठी मुझे दो। कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमंडवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन?
1: अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
2: ये देखो महारानी की अंगूठी।
1: अंगूठी तो उन्हीं की है।
2: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
1: ओह,
2: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
1: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
2: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
1: ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
3: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
2: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
3: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो।
2: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीप भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
1: क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
0: ये छोटी रानी इरावती है।
1: ओ
2: सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
0: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है।
1: अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
0: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
1: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
3: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रूठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
2: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी की जय हो।
3: प्रिय,
4: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
3: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी हैं, परंतु देखते देखते ओझल हो जाती हैं। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
2: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न भी कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
3: उत्तर क्या दें बकला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
5: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ, आ, आ, उसे भगाने चल,
6: चले।
5: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।
1: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
7: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
1: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
7: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
1: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
7: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
1: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए, आर्य गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हाँ?
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन।
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंबे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
4: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
5: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
6: महाराज रुकिए, उधर न जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
5: मैं कहाँ है सांप?
6: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
5: देवी इरावती,
1: सखी बकुलावलिका, ये कैसा है? बकुलावलिका तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया।
2: ओह, तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर कैसा हमने आके रहा।
7: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना।
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सखी बकुलावलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
3: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
4: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
3: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
8: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहले अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 लाते भी नहीं दी थी कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहले अशोक के पूजे का

सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हेड स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार सेवक भेजे हैं।

0: महाराज अग्नि भी
1: प्रबल वन उत्सव में बधा रहे।
2: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निमित
1: प्रबल वन उत्सव।

0: जय हो, विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव,
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की साथ पूरी हो।
0: आर्य पुत्र, फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
3: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियां आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
3: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
4: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
4: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आगे देव, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
4: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो, राजकुमारी की जय हो।
0: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
4: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
4: सुनिए महाराज, आपके सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
4: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
4: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
2: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती, आप?
4: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
2: हाँ वही है।
4: प्रणाम भगवती।
2: कल्याण हो।
1: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
2: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
2: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
5: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ तो दिन में भी जैसे रात हो गई हो।
1: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
2: भैया, आप भी तो?
1: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
5: अरे श्री, क्या हुआ? क्या सब लोग एकाएक रुक क्यों गए?
6: जान प्यारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
5: वही हुआ ना जिसका भाई था,
2: डाकुओं ने खेल लिया है।
7: जाइए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: हमारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लहूलुहान होकर इधर आ रहे हैं और डाकुओं ने भैया को आके कहीं खेल दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़े हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
1: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
5: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधे राज्य का शासक बना दिया है।
6: उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
5: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
5: क्या हुआ?
2: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ा कर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
1: महाराज, महारानी, पुत्र के विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों के ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
5: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
5: जय सेन।
4: आज्ञा देवी।
5: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, फिर कोई विघ्न न डाले।
4: देवी की जैसी आज्ञा।
5: मालविका इधर आओ।
6: प्रस्तुत हूँ देवी।
5: आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में ये प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लज्जा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
7: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजाई करते हैं।
8: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
9: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्ध सत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्ध सत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक टैग लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा यू नो ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता, तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूँ या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूँ तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूँ। बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
2: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
2: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूँ, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहाँ गाना सुनते हैं।

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहाँ पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी कामा कराई जात तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि एक बार फिर से वो
0: पड़ेगी
1: जनाना रोल
0: हाँ
1: आ रहा है।
0: जनाना रोल आया है, तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था,
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतियाँ क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी,
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी
0: ज्यादा,
1: रीलें चलती हैं और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं
0: करेक्ट।
1: जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये
1: बिल्कुल,
0: काफी सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त,
1: 80s वाला दौर जो पूरा
0: हाँ हाँ
1: था।
0: हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला, एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो
0: तो
1: चलती
0: वो
1: है।
0: चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुनदा, के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट, कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहाँ पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा यू नो बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे।
1: हाँ, हाँ।
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में।
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ।
0: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू।
1: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं ना काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लू। आई विल नेवर फॉरगेट ये। बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में। बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं। हाँ। जो कि एक विलेनिश रोल होता है, खतरनाक। हाँ। वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती, मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश।
0: ओ,
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
0: करेक्ट,
1: वहां
0: करेक्ट।
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो हाँ, आगे बढ़ती हाँ। है, तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े। लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
0: करेक्ट।
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था।
0: बहुत ही और
1: बहुत
0: उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था।
1: ऑफ कोर्स,
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था। आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे। राइट। सब लोगों को ऐसे जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
0: पूरा पूरा। दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे। वो आप मस्त रहते थे। उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
1: अपना
0: है,
1: अपना फर्ज निभाओ,
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है, इज व्हाट आई थिंक. लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं, मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म हो गई बात. और जो आप नफरत की बात करते हो, तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं, लेकिन डर बहुत लगता था.
1: बिल्कुल.
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते.
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था. तो स्कूल

0: बने, वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज़ टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो। ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी, और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो, करेक्ट.
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना। इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल. सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था? जब शूट्स होते थे घर पर, क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से,
1: अच्छा.
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत.
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा.
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे। और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना। बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से
1: बिल्कुल
0: आते हैं।
1: बिल्कुल.
0: मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है,
1: ओके.
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की.
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं। बिल्कुल नहीं
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे.
1: सख्त मनाही.
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे. लोगों ने बहुत प्यार किया. तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है. मुझे याद है पापा को

0: जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है। और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त, करीबी दोस्त है, उनकी फैमिलीज़, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज़ मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहाँ पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहाँ पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज़ वहाँ पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज़ हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़ के। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से, अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ, वो अजंठा में जा ही नहीं पाए,
1: अरे अरे अरे
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते। तो
1: ओ हो।
0: उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी-कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है,
1: बिल्कुल
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल। यहां हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: श्योर।

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे
1: और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: फिर वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में, वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहाँ पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी जहाँ पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई जहाँ पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी
1: फैमिली
0: चल रही थी।
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी, और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता।

0: कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है. तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने वो किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
1: आंटी नंबर वन.
0: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के,
1: हाँ,
0: ऐसी काफी सारी फिल्में हैं. और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
1: तो मुझे
0: काम
1: वो
0: किया,
1: दृश्य याद आ
0: बिंदु
1: गया
0: जी
1: जिसमें
0: के
1: वो
0: साथ
1: सो रहे
0: काम
1: हैं और वो
0: किया.
1: जगाने आती
0: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे, पापा का
1: हाँ.
0: नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है. तो जब मेरी बेटी छोटी थी, तो विलन वाली फिल्में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि
1: बिल्कुल.
0: इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते. जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी. तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, ऐसे वहां से शुरुआत की थी. मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था. फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत. तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: हुकूमत, सड़क,
0: अर्धसत्य
1: है
0: दिखाऊंगी,
1: ना.
0: ये
1: बिल्कुल.
0: सारी फिल्में
1: इश्क
0: दिखाऊंगी.
1: का रोल तो बहुत ही अलग था. वो
0: बहुत ही अलग
1: तो क्या लीग थी वो.
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार. एक तो
1: हाँ
0: इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और
1: हाँ
0: टाइमिंग
1: हाँ
0: कमाल का है. ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं, वो पहली बार ही आया. मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी,
1: बिल्कुल.
0: पर वो
1: लेकिन
0: इतनी
1: ये
0: ओवर
1: कुछ
0: द
1: अलग
0: टॉप
1: था.
0: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी,
1: यस.
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी. तो जो चाहिए वो करो. मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था, तो
1: अच्छा.
0: एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी. और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए. फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं. फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था. तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी. आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म. ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी, बिकॉज
1: बिल्कुल.
0: जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी
1: हाँ,
0: काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है.
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए.
0: प्लीज.

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकटनकर, इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए। बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलू फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी। दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी।
0: तब और तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को
0: मिला
1: नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस
1: काम कर रहे थे बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूँ और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूँ। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है। क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
0: राइट,
1: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
0: जी।
1: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
0: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
1: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, माला माल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा रोल है, तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे।
0: right.
1: अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें अभी हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है, तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया. इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर वन मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली. एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
0: बिल्कुल.
1: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है
0: जी.
1: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर. तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहाँ के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफ़ी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है. तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
0: बिल्कुल. यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ.

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी याद।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि साल 2003 में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया था। लगभग 23 वर्षों की यह आध्यात्मिक यात्रा ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई। उत्तराखंड के टनकपुर से आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं। इनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में बिना कोई मैच हारे हुए फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युगवाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। संदर्भ है वन महोत्सव सप्ताह। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे, विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार हैं शिवांगी तोमर। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे अपने गुरुजनों का सम्मान करें विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1950 में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। वे पृथ्वी पर जीवन के आधार स्तंभ है। मानव जीवन, पशु पक्षियों का अस्तित्व तथा पर्यावरण संतुलन वनों पर निर्भर करता है। वन हमें शुद्ध वायु, वर्षा, औषधियाँ, ईंधन, लकड़ी और अनेक प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं। इसलिए वनों का संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। दोस्तों, वन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है। वन मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, वे वर्षा चक्र को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कृषि और जल आपूर्ति सुचारू रूप से चलती है। यदि वन नष्ट हो जाएं, तो पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और मानव जीवन अनेक संकटों से घिर जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में वनों का संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। नई सड़कों, भवनों, कारखानों और कृषि भूमि के विस्तार के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत हानिकारक है। हमें वनों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ और जैव विविधता जैसे विनाश के रूप में सामने आ सकता है। दोस्तों, वन केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी हैं। वन नष्ट होने पर अनेक प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सरकार के द्वारा भी वन संरक्षण के लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम तथा विभिन्न पर्यावरण संरक्षण अभियान। किंतु इन योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब आम जनता सक्रिय रूप से इसमें भाग ले। समाज के प्रत्येक वर्ग को यह समझना होगा कि वन हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वन मानव जीवन और प्रकृति के लिए अमूल्य संपदा है। उनका संरक्षण करना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। यदि हम वनों की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त जल और स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। दोस्तों, इसीलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और दूसरों को भी वन संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। वास्तव में वनों का संरक्षण ही मानव जीवन का संरक्षण है। दोस्तों, आइए चलते हैं अब फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

अभी सुन रही थी आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों, शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन और अनमोल रत्न है। यह व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करती है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा माना जाता है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती है। इसलिए कहा गया है, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। इसका अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा की शुरुआत बचपन से ही होती है। प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व की नींव तैयार करती है। इस स्तर पर बच्चों को भाषा, विज्ञान, नैतिक मूल्य, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार की जानकारी दी जाती है। बच्चे

0: इसी अवस्था में अच्छी आदतें को ग्रहण करते हैं और उनके मानसिक और बौद्धिक विकास की शुरुआत होती है। यदि प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होगी तो भविष्य में विद्यार्थी उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का महत्व भी उतना ही है जितना प्रारंभिक शिक्षा का है। माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को विकसित करती है। इस स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है, जिससे उनकी रुचियों और क्षमताओं की पहचान होती है। इसके बाद उच्च शिक्षा का चरण आता है। दोस्तों, उच्च शिक्षा व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून प्रबंधन, कृषि, विज्ञान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी अपना करियर निर्माण करते हैं। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में उच्च शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यह व्यक्ति को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। दोस्तों, महिलाओं की शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिए सरकार भी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझते हुए नियमित अध्ययन करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना, अनुशासन का पालन करना, शिक्षकों का सम्मान करना और कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा वास्तव में जीवन का अनमोल रत्न है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक स्तर तक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ही व्यक्ति को सफल, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बनाती है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि स्वयं शिक्षा प्राप्त करें और दूसरों को भी शिक्षित होने के लिए प्रेरित करें। आइए साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में हमारे आज के विषय जल है तो कल है पर आपको वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार हैं शिवांगी तोमर।
1: जल है तो कल है, वरना मुश्किल हर पल है। बचा लो पानी, अब भी मौका है, वरना आने वाली समस्या बड़ी जटिल है। जल के बिना हम सभी प्राणियों का जीवित रहना असंभव है। इसलिए ऐसा कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। हमारी रोजमर्रा की दैनिक जरूरतें जल से ही पूरी होती हैं। हमें नदी, तालाब, कुएं इत्यादि जल स्रोतों से जल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक गतिविधियों में करते हैं। पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी की किल्लत देखी जा सकती है। जल को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर जल संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल की भीषण समस्या बन जाएगी। जल को बेवजह नहीं बहाना चाहिए। जल के दुरुपयोग पर मनुष्य को निश्चित तौर पर अंकुश लगानी होगी। हमें अपने प्रत्येक दैनिक कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती ही है। सुबह होते ही ब्रश करने से लेकर नहाने से लेकर कपड़े धोने तक जल की जरूरत होती है। घरेलू कार्यों में भी, जैसे भोजन पकाने में, बर्तन धोने में, घर की साफ सफाई करने में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन कार्यों के लिए संतुलित मात्रा में ही जल का उपयोग करना चाहिए। जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। इसका सोच समझकर उपयोग करना हमारे हाथ में है। बहुत सारे नागरिकों को आदत है कि जल का उपयोग करने के पश्चात वह नल को खुला ही छोड़ देते हैं। यह गलत है। पानी को बेवजह व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 97% पानी सागरों और महासागरों में पाया जाता है। यानी पीने योग्य पानी बहुत ही कम है, क्योंकि जो पानी महासागरों में और सागरों में भरा हुआ है वो बहुत ही खारा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 3% पानी ही पीने के काबिल है। उसमें से भी 2% पानी बर्फ यानी ग्लेशियरों में पाया जाता है। सिर्फ 1% पानी ही नदी, नहर, झरने, कुएं तरल रूप में पाए जाते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि पीने योग्य पानी बहुत कम है। हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए और सभी को इस विषय में जानकारी देनी चाहिए, ताकि सभी पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को बचा सकते हैं।

0: ज़्यादातर लोग, तकरीबन 70 से 75% लोग पानी की परेशानी झेल रहे हैं। गर्मियों में अक्सर जल स्रोत सूख जाते हैं। आने वाले कुछ वर्षों में यह समस्या भयानक रूप धारण कर सकती है। अगर इसी तरह से लोग बिना सोचे समझे पानी का उपयोग करते रहे तो हमें स्वच्छ जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होगी। हमें पानी का संचय करना ही होगा, वर्षा के जल को बचाकर। उसे तालाबों में जमा कर लेना चाहिए। वर्षा के जमा जल को ज़रूरत के समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और हम सबको पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक लगाने चाहिए, क्योंकि जितने अधिक धरती पर पेड़ पौधे होंगे वर्षा उतनी ही ज़्यादा होगी। जल को बचाने के कई सारे उपाय हैं, जैसे कि हर नागरिक को जल संरक्षण हेतु जागरूकता देना, शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करना, बर्तन धोते समय भी नल की स्थान पर टब का प्रयोग करना। आपको याद हो तो गांव और शहरों में पहले तालाब हुआ करते थे, जिनमें जल एकत्र रहता था, जो न केवल पानी के स्तर को आसपास बचाए रखता था बल्कि दैनिक उपयोग के लिए भी काम आता था। आज गांव और शहरों में तालाबों को पाट कर घर बना दिए गए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जल संरक्षण हेतु गांव और शहरों में तालाब फिर से खोदे जाएं। पहले से उपयोग किए हुए जल का भी या फिर थोड़े से गंदे जल का भी सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा का जल छत पर संरक्षण करके उसका उपयोग करना चाहिए, इसीलिए हमें छतों पर भी पानी की टंकियाँ बनानी चाहिए, जिससे वर्षा का जो जल आए वो टंकियों में भर जाए और बाद में हम उनका उपयोग कर पाएँ। पर्यावरण के प्रति जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन का सकारात्मक प्रभाव जल संरक्षण पर पड़ता है। कटते हुए वृक्षों के कारण भूमि की नमी लगातार कम हो रही है, जिससे भूजल स्तर पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु जागरूकता लाई जाए। नदियों के जल में गंदा पानी भी ना छोड़ा जाए, जिससे ज़रूरत पर उस जल का प्रयोग पीने तथा अन्य उपयोगों में किया जा सके। जल संरक्षण विषय को व्यापक अभियान की तरह सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर प्रचारित की ज़रूरत है, जिससे छोटे बड़े सभी इस विषय की गंभीरता को समझें और इस अभियान को अपनी भूमिका अदा करें। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी निरंतर प्रचार एवं प्रसार की ज़रूरत है, जिससे युवा पीढ़ी समय रहते इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझ सके। जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का सहारा लेना चाहिए। यह तकनीक पानी की कमी से निपटने का तरीका भर नहीं है। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि इस तकनीक से इतना जल एकत्र हो जाता है कि दूसरे स्रोत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और यहाँ तक कि दूसरे को भी पानी उधार देने में सक्षम हो जाते हैं लोग। तो ये हैं कुछ हमारे जल को बचाने के उपाय। इन्हें अपनाकर हम निश्चित ही अपना कल सुरक्षित कर सकते हैं। लोगों में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, ताकि लोग पानी की कीमत को समझ सकें, विश्व के हर नागरिक को इसके महत्व से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। विश्व जल दिवस पर हर वर्ष एक नई थीम रखी जाती है। इसी तरह इस वर्ष की थीम है वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर का अर्थ है कि पानी का क्या महत्व है, यह कितना कीमती है और हम इस महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी साफ सुथरे पानी का लाभ उठा सके। पानी ही जीवन का आधार है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह से अब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे साफ है कि भविष्य में संकट और गहरा हो सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना जल बचाएं एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपनी धरती माँ का अभिनंदन करें।
1: दोस्तों, अभी सुन रही थी आप वार्ता, विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार थी शिवांगी तोमर। अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय अपने गुरुजनों का सम्मान करें पर चर्चा करने का। दोस्तों भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। माता पिता हमें जन्म देते हैं लेकिन गुरु हमें ज्ञान देकर जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देते हैं। हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। दोस्तों गुरु केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि अच्छे संस्कार अनुशासन नैतिकता और जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा देते हैं। वे विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने का कार्य करते हैं। गुरु हमें सही और गलत में अंतर समझाते हैं और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों एक अच्छा गुरु अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करता है। वह चाहता है कि उसका विद्यार्थी जीवन में सफल हो और समाज तथा देश का नाम रोशन करे। इसलिए गुरु का योगदान अमूल्य होता है। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने गुरु की सेवा करते थे। आज के आधुनिक युग में शिक्षा के साधन बदल गए हैं।

0: गुरु का महत्व आज भी उतना ही है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कर उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, गुरुजनों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से करना चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, विद्यालय में गुरुजनों का आदर पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। समय पर गृह कार्य और पढ़ाई पूरी करना चाहिए। अनुशासन का पालन करना चाहिए और अपने गुरुओं से हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। दोस्तों, गुरु हमारे भविष्य के निर्माता हैं। जो विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, वे जीवन में सफलता, ज्ञान और अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि गुरु का सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है। गुरुजनों के प्रति आदर, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। सच ही कहा गया है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और गुरु का सम्मान ही सच्चे विद्यार्थी की पहचान है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।
1: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ।

0: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है।
1: मैं सागर हूँ।
0: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
2: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
0: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
3: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
4: और नासिर का
0: नमस्कार। सागर का हर चौराहा हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी। अपना सागर चहुमुखी विकास की ओर निरंतरता से बढ़ रहा है। नगर निगम सागर द्वारा सभी क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। आज हम देखते हैं तो सागर एक नए रूप में हमारे सामने आ रहा है। चाहे बात सड़कों की हो, चाहे कचरा प्रबंधन की, बात पार्कों की जाए या चौराहों की। शहर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले उपचारित पानी के पुनर्उपयोग की व्यवस्था की गई है। साथ ही शहर को स्वच्छ रखने के लिए सफाई मित्र हेल्पलाइन नंबर भी संचालित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वेस्ट कलेक्शन और प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की गई है। नगर निगम सागर द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं अपने सागर को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखने में। आपकी और हमारी, हम सब की भूमिका अहम है। हमें अपने दायित्व को समझना होगा और नगर निगम सागर का पूरी तरह से सहयोग करना होगा। आइए हम आप मिलकर अपने नगर को नंबर वन बनाते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री जी। सागर में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी अच्छाइयां देखी सागर ने और सुखद रहा। कुछ और भी भावी योजनाएं हैं क्या अपने पास जो सागर में दिखेंगे?
5: देखिए, निश्चित रूप से निगम का काम सतत शहर को सुंदर और नागरिकों के लिए सुविधाएं प्रदान करना रहता है, तो उसको लेके निश्चित ही सागर नगर निगम के पास बहुत सारी कार्य योजना है, जिसमें मुख्य रूप से अभी हम लोग जो देखने को मिलेगा आपको, जहाँ हमारा राजघाट जो नया जल स्रोत है, जो आप जानते हैं, जहाँ से हम सब लोगों के लिए पेयजल की सप्लाई होती है,

0: वहाँ पर उसके सौंदर्यीकरण और उसके पिचिंग का कार्य और बाकी भी रोड का काम और बाकी भी काम होंगे, जिससे वहाँ पर टूरिज्म को जो है बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद शहर में ऐसे स्थानों को अभी हम चिन्हित कर रहे हैं जो सीवर से छूटे हुए हैं, तो वो भी एक हमारी एक बड़ी कार्य योजना है जो हम अमृत 3 में लेके जाएंगे। इसके अलावा शहर में ऐसे बाकी सारे स्थानों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं और कर लिया है, और उस पर हमारा काम भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर कि पेयजल की समस्या लोगों के बीच में रही है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, तो उसको लेके भी एक बड़ी कार्य योजना हमारे पास है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसका प्रभाव शहर में सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा, जिससे सागर नगर के नागरिकों का जीवन जो है सुलभ होगा।
1: जी, जैसा आपने पैदल की बात की, एक और मुद्दा आता है, वो है कचरा प्रबंधन का। क्या उस दिशा में कुछ काम चल रहा है इंडिया द्वारा?
0: जी, निश्चित ही अब स्वच्छता सर्वे भी स्टार्ट हो गया है, और कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में हम सभी लोगों को मिलकर काम करना है। निगम तो लगातार इस दिशा में प्रयास कर ही रहा है। आम नागरिकों से भी हमारा आग्रह है कि कचरा प्रबंधन का सिंपल सा अर्थ है, एक तो आप कचरे को कचरा मान के नहीं चलिए, उसमें से 90% चीजें ऐसी है जो रीयूज में हमारी आ जाती हैं, चाहे हमारा वो बेट बेस्ट हो या सॉलिड बेस्ट हो या अन्य तरह का जो बेस्ट आता हो, वो कभी ना कभी उसका रीयूज हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हमारा सभी श्रोताओं से आग्रह है कि जो घर घर कचरा गाड़ियां आ रही हैं, तो सबसे पहले आग्रह है कि आप लोग अपना गीला और सूखा कचरा कचरा गाड़ी में अलग अलग दें, जिससे कि उसको सेग्रीगेट करके इकोसिस्टम के अनुकूल उसका निष्पादन किया जा सके।
1: जी, कोई प्लांट भी सुनने में आया है कि सागर में कोई प्लांट है ऐसा जहाँ पर?
0: देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास सभी तरह के प्लांट हैं, जिसमें हमारे पास जो है गंदे जल को ट्रीट करने का प्लांट है, एसटीपी बोलते हैं जिसको, हमारे पास जो स्ट्रॉम वाटर आता है उसको ट्रीट करने का प्लांट है जिसको डब्ल्यूटीपी बोलते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास वेस्ट प्लांट है, जिसमें ये हमारा पूरा कचरा जो इकट्ठा होके जाता है उसको लेके जो है मसवासी में, वो वहां पर उस पर प्लांट होता है। इस बार हम सभी सागर वासियों से एक आग्रह करना चाहेंगे कि चूंकि लगातार निर्माण हो रहे हैं, शहर में भी निर्माण हो रहे हैं और पीएम आवास के घर बन रहे हैं और लोग जो है सक्षमता से अपने भी घरों को बनाते हैं, तो उससे निकलने वाले जो विध्वंसक होता है या जो कंक्रीट बेस्ड होता है, उसको आप नगर निगम को ही सौंपे, जिससे उसका साइंटिफिक तरीके से निस्तारण किया जा सके। इसके लिए भी हमारे पास सीएनडी प्लांट है जो उसको आपके घर से ही कलेक्ट करेगा, एक उसकी नॉमिनल राशि है वो आपको देनी होगी, क्योंकि आप लोग भी किसी न किसी को बुला के ट्रैक्टर ट्राली को बुला कर ही उसका पैसे ही देते हैं, उसका जो है निस्तारण कराते होंगे, तो बेहतर है कि आप नगर निगम को वो कचरा दे दीजिए और वो आपके ट्रैक्टर ट्राली से सस्ता भी पड़ेगा और उसका साइंटिफिक निस्तारण भी हो सकेगा।
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। अब सर, एक सवाल आता है कि किसी भी शहर में जब हम जाते हैं तो उसके जो चौराहे होते हैं उनसे उस नगर की पहचान होती है, तो हमारे नगर के चौराहे भी बहुत पहचान बना रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से चौराहे हैं जिन पर काम हुआ है या होना बाकी है या कोई योजना है।
0: देखिए, अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे कि हमने चौराहों का एक लगभग एक सीरीज जो है पिछले एक साल में तैयार की हुई है, जिसका हमने शुभारंभ श्री कृष्ण अर्जुन रथ सीता माता से किया था, इसके बाद संविधान चौक बना, इसके बाद अभी हमने वंदे मातरम चौक बनाया, स्वस्थ नायक चौक बनाया और भी कई सारे पॉइंट हमने डेवलप किए। अभी भी हम दो नए पॉइंट झलकारी बाई और शिवाजी महाराज का गर्मापूर्ण और गौरवपूर्ण इतिहास दर्शाने वाला चौक लेके आ रहे हैं, जिससे कि आम नागरिकों के जीवन में साहस और स्वर्ग और हमारे जो इतिहास है उसके बारे में जानने में उनको मदद मिलेगी।
1: अब एक और बात जिस पे भारी प्रशंसा है आप की, नगर निगम की, आप लोगों के प्रयासों की, वो है शहर की सड़कें। काफी सड़कों में सुधार देखा गया है, तो इस दिशा में आप संतुष्ट हैं?
0: देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है, हम लोग कर रहे हैं कि जितनी सड़कें हमारी चौड़ी होंगी, जितनी ज़्यादा व्यवस्थित होंगी, उतना ट्रैफिक व्यवस्थित होगा, जितना ट्रैफिक व्यवस्थित होगा उतना उस शहर की आबो हवा स्वच्छ और स्वस्थ रहेगी, साथ साथ हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है उनमें भी बढ़ावा मिलेगा और जो एक कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लेवल पर भी एक शहर की पहचान बनती है अगर वहाँ पर उसकी सड़कें सुव्यवस्थित और अच्छी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद।
2: दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है, इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
3: और नासिर को।
2: नमस्कार।
3: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
1: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
4: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
1: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
3: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता में सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में ये गजल कलाम है कातिल राजस्थानी का और संगीत दिया है भूपेंद्र सिंह ने।

इसी के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सुनिए बेनीदयाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ में यह गीत। फिल्म का नाम है गजनी। गीत लिखा है प्रशून जोशी ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। प्लीज अब सुनिए उदित नारायण हरिहरन और कैलाश खैर की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है स्वदेश। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है ईआर रहमान ने।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता में सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में गजल। कलाम है जमीर काजमी का, संगीत दिया है भूपेंद्र सिंह ने।

0: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
1: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
0: News on AIR?
1: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
0: अरे वाह माँ, कमाल है।
2: News on AIR। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: अपनी प्रतिभाओं से और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का, तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर, प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम संगीत सरिता में। लीजिए अब सुनिए चंदन दास की आवाज में गजल कलाम है आमिर का और संगीत दिया है चंदन दास ने।

इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार गीत। सदाबहार गीत में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है घर। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लीजिए आप सुनिए 1942 अ लव स्टोरी से ये गीत, आवाज़ है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं आर डी वर्मन।

कार्यक्रम सदाबहार गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग में सुनिए विष्णु पटेरिया के स्वर में ये हास्य लोकगीत।

इसी के साथ कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के तहत आज के शेष और कल प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज शाम 7:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। शाम 7:20 पर समय होगा बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग का। शाम 7:30 पर सुनेगा आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। रात्रि 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का। रात्रि 9 से सुनेगा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आंखों देखा हाल। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये मैच खेला जा रहा है।

कल सुबह 6 बजे से सुनिएगा हिंदी में समाचार, अर्चना सुनिएगा कल सुबह 6:05 पर, श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ सुनिएगा कल सुबह 6:30 पर, कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों का समय होगा सुबह 6:40, हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह सुनिएगा 7 बजे से, कृषि संकेत का समय होगा कल सुबह 7:05, प्रादेशिक समाचार होंगे कल सुबह 7:10 पर, मन चाहेगी सुनेगा कल सुबह 7:20 पर, और संगीत सरिता का समय होगा कल सुबह 7:45।

कल सुबह 8 बजे से सुनिएगा समाचार प्रभात, लोक संगीत सुनिएगा कल सुबह 8:15 पर, कार्यक्रम बिंदिया सुनिएगा कल सुबह 8:30 पर, सुबह 9 बजे से सुनिएगा परिचर्चा, विषय विश्व जूनोसिस दिवस, आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीलेश शाह, डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता, डॉक्टर सुमित रावत। कल सुबह 9:30 पर समय होगा चित्रपट संगीत का। प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार सुनिएगा कल सुबह 9:50 पर। कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने सुनिएगा कल सुबह 10:05 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा कल सुबह 11 बजे से। कल सुबह 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। दोपहर समाचार होंगे कल दोपहर 2:15 पर। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम सुनिएगा कल दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम युववाणी का समय होगा कल शाम 5:02 पर। संगीत सरिता सुनिएगा कल शाम 5:30 पर। कल शाम 6 बजे से समय होगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का। सदाबहार गीत सुनेगा कल शाम 6:30 पर। हिंदी में समाचार होंगे कल शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा कल शाम 7:10 पर। लोक रंग सुनिएगा कल शाम 7:20 पर। ग्राम सभा का समय होगा कल शाम 7:30। मन चाहे गीत सुनेगा कल रात्रि 9 बजे से। रात्रि 9:30 पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। रात्रि 11 बजे से होंगे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: दीदी नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो।
5: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
3: पर दीप,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा।
6: आरबीआई कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में डिफेंस प्लांट का शिलान्यास किया। वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। और प्रदेश भर में मॉनसून हुआ सक्रिय, आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है।
9: आज ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, यहां पर रोजगार भी मिलेगा और मिसाइल भी 1,000 किलोमीटर लंबी वाली, जिस प्रकार से उन्नत प्रकार की जो चीजें हो सकती है वो सब होकर के साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 सांदीपनी विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए 2 पुल सड़क अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्य। इसी के साथ साथ यहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कि यहाँ हमारा अंदर का 4 लेन बने, जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की।
8: कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज यह शुभ शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में बनाए जाएंगे।
10: आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई। 1,500 से 2,000 करोड़ रूपये का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2,500 से 3,000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं, लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों

0: को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सदगड़ी में विकसित किए जा रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लगभग 173 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह पार्क औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार बनेगा। परियोजना में आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, उत्कृष्ट सड़क एवं परिवहन संपर्क, IT एवं AI आधारित सुविधाएं, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स तथा भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को विश्व स्तरीय औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR एवं मतदाता सूची के परिशोधन का कार्य अत्यंत पारदर्शी, सुलभ और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया है। आज इंदौर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संवाद के दौरान कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया विश्व की सबसे पारदर्शी और विश्वसनीय प्रक्रियाओं में से एक है। इसी पारदर्शिता और दक्षता के कारण भारत आज विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र की उन्नति, समाज के विकास और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिला अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इंदौर शहर को PM ई बस सेवा योजना के अंतर्गत कुल 150 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से पहले चरण में 10 बसों का संचालन ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। धार में खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी में प्रवेश हेतु तीरंदाजी के खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। इसमें 23 खिलाड़ियों ने भाग

लिया। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित सरकारी गोचर भूमि से लगभग 100 से अधिक झोपड़ियां, कच्चे मकान तथा गुमटियों को बुलडोजर के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई। नर्मदापुरम में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए। इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कल एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 250 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जबलपुर शहर में ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0 के तहत आज सिविल लाइन थाना पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: हाँ, फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: FM बैंड 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग में सुनिए सत्यनारायण तिवारी की आवाज़ में ये निर्गुण भजन।

इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the final T20 cricket match to be played between Australia and England of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: नमस्कार, First Ball 20 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष जॉली और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बार फिर से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड के लंदन में और वहां लॉर्ड्स का मैदान इंतजार कर रहा है। एशेज की पुरानी राइवलरी कह लीजिए जो टी20 क्रिकेट में आ गई है, या फिर दिग्गज टीमें जिनको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, एक होम टीम है इंग्लैंड और दूसरी ऑस्ट्रेलिया और आज विमेंस वर्ल्ड टी20 का फाइनल है लॉर्ड्स में। मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद है।
4: Oh Manish, I must tell you the palpitation is really high because obviously there's little hit and miss. We are missing India at the moment, but right now we will only talk about Australia and England. Australia pure dominance, super aura, and today because it's Lords, a lot more to happen, but we have much more to talk about in the studio because we have our super experts. First of all, we have Chetan Sharma, former Indian fast bowler, and needless to say, 1987's World Cup hat-trick hero, the most loved. Chetan, welcome to the studio.
5: Thank you.
4: Also, we have Vaishali Mathur, India's first-class cricketer. Vaishali, you also have a lot to talk, right?
6: Yeah.
4: जी, बहुत सारी बातें आपसे स्टूडियो में करने वाले हैं। स्वागत है आपका। Last and not the least, by any means, Mona Partha Sarthy, senior sports journalist. Welcome again. We have a lot more to talk about game and what exactly are the nitty-gritties, and you're the best person to talk about it.
6: Thank you.
3: बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई। आप ही से शुरू करते हैं, वर्ल्ड कप का एक और फाइनल लॉर्ड्स की बात करते हैं। 1983 वर्ल्ड कप भूलता नहीं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आज का मैच कैसे देखते हैं आप?
5: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो आप रिवलरी की आप मतलब जितनी बड़ी बात कर लें उससे कम होगा। इंडिया पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लैंड अपने घर में कोई वर्ल्ड कप का मैच अभी तक हार नहीं है और ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर मैच अगर तीन मैचेस खेले गए हैं लॉर्ड्स में, दो टीमों ने चेज करते हुए मैच जीता और एक टीम ने डिफेंड किया है और वो टीम कौन सी है? इंग्लैंड। तो बहुत चीजें हैं जो इंग्लैंड के पक्ष में जाती हैं, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अनबीटन साइड्स हैं यहाँ हमारे सामने। जो अच्छी क्रिकेट आज खेलेगा ये ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा।
4: वैशाली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करना वाकई ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात है, जैसे चेतन ने कहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है। हमेशा हम बात करते हैं कि कौन सी टीम भारी रहने वाली है दूसरी टीम के ऊपर। ऑब्वियसली मुनीश के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लगता है हमारी दोनों टीम्स जो हैं उनके कैप्टन पहुँच चुके हैं ग्राउंड में, देखते हैं टॉस में क्या हो रहा है।
7: Defoes. I have match referee G.S. Lakshmi alongside our captains in Nat Sivabrunt and Sophie Molyneux from England and Australia respectively. Nat, the coin.
8: Heads.
9: Heads is the coin. It's heads.
8: We'll have a bowl.
7: Heads it is. Australia has won the coin toss. So what are Australia going to do?
8: We're going to have a bowl. Beautiful day out here and yeah, we want to get out here, have a run around and hopefully put some pressure on them early.
7: It's a very Australian way sometimes to set and put runs on the board. Did you have a big conversation about what to do first?
8: Yeah, there's been a lot of discussion around it, but at the end of the day, you sort of have to go with your gut. I don't think the pitch will change too much.
7: At the start of the tournament, it was a Phoebe Litchfield watch. It turned into an Elise Perry watch with the awareness. Is Perry playing any other changes to the side?
8: We've got no changes, so yeah, Pez pulled up really well from her training yesterday, and yeah, very excited to come out here.
7: I read the other day that your childhood dream was to come to this ground with your dad and watch a test match. You're now here. I know he's in the stand as well. And you're captaining Australia. That's good to beat that, doesn't it?
8: Oh, it sounds pretty wild, to be fair. But, yeah, special day.
7: And five-day gap. Did you sort of just allow the players a little bit of time off just to freshen up the mind a bit?
8: Yeah, the girls got a couple of days off. Went across town from south of London to north and, yeah, started training over.

0: couple of days, so we're in a really good place.
1: We'll enjoy everything that is a final.
0: Thanks, go Josie.
1: Nat, if it had fallen your way, would have things been different?
2: Yeah, I was going to bowl as well, actually. But yeah, I mean, runs on the board at finals, no bad thing. So yeah, happy to be stood here batting first.
1: You've kept a pretty consistent team right throughout this tournament. Any changes from the semi-final win against South Africa?
2: No, we're unchanged.
1: You can stick with that as well. Talk to me about your squad. And I'm not talking so much players, but just experience. Charlotte Edwards, team on this ground. Heather Knight did it in 2017. If you sort of lent on them for experience, are you sort of thinking to yourself, I'm doing it my way?
2: I mean, it would be silly of me not to lean on that experience and then try and add my own little spin on it. But yeah, I think the whole group throughout this tournament has obviously experienced different grounds, different conditions, different pressures, and we've produced some really good cricket along the way. So yeah, hopefully we can do the same again today.
1: What wins it for England today?
2: One more run than the opposition, I suppose.
1: It's as simple as that. All the best. Go well, Nat. Australia have won the coin toss today and they're going to bowl first in the final.
3: आकाशवाणी में अब एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता पहले बोलिंग करने का फैसला किया है. गर्मी बढ़ रही है लंदन में. विंबलडन हो चाहे लॉर्ड्स हो, पंखे निकल कर आ गए हैं. उसी गर्मी को हम यहाँ पे कायम रखते हैं. वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, टॉस जीता आपने, सुना दोनों कप्तानों ने कहा कि हम टॉस जीते तो चेज ही करते, आपके विचार?
4: इस टीम पे, इस पिच पे अगर देखें ना, तो ये 75% ऑफ बैटिंग पिच है एंड 25% बॉलिंग पिच है. अगर और सी अगर बॉल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मीडियम पेसर को काफ़ी स्विंग में फ़ायदा देगी, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी वो स्पिनर्स पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो मुझे ये लगता है कि इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर जरूर देखेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने. एंड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बॉलिंग के ऊपर. एंड दे नो कि जिस तरह से बॉल, हम कहते हैं कि बॉल रिएक्ट करती है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे कम उसकी स्विंग एंड वो सब कम होता जाता है, तो वो स्पिनर पे ज़्यादा फोकस करती है. तो आई थिंक इस यही एक बेनिफिट की वजह से उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है.
3: ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले हमारे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं जो टेलीफोन रिसीव करेंगी. तो टेलीफोन नंबर्स मैं जल्दी से बता देता हूं. हमारे नंबर्स हैं 2342-1084, 2342-1085. दिल्ली का कोड है 011, उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें. 2342-1084, 2342-1085. गीतांजलि
5: जी, मनीष, बहुत सारी बातें इनफैक्ट हमारे कॉलर्स हमसे करना चाहते हैं. जैसा नंबर आपको बताया उन नंबर्स पे आप जरूर कॉल करें. मोना, बहुत सारे फैक्टर्स इनिशियली मैं कह रही थी, चर्चा जरूर करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले पिच की बात करें. लाइक वैशाली कह रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है उन लोगों को जो स्टार्ट पहले कर रहे हैं बैट करने से, राइट. लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग, जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट पिच इज़ गोइंग टू डू, इट वाज ऑलवेज लाइक बिकॉज इंग्लैंड का होम ग्राउंड है. इंग्लैंड ने अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा है. उनको ये मिलेगा, मिलेगा
6: इंग्लैंड को मैदान का एज मिलेगा, बल्कि आप कहीं देखिए जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान इतना बड़ा है और उसमें पूरा सपोर्ट इनको मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. और उसके अलावा पिच की जो आप बात कर रहे थे, तो 158 एवरेज स्कोर रहा है इस पिच पर, और हमेशा चेस करने वाली टीम जैसे चेतन सर बोल रहे थे यह जीतती है और उनको फ़ायदा मिला. इसीलिए दोनों कैप्टन्स ने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना पसंद करते. और काफ़ी ही रोचक मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की अगर हम अभी तक का जो उनका सफर रहा है उसकी बात करें तो एकदम बराबर नज़र आती हैं. इंग्लैंड पिछले 2 साल में 18 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म टीम नज़र आ रही है. तो काफ़ी एक मुझे रोचक मुकाबला
5: रहे. ये है कॉलर, हम उम्मीद करते हैं पहले कॉलर एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से. नमस्कार जी, नाम बताइए अपना. जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं. जी टोटल की चर्चा जरूर करेंगे. सोफिया के सिलेक्शन से खुश नहीं है. सो चेतन, वी विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज मेड बाय एनी टीम. सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द टीम?
7: देखिए, दोनों अनबीटन साइड्स हैं और जब आप जीतते आते हैं तो हर समय ये कहा जाता है कि ज़्यादा बदलाव ना करेंगे तो अच्छा.

0: बात है आपकी टीम के लिए। और टॉस के समय अगर आप दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहती थी, उनके सोच में यह है कि आप फील्डिंग करें, बट मैं हर समय यह कहता हूं कि इतने बड़े मंच पे आकर जब आप रहते हैं ना, रन्स ऑन बोर्ड हर समय आपकी मदद करता है इस प्लेटफॉर्म पे आकर। और इंग्लैंड की कैप्टन की भी यही सोच थी कि ठीक है हम टॉस हार गए हैं, लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हो सकता है कि ये प्रेशर में डाल दे, क्योंकि ये प्रेशर गेम रहेगा आपके सपोर्ट, जो कहते हैं ना सपोर्ट इंग्लैंड को रहेगी, क्राउड आपके अगेंस्ट रहेगा, आप चेस कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ इस समय, चीज़ें अच्छी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ इंग्लैंड गेट अराउंड 170-180। देखिए 150 पे कुछ नहीं होगा, 150 ये ग्राउंड ऐसा है कि इट्स ए ब्यूटीफुल विकेट, इसके ऊपर हम देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी इसी ग्राउंड पर हुआ था, 170 रन्स एक ओवर पहले चेज कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और लास्ट 10 ओवर में उस समय गीतांजलि 107 रन थे, स्टिल वन ओवर टू स्पेयर दे फिनिश द गेम, तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है ये विकेट कितनी अच्छी है। तो इसलिए 170-180 ऑन ए फाइनल गेम विल बी अ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली।
1: चेतन अभी तक 186 हाईएस्ट स्कोर रहा है इस ग्राउंड पर,
0: 180 बना दीजिए।
2: राइट देन वैशाली, तो आपने जो अनुमान लगाया 180-85, उसके पास मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी टीम जो है वही यही सोच रही होगी, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक प्लेयर हैं एशली गार्डनर, उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, शी इज बीन एन ऑलराउंड प्लेयर ऑफ द मैच पिछले गेम में। हाउ गुड इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है एशली गार्डनर के बारे में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन वॉट डेप्थ है उनके बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, अगर हम देखें क्या खास आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं?
3: देखिए उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, एलिसी पेरी वो एक ऐसी ऑलराउंडर है जो आपके मीडियम पेसर में ही सिर्फ बॉलिंग में ही फ़ायदा नहीं देती, आपको बैटिंग भी करके देती है, और ये खासियत तो उन्होंने 170 स्कोर जब हुआ था इंडिया के अगेंस्ट और वहीं वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बैटिंग भी की थी उस टाइम पर, तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस प्लेयर का। और एलिसी पेरी वो प्लेयर है जो WPL में बहुत अच्छा करके गई है, एंड उसकी वजह से वो काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट पड़ता है एक टीम पे, तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि इंग्लैंड के पास एक बेनिफिट ये है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, एंड उसके साथ उन्होंने इस ग्राउंड पे इंडिया के साथ मैचेस खेले हैं, सीरीज खेली हैं, और वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया उनके बैटर और बॉलर्स ने।
2: मोना आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहूँगा, ये अली से पेरी के बारे में बात हो रही है, आपने कभी देखा कि सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होके विमेंस क्रिकेट में एक प्लेयर को बाहर बुला लिया, क्योंकि फाइनल गेम तैयारी कर रहे हैं।
4: जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गई थी, तो लग रहा था कि पता नहीं फाइनल खेल पाएंगी या नहीं, लेकिन पिछले दो प्रैक्टिस सेशन में वो नजर आई और उससे लग गया था कि इतना बड़ा मैच है वो इस मैच से अलग नहीं हो सकती। और कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि वो पूरी तैयारी कर रही हैं, सारा कुछ जतन उन्होंने कर लिया है कि किसी तरह से उनको ये फाइनल खेलना है। सेवन्थ अभी तक वो 6 बार जितना ऑस्ट्रेलिया जीती है, उन्होंने काफ़ी अच्छा सफ़र देखा है, और 2023 से जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है और उनको बाहर रखने का मुझे नहीं लगता जोखिम ऑस्ट्रेलिया ले।
1: और एक जोखिम हम कभी नहीं ले सकते हमारे कॉलर्स को बाहर रखने का, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
0: नमस्कार जी, नहीं आप, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे, आपका टेलीफोन कब बजेगा।
1: जी सभी को याद है हैट्रिक।
0: जी जी जी जी,
1: बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरीज।
0: आज वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं और छोड़ देते हैं सभी को
1: जी।
2: पाली, वो मेरे ख्याल से वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन
1: एक्साइटमेंट
2: जस्ट आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शारजा की बात की, गर्मी याद आ गई, अब आपने 86 में टूर किया था, घातक स्पेल इंग्लैंड में, तब का मौसम इतना चेंज हो गया पाजी, प्लेयर्स कैसे अडैप्ट कर लेते हैं इन गर्मियों में और इन टेम्परेचर चेंजेस।
0: देखिए कभी आप सोच नहीं सकते कि अगस्त सितंबर में इंग्लैंड में डे नाइट क्रिकेट होगी, आज के समय में देखिए डे नाइट क्रिकेट आप खेलते हैं, वहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा टेम्परेचर में बदलाव हुआ, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें टेम्परेचर में बदलाव है। इस विकेट के ऊपर मैं बात करूंगा, इन दोनों टीम्स की बात करूंगा, 9.2 पूरे टूर्नामेंट में 9.2 पर ओवर के हिसाब से इंग्लैंड ने रन्स बनाए हैं, 9.4 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने रन्स बनाए हैं। यहाँ पर एडवांटेज अगर हम, मैं मनीष और गीतांजलि बात करूँ, एडवांटेज किस पक्ष में जाता है वो

0: जाता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने 6.2 पर ओवर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। देखिए आपको मैचेस कौन जिताएगा, मैचेस आपको T20 क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आपको गेंदबाज, आप 200 रन बना देंगे, आपके गेंदबाजों में दम नहीं है तो 200 रन ऑपोजिशन चेस कर लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी देखें गेंदबाजों की 6.2, तो ये थोड़ा एडवांटेज जाता है। लेकिन वो एडवांटेज तब आता आपके पास ज्यादा अगर मैं कैप्टन होता, कि जब मैं पहले बल्लेबाजी करके 180-190 ऑन बोर्ड लगाता और दूसरे को चेज करने देता, क्योंकि मेरे गेंदबाजों की जो इकोनॉमी रेट है वो 6.2 है। या तो आप ऑस्ट्रेलिया जाए और 6.2 से रोकने की कोशिश करें, इसका मतलब 140 के आसपास आप इंग्लैंड को रोकने की सोच रहे हैं, अगर मैं आपके आंकड़े देख रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डू नाउ।
1: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मोना, अगर आप दोनों टीम को एनालाइज करें तो जो इंग्लैंड ऑफ कोर्स एक होम ग्राउंड का तो उनके पास एडवांटेज है, लेकिन वो बहुत रिलाय करते हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं उनका प्लेइंग स्टाइल। जहाँ ऑस्ट्रेलिया को देखो तो बहुत ही अच्छी कलेक्टिव, एक बहुत ही स्ट्रांग टीम नज़र आ रही है, तो ये एक एडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया के पास बाय डिफॉल्ट है। प्लस ऑब्वियसली वॉल ने भी 101 रन बनाकर नंबर वन क्रिकेटर बन गई हैं, सो वो भी बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है ये।
2: कि अभी बहुत बातें हो रही थी कि जब इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा डैनी वेयर्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन आपने सेमीफाइनल में देखा 3 विकेट गिर गए थे उनके रन पर, और उसके बाद जिस तरीके से नेट सीवर बट ने या हीथर नाइट ने जिस तरह की पार्टनरशिप की और जो टीम को जीत तक ले गए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 की टीम थी जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उसमें से कैप्टन और हीथर नाइट और डैनी तीनों प्लेयर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का, वो कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, तो वो वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव उनके पास है। और यहाँ एक और बात रोचक है कि जो इनकी कोच है चार्लोट एडवर्ड्स, 2009 में जब पहली बार इनॉग्रल जीता था वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने, एकमात्र जो जीता है अभी तक, उस समय वो उस टीम की प्लेयर थी, तो उनको अनुभव है कि कैसे जीते जाते हैं वर्ल्ड कप। और वही जिस टीम को उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जो प्लेयर शैली निशके वो भी ऑस्ट्रेलिया की कोच हैं, तो कोचों का भी एक अलग ही मुकाबला यहाँ चल रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ता है।
3: वी आर हैविंग अ लवली डिस्कशन हियर बिकॉज़ यू नो बहुत अच्छा पैनल हमारे पास है, एंड वी आर जस्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फाइनल। आकाशवाणी में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, हमारे साथ चेतन शर्मा मौजूद है, मोना पार्थ सारथी मौजूद है, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद है, गीतांजलि भी रनअप ले रही है, वो थोड़ा सा रनअप ले रही है। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ वैशाली, हमने स्टैट्स की बात कर ली, ऑन ग्राउंड आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लैंड को ठीक है रन तो बनाने, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेंथ आपको इन दोनों टीमों में किसकी ज्यादा दिख रही है, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि इंग्लैंड की तरफ से ऐसा क्या उनको पावर प्ले में या स्लो गोवर्स में अलग करना पड़ेगा जिससे वो आगे हो जाएं।
4: इंग्लैंड में नेट सीवर अभी इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रनर है
3: जी,
4: तो उनके ज़्यादा रन्स है, तो उनके पास ये एक बेनिफिट है इंग्लैंड टीम के पास। एंड उनके पास एक डैनी वॉट है जो ओपनर आती हैं, एंड जो पावर प्ले में वो एग्रेसिव प्ले करती हैं वो शानदार है, काबिले तारीफ है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर बहुत ज़बरदस्त है, बेथ मूनी है उनके पास, जो उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बेटर है, इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है और बाकी मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी बेटर करते हुए दिखाई दी हैं। तो दोनों टीमों में आज जो बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों टीमें अच्छी करती हैं, लेकिन जो फील्डिंग जो मेन पार्ट है वो है फील्डिंग, आप फील्डिंग कितना अच्छा करते हैं वो ज़्यादा मैटर करती है।
3: से पहले कि गीतांजलि अपनी रनअप के साथ आएं और एक अगला सवाल पूछें, भारतीय रिप्रेजेंटेशन भी है इन दोनों टीम्स में पाजी, आईपीएल में लगभग सारी प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की आईपीएल में कहीं ना कहीं किसी टीम से वो लोग खेल चुकी हैं, तो वो एक तरह का इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है
1: जी। और रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं तो दोनों कैप्टन्स की ना चेतन, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एनालाइज करें दैट बोथ द कैप्टन्स, इंग्लैंड की जो हीथर नाइट है और ऑस्ट्रेलियन की नई कैप्टन है सोफी, इनमें से किसकी कैप्टनसी आपको बहुत इफेक्टिव लग रही है?
0: देखिए दोनों टीमें अनबीटन आई हैं अभी तक, और अनबीटन जब आती हैं तो ऑब्वियसली बोथ कैप्टन्स हैव डन वेल। अभी मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था ना किसके ऊपर इंग्लैंड रिलाई करता, मैं कहूँगा ओपनर्स के ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी एक्सप्लोसिव। और अगर एक चांस इंग्लैंड के पास बनता है वो बनता है कि आप पहले 6 ओवर्स को कैसे भुनाते हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली मेरे साथ डिबेट हुआ है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 7 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं। मैं हर समय एज ए बॉलर मानता हूँ कि पहले 6 ओवर्स हर समय इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज दैट विल टेक अवे द गेम फ्रॉम यू। देखिए कैप्टन्स का रोल कैसा होता है गीतांजलि, जो आपने बोला कैप्टन तो सभी बनते हैं, लीडर कौन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम को कौन लीड करता है, जो परफॉर्म करेगा। और अभी तक मुझे लगता है

0: कि ऑस्ट्रेलिया हैज डन ए ग्रेट जॉब, बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स और नॉकआउट गेम्स देखे ना, वेस्ट इंडीज को कैसे धाराशाही किया, वो कॉन्टेस्ट नहीं रहना देते हर समय, दे जस्ट फिनिश द ऑपोजिशन. जैसे नॉकआउट स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया आती है, दे नेवर वांट की कॉन्टेस्ट रहे कहीं. तो दैट इज द बेस्ट पार्ट. तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर टफर व्हाट इंग्लैंड आर, बट इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड्स, अभी मैम भी बोल रहे थे कि दे आर अनबीटन वर्ल्ड कप में, आज तक इंग्लैंड में हारे नहीं. होम सपोर्ट होगा, अपने विकेट्स को जानते हैं, थोड़ा सा होम एडवांटेज रहता ही है आपको. तो इट्स गोइंग टू बी अ कंटेस्ट, बट मैं सिर्फ चाहता हूँ बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 180 रन बना दे, एंड आई वांट टू सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग दैट.
1: और चेतन भाई, आप कह रहे हैं कि 180 विनिंग स्कोर होने वाला है.
0: देखिए, हो सकता है. देखिए, आप यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलियंस. नंबर 10 तक बैटिंग करते हैं वो, और जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ की, मुझे तो, मैं भी था यही स्टूडियो में था उस दिन, में मुझे लग रहा था एक तरफा इंडिया मैच जीतेगी, और मैच ऐसे गया हाथ से कि मतलब आप पूछ नहीं सकते. तो ऑस्ट्रेलिया गॉट अ डेप्थ, एंड ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी टफ, स्पेशली इन नॉकआउट गेम्स.
1: हमारे हाथ से कॉलर ना चले जाए.
2: हां बिल्कुल, वो टफ कॉलर हमारे साथ हैं अभी तक, उनसे बात करते हैं. हेलो, नमस्कार जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना. हां जी, जी अगर आपने अभी तक हमारा शो सुना है लगातार और आप फ़ोन करने में बिजी नहीं थे, तो इसकी चर्चा हो चुकी है. बिल्कुल, दोनों टीम्स हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं लगातार कि हर एक के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ उस पर चीज़ें वर्कआउट होंगी. बाकी तो आप जानते हैं जो क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है. हमेशा हम यही कहते हैं, एक बार फिर आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 2020 और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं. चेतन शर्मा हमारे साथ, मोना पार्थसारथी हैं, और हमारे साथ हैं वैशाली माथुर, मैं हूँ गीतांजलि सोनी, और मेरे साथ हैं मुनीश जौली.
1: मोना, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप दो दिग्गज टीमों को देखते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे. सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर स्क्रिप्टिंग यू नो अ मैच लाइक दिस बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड.
3: मुनीश जी, कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट बॉल में पूरा इंट्रो बदलना पड़ता है, पूरी कॉपी चेंज हो जाती है. ऐसे भी कई बार हुआ है, और तब अगर इंडिया का मैच नहीं है तो कभी, चाहे कोई कितना भी बोले कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे गेम को एनकरेज करें, लेकिन जहां इंडिया एंगल आता है, थोड़े से हमारे भी इमोशंस आ जाते हैं उसमें. लेकिन अब यहां तो आपको तटस्थ होके देखना है कि कौन टीम कैसा खेल रही है, और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा क्रिकेट अब होने लगा है ना, कि सब एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं. तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपको वर्ल्ड कप में ही दो दिग्गजों की टक्कर देखने को मिल रही है. और अभी जैसे चेतन सर कह रहे थे कि ज़्यादातर सारे प्लेयर्स जो हैं वो हम WPL में इनको देखते हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि आप कुछ एक दिमाग में प्रिजुडिस लेके बैठेंगे कि हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है. नो डाउट ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आने के बाद सामने कोई कंटेस्ट रहने नहीं देती दूसरी टीम पर, एक साइकोलॉजिकल गेम भी उनका चलता रहता है लगातार. लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपस में इतना आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है कि सब एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हैं, और जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, और कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है.
2: जी वैशाली, एज अ क्रिकेटर बहुत सारे मोमेंट्स आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे. अभी जो कंडीशन चल रही है आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम भारतीय टीम की भी बात करेंगे, बहुत सारे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इस बारे में. लेकिन अभी जो टीम है, आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक अलग जज्बा आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में नज़र आता है, क्या कारण है? आप देखा जाए तो हमारी भी भारतीय टीम वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त टीम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है. कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि मिस कर गए, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मौजूद हैं?
4: इंडिया के बाद मेरी तो सबसे फेवरेट है, उसके बाद इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम. एंड ऑस्ट्रेलिया टीम में हम कह सकते हैं कि उनका जो फिटनेस लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है. वो कहीं और हम अगर किसी कंपेयर करें किसी भी टीम से, तो वो उतना हाई लेवल पे नहीं है. एंड उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो उनके पास टॉलर बॉलर्स हैं. आप देखिए कि हमारे पास एक झूलन गोस्वामी थी, और टॉल का जो निप मिलता है ना बॉल को, वो डिफरेंट होता है. वो बॉलर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो आउट होने के कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं उनके. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया टीम एंड उनके पास एक कंसिस्टेंसी है. वो जितने मैचेस वो खेलते हैं, उतना मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया उतने मैचेस वो नहीं खेल पाते हैं क्योंकि 25% कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं मैचेस के लिए. तो एक ऑस्ट्रेलिया टीम के पास एक बेनिफिट है. एंड उनकी जो हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो ट्रेनिंग अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो बेटर है. चाहे वो इंग्लैंड ले लीजिए या साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास एक बेनिफिट है.
1: पाजी बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे हमारी कमेंट्री टीम के पास और दो दिग्गज कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आई नो बहुत अर्ली पूछ रहा हूं, लेकिन प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि विनर कौन होने वाला है?
0: देखिए मैं तो आंकड़ों के साथ जाऊंगा. मैं आंकड़ों के ऊपर देखता हूं तो ऑस्ट्रेलिया ने इस स्टेज पर आकर तीन बार मतलब मात दी है, 2012, 2014, 2018 इंग्लैंड को मात दी है फाइनल्स में आकर. तो मतलब इतनी पिटाई के बाद तो मनोबल नीचे रहता है. तो लेट्स सी, दैट्स व्हाई आई वांटेड इंग्लैंड टू गेट टू 180 एंड आई वॉन्ट सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग इट. तो मैं इस मैच को एक कांटे वाला मैच देखना चाहता हूँ. ऐसा ना हो कि 6.2 इकोनॉमी रेट की वजह से 140-145 में रह जाए इंग्लैंड, तो इट वॉन्ट बी ए कॉन्टेस्ट. आई वॉन्ट इंग्लैंड टू स्कोर 180.
1: मोना, क्योंकि इशारा हो गया प्रोड्यूसर साहब का, हमको जाना है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि एक शब्द आपको बोलना है, इंडिया और सॉरी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया. मेरा पेट्रियोटिज्म आ गया इंडिया.
3: हाँ बिल्कुल, हम सबके मन में आज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया.
1: ऑस्ट्रेलिया, राइट. वैशाली बता चुकी हैं, तो मैं मुनीश जौली, गीतांजलि सोनी के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ ट्यून्ड इन थे और आपने सुना ये प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20. और सीधा चलेंगे लॉर्ड्स लाइव कमेंट्री के लिए हमारी टीम के साथ. फर्स्ट बॉल 20. तो आइए चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम के पास. दिग्गज कमेंटेटर्स हिंदी में विनीत गर्ग, अंग्रेजी में प्रकाश वाकणकर, स्कोरर हैं भूपेंद्र सिंह भाटी और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा. ओवर टू आवर कमेंट्री टीम.
5: नमस्कार. है क्रिकेट के इस महाकुंभ में आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और ये फाइनल मुकाबला है और किसके बीच में, पुराने जाने माने प्रतिद्वंदी, कांटे का मुकाबला हमेशा होता है जिनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड. लॉर्ड्स का यह मैदान जो क्रिकेट का मुख्यालय है. और पहली सूचना जो आपके पास अब तक पहुंच चुकी होगी, दोनों ही टीमों में सेमीफाइनल में जो टीमें खेली थी कोई परिवर्तन नहीं है और दोनों विजय रथ पर सवार हैं. क्यों होगी टीम में कोई बदलाव या परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही अब तक अविजित हैं इस टूर्नामेंट में. और ऐसे में इंग्लैंड जो कि कभी भी इंग्लैंड में किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हो तो हारा नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को उसने कभी किसी भी फॉर्मेट में ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हराया नहीं है. तो ये एक अजीब सब समा बंधा है यहाँ पर और सब उत्सुक हैं, सब चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले. और यहाँ जो चार ऑफिशियल्स हैं उसमें से आज दो भारतीय हैं. चर्चा जारी रहेगी. पिच नंबर 10 जिसपे थोड़ी सी घास है नीचे से, वो काफ़ी सूखी हुई नज़र आ रही है. स्ट्रेट बाउंड्रीज 70-71 मीटर की हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज लगभग 60-65 के आसपास की हैं. और क्योंकि पिच नंबर 10 है और मैदान पर 20 पिचेज हैं तो लगभग लगभग सेंटर पिच हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक और स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाए. सबसे छोटी बाउंड्री 58 फुट के आसपास की है. जब विकेट के पीछे की ओर खेलते हैं तब स्वाभाविक है कि वो उस ओर की बाउंड्री कम हो जाती है. तो टीमें मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय गान हो चुके हैं दोनों ही देशों के और ये महत्वपूर्ण मुकाबला होगा. प्रकाश मेरे साथ हैं, आप उत्सुक होंगे कि उनके क्या विचार हैं. और ये लॉर्ड्स है और लॉर्ड्स के स्लोप की हम बात करते रहेंगे. स्वागत करता हूं प्रकाश वाकणकर.
6: थैंक यू विनीत एंड गुड इवनिंग वेयर एवर यू आर लिसनिंग. इट्स अ बिग डे एट लॉर्ड्स वेयर द T20 वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन द ओल्ड राइवल्स एज विनीत हैज डिस्क्राइब्ड इज गोइंग टू बी प्लेड एंड वन ऑफ द टू prevailing equations has to change. That is that England have never lost a final in an ICC tournament at home, and they have also never beaten Australia. Australia looking for their 7th title, England for their 2nd. And those of our listeners who remember will know that that came right here on this ground when Anya Shrupsol really was the key difference. Harmanpreet's great innings proving to be not enough, and that was the final they won against India. Well, bright sunshine here on our TV monitors. It seems to be good conditions as Vinita described. It's a fresh pitch and England will have to get a above par score, Vinita, because this Australian juggernaut is not going to be stopped by anything short of that.
5: सबके दिमागों में यही बात है प्रकाश, कि किस तरह से वेल ऑयल्ड मशीन जिसको कहते हैं, क्या ये खिलाड़ी हैं। और आप देखें कि ऑलराउंडर से भरी हुई है।

0: है ऑस्ट्रेलियाई टीम, एक मैच में तो 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया। शायद एक दो ऐसे हैं क्रिकेटर, विकेट कीपर को हटा ही दीजिए, बेटर हैं सारे के सारे जो बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो इनके पास इतने विकल्प हैं मैदान पर कि अगर कोई दिन आपका नहीं है, किसी दिन आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आपके पास दूसरे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं। दो, जैसा कि मैंने कहा कि दो भारतीय ऑफिशियल्स हैं, उनमें से एक इस समय बॉलिंग वाले छोर पर नज़र आ रही हैं, वृंदा राठी। और इसके साथ वो मशहूर वेस्ट इंडीज़ की अंपायर जो जिनका ये 5वां T20 विश्व कप है, जैकलिन विलियम्स, वो शायद स्क्वायर लेग पे अभी नज़र आएंगी। तो ये स्थिति है कि जो बहुत ही बढ़िया शानदार जोड़ी है, और वो खिलाड़ी, वो बैटर डनी व्हाइट होज, जिन्होंने कि सबसे अधिक रन बनाए हैं अब तक टूर्नामेंट में, वो पारी की शुरुआत करने के लिए इंग्लैंड की ओर से आ चुके हैं। एमी जोन्स विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, पारी की शुरुआत करेंगे, साथ में 7 पारियों में 89 रन, 125 का स्ट्राइक रेट। तो डनी व्हाइट होज दोनों ही दाएं हाथ के बैटर्स हैं, और दिलचस्प होगा कि एक तो शुरुआत किस ओर से होती है, पेविलियन एंड से या नर्सरी एंड से, दूसरा ये कि क्या होता है। लूसी हैमिल्टन और किम गार्थ की जोड़ी रही है, एक मैच को छोड़कर हर बार इन्होंने ही नई गेंद का इस्तेमाल किया है। 7 मैचों में 5 विकेट लेने वाली लूसी हैमिल्टन, देखिए, और किसको, मैगन शुल्ट्स को बाहर बैठा रखा है इन्होंने। बाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं, एक बाएं हाथ के बॉलिंग का विकल्प उनको मिलता है, लेकिन किम गार्थ की शुरुआत होने वाली है उनके ओवर की। 1-6 के बीच का ये पावर प्ले जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, ये रही मैच की फाइनल की पहली गेंद। एक स्लिप तैयार है, और जैसी कि आमतौर पर गार्ड करती हैं, उनकी पहली गेंद आउट स्विंगर थी, एक लेंथ पे टप्पा खाकर दाएं हाथ के बैटर को छोड़ती हुई स्टंप्स के पास से नहीं होकर, बल्कि थोड़ी सी जगह थी। लेकिन आजकल बॉलर्स जो हैं पहली ही गेंद पर विकेट खूब ले रहे हैं, पहले इक्का दुक्का कोई होते थे, आजकल ये बड़ी चर्चा का विषय हो गया। सावधानी रखी, कुछ नहीं छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए। जैकलिन विलियम्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनका 96वां वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल मैच है। गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, घूमकर पुल करना चाहती थी, अंदरूनी सिरा लगा, फील्डर ने कोशिश बहुत की, सफलता नहीं मिलेगी, और ये शुरुआत हुई खाते की, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: जोन्स के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका था, लगभग टू ऑफ द बैट के पास से, स्टंप्स और बैटर के बीच में से भाग्य ने साथ दिया, और उस पर 4 रन अवश्य मिले। वेरहम ने भरपूर प्रयास किया उस गेंद को रोकने का। फील्डिंग का देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, फील्डिंग के स्तर एक आसमान छू रहे हैं प्रकाश, और जिस तरह से बाउंड्री लाइन पे किया, वाह क्या दृश्य था। संतुष्ट नहीं है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, अब तक थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट जरूर नजर आया है, और ये जो स्विंग मूवमेंट है, नर्सरी एंड और पेविलियन एंड दो हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तीसरा अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो 4 रन वहाँ पे जो छोटे छोटे विज्ञापन है रोक के ऊपर, उससे छू गई या नहीं छू गई, और अब वो 4 रन का इशारा आ रहा है जिससे खाता खुला है और जोन्स के खाते में जोड़ा है, और इंग्लैंड फाइनल्स में 4 रन बगैर नुकसान के तीसरी गेंद के लिए तैयार। किम गार्थ, और इस बार ज़्यादा ललचाती हुई गेंद थी, खेला उसको, पॉइंट पे फील्डर है, बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्ड कर लिया गया। पिच को अगर आप देखें तो काफ़ी घास है, लेकिन नीचे से काफ़ी सूखी नज़र आ रही है, और जैसा प्रकाश ने बताया बिल्कुल फ्रेश है, अब तक इस पर कोई मैच हुआ नहीं है। आमतौर पर स्क्वायर बाउंड्री 58 और 65 की रही है लॉर्ड्स में, आज लगभग 64-64 की रहेगी, दोनों ओर एक सार नज़र आ रहा है स्क्वायर बाउंड्री का जो इलाका है। 5 रन बगैर नुकसान के, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने। व्हाइट हॉज जो जबरदस्त फॉर्म में है, किम गार्थ सामने है, और क्योंकि बॉलिंग इस समय पेविलियन एंड से हो रही है, उनको अपने फुटवर्क पे ध्यान देना होगा। ओ खतरनाक गेंद, इस ओर से जब बॉलिंग होती है तो एक नेचुरल वेरिएशन से गेंद सीधी रह जाती है, और इसी से आपको अपने आप को काबू रखना पड़ेगा, अपने फुटवर्क पे भी काबू रखना पड़ेगा। एज लगी बैट की और स्टंप्स के पास

0: से निकल गई। क्या आज का दिन इंग्लैंड का दिन साबित होने वाला है? क्या भाग्य उनका साथ दे रहा है?
1: Certainly looked like that on that occasion. Dropped between the batter and the stumps and then bounced over the stumps. Unbelievable luck.
0: Kim Garth. इटली अब तक टूर्नामेंट में बिल्कुल स्टंप्स के पास आके शॉर्ट एंड वाइड कट किया उसको। पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, बैकवर्ड फील्ड किया गया एक रन और। तो दिलचस्प है, आमतौर पर जो सीम का इस्तेमाल करता है वो पेवेलियन एंड से बॉलिंग करता है। यहाँ जहाँ तक संभव पेवेलियन एंड से सीम बॉलर्स जो पिच का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और नर्सरी एंड से स्विंग बॉलर्स। और लाजमी है कि हैमिल्टन उस ओर से बॉलिंग करेंगी जो खासा स्विंग कराती हैं। अगली गेंद, ओवर पिच गेंद, हाफ वॉली स्विंग होती हुई, और क्या फील्डिंग! कवर क्षेत्र में शानदार क्षेत्र रक्षण, रन नहीं लेने दिया। यही है T20 क्रिकेट का मजा।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा से सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: A tentative start really by England. A streaky boundary for Amy Jones got things underway. And there have been a couple of questions asked. Already we've seen the athleticism of the Australian girls in the field. And that will be a factor, as Vineet mentioned quite clearly. Both sides, but particularly Australia, just exceptional in the form of a well-oiled machine that has not had any silverware for a few years now. And they'll be thirsting to get the trophy in their cabinet. Right then, Lucy Hamilton, left arm over the wicket, balls wide outside the off stump, may well be called that. Wait to see whether Jackie Williams thinks so. No, it's all right. Must have pitched just inside the try line, but certainly moved away, exaggerated movement away from the right-hander. Danny Wyatt-Hodge, leading run scorer in the tournament so far. Healthy strike rate, just under 300 runs as well. And Amy Jones, who hasn't really blossomed with the bat. Next one's pitched up and it's gone. I think it's carried. Yes, it has. And that's a big wicket. Amy Jones edging one to the lone fielder in that slip cordon. And that means England have lost an early wicket. Australia rocking the home team in the very second over. In fact, that is the last thing that England wanted, having been put into bat, shaping away, looking for a big drive. Outside edge, carries to gully and taken very comfortably. Australians don't drop catches beneath, and that's the dream start for the girls in their green and yellow.
0: Amy Jones ek bar fir offside mein out ho rahi hain. Predominantly onside ki cricketer hai. Pata nahi kyun jo wicket keepers hote hain wo onside mein zyada mazboot kyun hote hain. Pichle match mein semi final mein bhi point ke aas paas wo out hui thi. इसी तरीके की ऑफ स्टंप के बाहर की स्लाइटली वाइड गेंद पर, और लगभग उसी इलाके में जैसा कि प्रकाश ने आपको बताया, गली पे वो कैच आउट हो गई। महत्वपूर्ण सफलता मिली है ऑस्ट्रेलिया को, और इंग्लैंड को अब भरपाई करनी पड़ेगी ऑन द बैक फुट शुरुआत में ही। और पावर प्ले में अगर जल्दी जल्दी विकेट गिर जाएँ तो फिर एक बड़ा स्कोर बना पाना थोड़ा दुष्कर हो जाता है।
1: Well, we saw that in the semi-final, didn't we, Vineet? England lost 3 early wickets. And then it was the two captains, the current and the former, Nat Siva-Brunt, who will come into bat at number 3, and her immediate predecessor, Heather Knight, who stitched together that partnership. Here's the first ball that's been faced, and it's been creamed away just elegantly and timed to perfection through the extra cover boundary for 4. What a terrific shot.
6: Ye laga Abha ka choka.
1: That's the class there, just waiting on it, Siva-Brunt, and then easing it away, not trying to hit the ball too hard, just pure timing, and it races across the hallowed turf at the Lord's Cricket Ground, and England move into double figures, 11 for 1. Here's Hamilton in again, and this time unable to quite time it, getting the inside part of the bat, the ball trickles away towards the offside, and there will be no run. Just watching the replay of that dismissal again now in real time, Vineet, you can see that the anticipation was there. There was a plan there. And Amy Jones unable to get her foot to the pitch of it. And as a result, drove away and Wall, Georgia Wall, making no mistake. Here's the fifth ball of the second over. It's Lucy Hamilton, left over, past umpire Williams, bowls. And Siva Brunt is defending on the offside. Out to cover, there will be no run. The home crowd will be a big factor in this game, one feels. England playing at Lord's, the last time any England team, men or women, played a World Cup final at Lord's. We all know the drama that happened there. And many would argue that it was a victory that was snatched by defeat or by fate more than anything else. But it was a great game of cricket. Let's hope this one lives up to it. Last ball of the over. Here's Hamilton Boulder. This one's a swing and a miss from Siva Brunt as the ball shapes away. End of the over, 11 for 1.
5: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोरदार शुरुआत, ऐसी शुरुआत जिसकी दरकार उनको थी। और ताज्जुब ये होता है कि ज़्यादा इस मैदान को समझते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट जबकि गेंद नर्सरी एंड से की जा रही थी, इतनी लाजवाब थी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट डाउन द स्लोप जो फील्ड प्लेसमेंट विकेट के पीछे अतिरिक्त खिलाड़ी लेकर, दो खिलाड़ी विकेट कीपर के अलावा लेकर उन्होंने बॉलिंग की। गार्थ के नए ओवर की पहली गेंद को बैकफुट पर संतुलित होकर खेल दिया डीप विकेट पॉइंट। एक समय था एक थर्डमैन लगता था और एक फाइन लेग लगता था, काम पूरा हुआ शुरुआती ओवर्स का। अब आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर लेग क्षेत्र के आसपास, नहीं तो लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी नजर आएगा। क्रिकेट बहुत बदला है, उसकी तस्वीर बहुत बदली है और दोनों ही टीम वही हैं जो सेमीफाइनल में खेली थी, कोई परिवर्तन नहीं है। और गार्थ पेवेलियन एंड से बॉलिंग कर रही हैं और ये डाउन द हिल है। डाउन द हिल वो जो पेवेलियन एंड है वो थोड़ा सा इस समय मदद करता है कि आप गेंद को बाहर की ओर निकालें। गार्थ देखें इस ओवर में क्या करती हैं, क्रीज के बीचों बीच से ये गेंद थी और वहीं दबाकर सिंगल दौड़ना चाहती थी, टाइम नहीं कर पाई अपनी स्ट्रोक को, गेंद वहीं लुढ़क कर रह गई और वापस दी जा रही है किम गार्थ को। ताहिला मैग्रा उप कप्तान है, टीम में नहीं है। चार बेंच पे जो बैठी हुई खिलाड़ी हैं सब आईसीसी ट्रॉफी में जीत के समय शामिल रही हैं।
1: They're all World Cup winners, right? That shows the depth of Australia.
0: Danny Whitehorse enables Sutherland. Sutherland को एक विकेट चाहिए 50 T20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने के लिए। मेगन शूट जो अब तक सब टूर्नामेंट्स में खेली हैं T20 के, ऑस्ट्रेलिया की ओर से टीम में नहीं है, केवल एक मैच में, दूसरे मैच में शामिल किया गया था अगली के, और उसको पूरा सम्मान देते हुए उसके ऊपर आते हुए कलाइयों के जोर से धीरे से पुश भर किया। और 2.3 ओवर के बाद टॉस हारकर इंग्लैंड 12 रन और विकेट कीपर एमी जोन्स का वो खो चुके हैं। शिवर ब्रंट और वाइट हॉज की जोड़ी इस समय मैदान पर है। शिवर तीन मैच खेली, उसके बाद उनको क्वाड की ट्रबल हुई, उनको जांघों में तकलीफ हुई, उसके बाद नहीं खेली। पिछले मैच में क्या जोरदार वापसी की, 75 रन बनाए 47 गेंदों पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से कलाइयों का प्रयोग किया, डाइव किए हुए फील्डर से गेंद छिटकी, दूसरे रन के लिए जा रही है। इससे पहले कि आके उसको उठाया जाए दूसरा रन भी पूरा हो गया। ये होता है जब पहला रन आप तेज लें, फील्डर्स के ऊपर दबाव बनाए, अपनी दाईं तरफ जाकर डाइव लगाई, पूरी लंबाई का फायदा उठाते हुए डाइव लगाई, लेकिन हाथ से लगने के बाद छिटकी और एक रन और पूरा हुआ। 3 रन अब तक इस ओवर में, 2 गेंदे शेष हैं। ऑफ साइड में एक कवर पॉइंट है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर और लॉन्ग लेग है सीमा रेखा पर, बाकी सब दायरे के अंदर है। बहुत फुर्ती दिखा रहे हैं ओवर्स करने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, जरूरी है नहीं तो लास्ट पावर प्ले में एक फील्डर कम मिलेगा बाउंड्री लाइन के पास। अगली गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला और गेंद वापस बॉलर को दी जा रही है। सिवर ब्रंट 10 इनिंग्स अब तक की हैं, जो पिछली 10 इनिंग्स हैं उनमें उनका लेखा जोखा बढ़िया है। क्या कर सकता है इंग्लैंड, कितना संतुलन रखना होगा, कितने स्ट्रोक्स खेलने हैं, विकेट गिरने से बचाने हैं, ये 6 ओवर का पावर प्ले जिसमें केवल

0: दो खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, उसका फायदा भी तो उठाना है, और ऐसे में आप विकेट भी दे सकते हैं। लॉर्ड्स के स्लोप में जिस जगह खड़े होकर बैटिंग कर रही हैं सिवर ब्रंट, आपका संतुलन बिगड़ जाता है, आप शफल करके आपका फुटवर्क आपको ऑफ स्टंप के बाहर ले जाता रहता है और उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी इसके आदि हैं, दर्शक भरे हुए हैं, लगभग 30,000 के आसपास दर्शक, और क्यों ना हो, बहुत बड़ा अवसर है क्रिकेट के मुख्यालय में। और मैच किसका? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। परंपरागत प्रतिद्वंदी कांटे के मुकाबले के लिए सब ललायित हैं, क्या होगा अंतिम गेंद पर? अच्छी गेंद, स्टंप्स को, यू हैव टू अटैक स्टंप्स, बीच बीच में स्टंप्स की सीध में। अगर आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और ऑन साइड में फील्ड प्लेसमेंट है तो आपको फायदा मिल सकता है, नहीं तो फिर आप महंगे भी साबित हो सकते हैं।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 14 for 1-3 overs gone. England haven't been able to capitalise on the power play so far, except for one authoritative cover drive by Nat Siver-Brunt. There's just been that one bottom edge boundary for Amy Jones. Australia starting off just the way you'd expect. And a change in bowling now. The Australian captain, Sophie Molyneux, will start her left arm spin. And she's replacing Lucy Hamilton, who's got the best economy rate, I dare say, probably in the tournament itself, but certainly in the Australian team. She hasn't been among the wickets as much, but she's kept a very tight leash. And Wyatt Hodge has been susceptible to spin in her early part of the innings. And here's Sophie Molyneux now. An economy just at 6.5 runs and over. First ball of spin. And down the wicket comes Wyatt Hodge, gets a thick outside edge. He's going to run down towards the square third boundary. Won't be cut off. 4 runs.
6: ये लगा आभा का चौका।
5: Again, not quite where Wyatt Hodge wanted to play that. She was looking to play inside out through extra cover. Thickish outside edge. Keeper standing up, but covering the turn well and getting a fortuitous boundary. So 2 out of the 3 boundaries for England with a slice of luck. Here's Molyneux again. Wide of the crease, short and off the back foot, crunched. Not timed at all. Diving stop, I think it's Ellis Perry there. Dives to her right. What a cricketer she is. Talismanic. And someone who's played football for Australia as well. Supreme athlete. Had a little bit of an injury scare in the semi-final, but she's come back raring to go. And Wyatt Hodge now completes 300 runs in the tournament. 19 for 1. Siver-Brunt. Molyneux. Captain to captain. Straight to the fielder at point, and there will be no chance of a run. It remains 90 for 1 in the fourth over. Now 3.5 overs gone. England will have to look at getting a move on here. Molyneux bowls down the wicket, comes Siver-Brunt again. There's a bit of turn. This could be tight. The bails have been whipped off. They will go upstairs, I think. We'll have to wait and see whether Vrinda Rathi will actually signal that, or will the third umpire just review it and respond. But certainly beaten in the air was Siver-Brunt. Had to check her shot. Again outside edge. Quick throw in from Georgia Wall. And I think she's made her ground. But it was tight there. A single that they really shouldn't have been taking a risk with, but managing it. I think 20 for 1. The two batters in mid-conference now, Vineet. Here's the decision. Yes, she looks like she's in, Vineet.
0: बिल्कुल, और विकेट कीपर काफ़ी परेशान नज़र आई, खफा थी कि वो एक बेहतरीन अवसर को चूक गई रन आउट करने का। सिवर-ब्रंट को मोल्यूनू ने 3 बार आउट किया है T20 में। अच्छा मैचअप है, राइट हैंडर और बाएं हाथ का स्पिन बॉलर।
5: नाउ वायट हॉज, हुज हैड अ स्प्रिंट टू सेव हर विकेट, नाउ वेट्स फॉर मोल्यूनू एंड शी लुक्स टू स्वीप। द बॉल कम्स ऑफ द बैट ऑनटू द ग्रिल ऑफ हर हेलमेट। नाउ विल दिस लीड टू अनदर स्मॉल स्टॉपेज फॉर अ check, safety check, or was it not something that impacted the batter. We'll find out. We don't know that yet. 20-1. Siva Brunt is on 7. White Hodge also on 7. And these two have put on 13 runs. We're in the fourth over, last ball. And it's turned away on the onside to think of a run which isn't there. Excellent over, except for that one edge boundary. 20-1.
0: तो दिलचस्प क्रिकेट चल रहा है. ये पिछली गेंद 80 के आसपास की थी. कभी कभी ऐसा अब तक जितना थोड़ा सा खेल हुआ है उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि गेंद बहुत आसानी से बल्ले की तरफ आ नहीं रही है. स्ट्रोक्स खेलना इतना आसान नहीं है. गति में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ द पेस भी नज़र आ रहा है. बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया इस समय. और राइट हैंडर्स हैं उधर. आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में सब लेफ्ट हैंडर्स हैं, ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स हैं. कम से कम 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं. और इसीलिए वो ऑफ स्पिनर का मैचअप जो उनके साथ होगा तो चार्ली डीन कारगर साबित हो सकती हैं. लेकिन फिलहाल नेट सिवर ब्रंट के दिमाग में भी ये बात होगी कि उनको कई बार मोलिनो ने आउट किया है. अच्छा बॉलिंग चेंज था और परेशानी में नज़र भी आई. कोई भी बैटर अब तक प्रकाश विश्वसनीय नज़र नहीं आया है पिच पे कि वो रफ्तार को समझ गया है या अपना खुलकर स्ट्रोक खेल पा रहे हों. ओवर पिच गेंद पैरों के पास ऑफ द टोस खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री की तरफ 4 रन.
6: ये लगा आभा का चौका.
0: लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रही हैं कप्तान अनाबेल सदरलैंड को लगाया था और उनका अच्छा स्वागत किया और नसीहत दी. एक खराब गेंद जो ओवर पिच हुई और स्विंग के साथ अंदर की तरफ आ रही थी विद द टाइड खेल दिया उसको और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास उधर जहां टेवन स्टैंड है उस ओर गेंद चली गई 4 रन के लिए. 24 रन एक विकेट पर. इस बार उठा कर खेला है. उस ओर फील्डर है लेकिन काफ़ी दूर है. फील्ड किया, दूसरे रन के बारे में नहीं सोच रही हैं. लॉर्ड्स के मैदान पर जब आप देखेंगे मैदान तो आमतौर पर तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं. वो बाउंड्री लाइन पे कम से कम 5-7 फिट अंदर की तरफ खड़े रहते हैं. लॉर्ड्स में आप बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े नहीं रह सकते. ये एक विशेषता है इस मैदान की. इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना होता है. उसके बाद भी लोग उत्सुक होते हैं कि लॉर्ड्स में आकर खेलना है. 25 रन एक विकेट पर. 5वां ओवर चल रहा है. टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता. फील्डिंग कर रही है, अच्छी लंबाई की गेंद कर रही है. स्विंग हो रही है गेंद और रन लिया जरूर है लेकिन इस समय वेल विद इन देमसेल्व्स. दोनों बैटर्स कोई बहुत ज्यादा आक्रामक तेवर प्रकाश नहीं दिखा रही हैं.
5: ट्राइंग टू कंसोलिडेट एंड क्रिएट अ बेस हियर. आई डोंट थिंक दे आर टू वरीड अबाउट द पावर प्ले. डिफरेंट टीम्स अप्रोच पावर प्लेज डिफरेंटली एज वी नो विनीत. इंग्लैंड लुकिंग लाइक दे वांट जस्ट मेक श्योर दे डोंट लूज टू मेनी विकेट्स.
0: सदरलैंड प्रतीक्षा कर रही है. फील्ड को ही बड़ी जतन के साथ जमाई जा रही है और अंपायर की भी निगाह है और बैटर की भी निगाह होगी. नो बॉल का इशारा कुछ विलंब के साथ आया. तीसरे अंपायर जो कि किम कॉटन बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं और वहीं से तीसरे अंपायर से ही इस टूर्नामेंट में इशारे आते रहे हैं और यही नियम बनाया गया है. वेरी क्लोज, जस्ट ऑन द लाइन,
5: ऑलमोस्ट हार्श.
0: कड़ा निर्णय अंपायर ने काफी समय भी लिया ये फैसला करने में और अंततः बैटर के पक्ष में ये निर्णय गया. फ्री हिट मिलेगा उसकी तैयारी की जा रही है. मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया में हम कमेंट्री कर रहे थे सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में. प्रकाश ने मुझसे पूछा था कि जब इस तरीके से होता है फील्ड में परिवर्तन होता है या नहीं होता है. फिर वही जवाब ढूंढ के लाए थे कि अगर बैटर बदल गया है तो होता है. ऑफ स्टंप के बाहर से ये गेंद और उसको घुमा दिया है पुल के अंदाज में और गेंद जा रही है स्लॉग कॉर्नर में मिड विकेट के बाई तरफ से सीमा रेखा के बाहर 4 रन.
6: ये लगा आभा का चौका.
0: पूरी बैकलिफ्ट 360 डिग्री में घूमता हुआ बैट जैसे कि पुराने समय में कैलेप्सो कहलाने वाले वेस्टइंडीज क्रिकेटर खेलते थे लेकिन ये T20 का जमाना है साहब. और महिलाओं का क्रिकेट हो या पारंपरिक क्रिकेट हो अब तो बल्ला घूमता है और बखूबी घूमता है. दो चौके लग चुके हैं इस ओवर में. खराब थोड़ी दिशाहीन, लेग स्टंप के बाहर आई, पूरा फायदा नहीं उठा पाई. दूसरे रन के लिए सोच रही हैं. दो फील्डर पे विकेट कीपर स्वयं पहुंची वहां उस गेंद को रोकने के लिए लेकिन कोई विशेष लाभ बैटर उठा नहीं पाए क्योंकि गुंजाइश केवल उस लेग बाइस पर 1 रन की ही थी. तो जैसा कि हम दोनों ही आपको बताते रहे अब तक टाइम नहीं कर पा रहे हैं गति का परिवर्तन है, निश्चित है, कर रहे हैं चतुराई के साथ बॉलर्स, लेकिन उसके बावजूद भी ये विकेट कुछ धीमा लग रहा है और बैट पे नहीं आ रही है गेंद। फिर लेग स्टंप के बाहर कलाबाजी खाते हुए विकेट के पीछे कैच के लिए अपील कर रही है और

0: happened last night when Harry Brook was given out. Exactly the same situation down the leg side. The umpire declared it a wide, and then the replay showed the ball had taken the glove. This will tell you, Vineet.
1: बिल्कुल ग्लव्स के बेहद करीब से जा रही है. निश्चित रूप से अल्ट्रा एज देखना चाहेंगी किम कॉटन. बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं, बहुत अनुभव है उनके पास. और वो जो दृश्य है आपके दिमाग में भी आया होगा, ईशान किशन बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नज़र आ रहे थे, संकल्प से भरे हुए थे, कह रहे थे बिल्कुल बिल्कुल आउट है आउट है. और यहाँ विकेट कीपर एमी, जबकि ग्लव्स के पास से एज नज़र आ रही, और ये निश्चित रूप से विकेट मिल जाएगा वहाँ. अच्छा रेफरल किम कॉटन के निर्णय की हालांकि प्रतीक्षा है, लेकिन वो स्निको, वो जो अल्ट्रा एज है, जो कार्डियोग्राम की तरह उस ऊपर नीचे उठने वाली रेखाएं आती हैं, ग्लव्स के पास से जब गेंद गुजर रही थी, और विकेट कीपर बहुत जल्दी बर्ट मुनी उसको समझ गई थी, और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ कैच की तरफ वो लपकी थी, और छलांग लगाते हुए, डाइव लगाते हुए उन्होंने किया था, वो कैच किया था, और रेफरल मिला. उनके रेफरल दो अभी भी बरकरार रहेंगे, दोनों टीमों को दो दो इस इनिंग्स में. सफल जब तक वो रहेंगे, जब तक दो बने रहेंगे. पूरे हाथ आगे फैलाए, पोजीशनिंग अच्छी थी, अनुमान अच्छा लगाया था, हालांकि अनसाइटेड थी बैटर के द्वारा. और उसके बाद भी मुनी, जिन्होंने कि अब तक 5 कैच पकड़े हैं पीछे विकेट के इस टूर्नामेंट में, अपना पूरा अनुमान लगाकर और उसका लाभ दिया, और उसके बाद उन्होंने जानबूझकर सलाह भी दी कि लीजिए इसमें गुंजाइश है. और अब उंगली उठती हुई विंदर राठी की, जबकि बैटर जा रही हैं, तो दबाव इंग्लैंड के ऊपर अचानक नजर आ रहा
0: है. एब्सोल्युटली. एंड सो द लीडिंग रन स्कोर इन द टूर्नामेंट, डैनी वायट हॉज जॉइंस हर ओपनिंग पार्टनर एमी जोन्स बैक इन द लॉर्ड्स पवेलियन. इंग्लैंड इन ट्रबल आई वुड से, हैविंग लॉस्ट द सेकंड विकेट फॉर 32.
1: तो ऑस्ट्रेलिया केवल 2 विकेट ले चुका है, और रन बनाने की गति जो पावर प्ले में इंग्लैंड रखना चाहता है, हर टीम रखना चाहती है, क्योंकि 2 ही फील्डर बाउंड्री पे होते हैं, उसका लाभ भी वो नहीं उठा पाए हैं. और एक वो जो पार्स स्कोर की जो परिकल्पना उन्होंने की होगी और जो दिमाग में बैठा होगा, उसका इस पिच को देखकर और परिस्थितियों को देखकर अब संभल कर खेलना होगा. ज़्यादा विकेट वो खोना नहीं चाहेंगे. एलिस कैप्सी, इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस टूर्नामेंट में नहीं हुई है, लेकिन आज सुनहरा अवसर है, वो अपने आप को साबित कर सकती हैं और बीड़ा उठाएं इंग्लैंड को आगे ले जाने के लिए. 5 मैच 74 रन, ये उनके लेखा जोखा है पिछली 5 इनिंग्स का. कैप्सी सामना करेंगी, वही स्ट्राइक लेंगी अंतिम गेंद, और धीरे से पुश भर कर दिया बहुत ही इत्मीनान के साथ, और कप्तान साथ दे रही थी सेवर ब्रंट, 1 रन पूरा हो गया. 5 ओवर समाप्त, 33 रन 2 विकेट पर.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही
3: भगड़. भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: 33 for 2, not dissimilar to the kind of position England found themselves in the semi-final against South Africa. The important thing is Siva Brunt is still there. She's on 16. Alice Capsey has just joined her. Danny Wyatt Hodge would consider herself a little bit unfortunate to have been snaffled down leg side, but the athleticism of Beth Mooney once again showing that if you're fit and sharp, a lot more is possible. Capsey now on strike, and Lucy Hamilton is back into the attack for her second over, having bowled the first one for just 4. Bowls to Capsey. Capsey swings and misses outside the off stump. That left arm over the wicket angle, looking to play square towards backward point was Capsey. Slightly thick set, but a wonderful timer of the ball is Alice Capsey in the women's 100. She's played some blistering innings. She's a strong hitter of the ball across on the onside, but also has a very pleasing drive through the offside. So one of the younger players coming through in recent years. Bowls now, and Capsey this time is striking it well, but a little fumble attempt allows the single to be taken, and there will be a run added to the total. 34 for 2 now, with the last over of the power play. 4 more deliveries to come. Charlotte Edwards, after the trouble and the problems that England had with that Ashes loss in Australia, having not made the World Cup final, or in fact the semi-final losses that they suffered, all that has been looked at by Edwards. Here's the next one. Inside edge. Fortunate again is Siva Brunt, the bottom hand.

0: coming through a little bit earlier, and as a result, the inside edge squeezes through on the onside, not where she wanted it to go. She'll take the run. That'll take the total up by a run further now, 35 for 2. But as Vineet said, not able to time the ball, the English batters at the moment. Some of it on account of the variations of the Australian bowlers, but also maybe the pitch is just a little bit too paced at the moment. Slower ball, and thought about it, Capsi then withdrew her bat and let it go through on the bounce into the gloves of Beth Mooney. So really a testing time at the moment for the England batters. Siva Brunt holding things together at the moment on 17. Capsi's got 2 runs, and certainly not looking an inspiring start by England. Not the kind of beginning they would have liked, but at the moment, slight hold up and another no ball. The no balls are taking a fair amount of time to come from Kim Cotton and the technology. Technology has been in talk of the world. This is a big no ball, this one, Vineet, no question here. But whether it's the FIFA World Cup in football that's been going on in the other part of the world, in the States, along with Canada and Mexico, technology has been controversial. But here, no controversy, clear no ball, signaled as such, and a free hit is just what the doctor ordered for England. Alice Capsi now has a chance to be able to get at least a boundary, if not tonk it over the rope. She's well capable. Round the wicket comes, and she will not get a single, or she just about gets it. It wasn't an easy run, so well bowled in the end by Lucy Hamilton. Came round the wicket and made sure that only a single accrued. 37 for 2 now. And a little fumble at mid-wicket. Otherwise, they could have been trouble at the non-striker's end. Vineet Capsi had no chance. She was way out of the crease when the ball came to the hands of Annabel Sutherland. But the throw wasn't great from Ash Gardner, and that allowed the run to be completed. So fortune still continuing to favour England. How long are they going to ride their luck, Vineet? That is what we have to wait and watch. Everything so far, from a luck point of view, seems to have gone in favour of the hosts, along with the fact that playing at their home ground. Wide of the crease, cut away on the offside. Fielder at Brunt will cut it off for a single, is all that England will get. 38 for 2. Brunt, Siva Brunt moves to 18, and Capsi back on strike. The run rate just edging over 6.5. Not the kind of start you'd expect in the power play of a big World Cup final, but that's just the way it is at the moment. 38 for 2. England will have to do some rebuilding here. Australia will be quite pleased, I think, with the way things have gone so far. Sophie Molyneux, their captain. 2 no balls already. Not something Australia will be proud of. They really love their discipline. Capsi waits for the last ball of the power play. Balls, and she's placing it out onto the deep cover area for another run. End of the over. 6 gone. 39 for 2.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: तो ड्रिंक्स मैदान पर हैं, 6 ओवर के बाद और फिर 14 ओवर के बाद 2 ड्रिंक्स इंटरवल एक पारी में। सवा घंटे की पारी, 15 मिनट तो 20 मिनट मौके के अनुसार कि ओवर्स टाइम पे पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। ओवर टाइम पे पूरे करने बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका एक खिलाड़ी अंतिम ओवर्स में कम आपको मिलेगा बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द। ये सूरत हाल है यहाँ पर। आज टॉस हुआ, फाइनल मुकाबला है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 वर्ल्ड कप का, ये 10वां है। कुल मिलाकर अब स्थिति यह है कि 39 रन के स्कोर पर 2 खिलाड़ी इंग्लैंड ने खोल दिए हैं। हालांकि कप्तान अभी भी मौजूद है, नेट सेवर ब्रंट। और जैसा कि प्रकाश ने बताया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब उनका मुकाबला हुआ सेमीफाइनल, लगभग यही परिस्थितियां थी। उसके बाद हैदर नाइट और कप्तान के बीच में 133 रन की साझेदारी हुई। तो इसी तरीके की कुछ ज़रूरत यहाँ पर है। पिच निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बैटिंग के अनुकूल लगभग इस समय नज़र नहीं आ रही है। तो जैसे जैसे धूप होगी, क्रॉस ब्रीज है मैदान पर, वेस्टर्ली ब्लो कर रही है जो पिच के ऊपर से अक्रॉस जा रही है, तो शायद बाद में बैटिंग करना शायद कुछ अपेक्षाकृत आसान हो। लेकिन अभी जूझ रही है इंग्लैंड की टीम एक बड़े स्कोर करने के लिए। एक स्ट्रोक ऐसा याद नहीं आ रहा है प्रकाश जिसमें

0: आक्रमक तेवर से मिडल करके उसको बाउंड्री पार पहुंचाया।
1: I would say, Vinith, except for the first cover-driven boundary that Nat Sivabrant played, which was really a beautifully timed shot, there hasn't been, you're right, a stroke of authority, a stroke of control, or a stroke of determination. But it seems like that is the plan that England are playing with. They haven't shown aggression. And different teams approach power plays differently. India, for example, look to maximize the power play. And in the process, if they lose wickets, it's okay. That's their thinking. Some other teams play slightly more conservatively, but the occasion, the World Cup final, the losses to Australia, home pressure, all of those things must be playing on the minds of the England batters as well.
0: एक बात तो तय हो चुकी है और आंकड़े इस बात का सबूत हैं, स्टैट्स इस बात का सबूत हैं, प्रमाण हैं कि ये सिक्सर लगाने का खेल तो नहीं है T20 क्रिकेट। आप देखेंगे कि जो टीमें आगे बढ़ी हैं उनमें कम सिक्सर लगाने का ही रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, ज़्यादा लगाया नहीं है। सबसे बड़ी बात स्ट्राइक रोटेशन और डॉट बॉल्स कम से कम खेलना बहुत मायने रखता है और उसमें कुछ में पिछड़ी है जिसमें भारत भी है। हालांकि आप देखें छक्के लगाने में स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा दोनों ने 5-5 छक्के लगाए हैं, सबसे ज़्यादा ड्रैक्सन ने लगाए हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो ऊपर हैं सिक्सर्स में तो। लेकिन वो जो स्टार्ट मिलना चाहिए था भारत को नहीं मिला क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेशन नज़र नहीं आया। ये दीजिए, ये एक और खतरनाक बॉलर जॉर्जिया वेरहम, लेग स्पिनर हैं लेकिन गजब की बॉलिंग करती हैं, झांसा में माहिर हैं, हवा में झूलती हुई तैरती हुई डिप हुई गेंद मिडिल स्टंप पर आती हुई। ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स को लगातार अटैक किया है, यथासंभव स्टंप्स पर रखी है, यू मिस आई हिट, और ऐसे में फिर दुश्वारियां बैटर्स की बढ़ जाती है और आपको देखना पड़ता है कि कैसे खेलेंगे। 40 रन दो विकेट पर, ये सातवां ओवर ड्रिंक्स के बाद का पहला ओवर लॉर्ड्स में शुरू हुआ है, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला खेला जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा है और उसको उल्टा खेलना चाहती थी, रिवर्स रैंप के हिसाब से खेलना चाहती थी या स्कूप कह लीजिए, हालांकि संपर्क हुआ, दूसरे रन के लिए आएंगी ज़रूर लेकिन इससे ज़्यादा तेज़ी से रन चाहिए क्योंकि पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है, अब बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द ज़्यादा खिलाड़ी रखे जा सकते हैं। आगे की ओर झुकी, कलाइयों को घुमाया, बैट का आसमान की ओर कर दिया और फिर विकेट के पीछे की ओर उसको खेलने का प्रयास किया और गेंद का जो मूवमेंट था, टप्पा खाने के बाद गेंद एक तो नीचे रह रही थी, ज़्यादा उसमें उछाल नहीं था, अपने स्ट्रोक को नियंत्रित करके चेंज करने की कोशिश की थी, तीन रन कवर में फील्ड कर लिया, ज्यादा ऊंची बैकलिफ्ट के ड्राइव किया था इस बार। लेकिन नेट शिवब्रंट जिन्होंने 75 रन 47 गेंदों पे पिछले मैच में बनाए थे, जबकि सोफिया डंकली के स्थान पर टीम में शामिल हुई जो अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन कप्तान ने बढ़िया पारी खेली, एक और सिंगल दौड़ते हुए इस बार गेंद को खेला है डाउन द स्लोप, उस ओर गई है जहां की माउंट स्टैंड है और वहां गेंद खुद ब खुद तेजी से जाती है लेकिन स्ट्रोक में कोई गति ही नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, प्लेसमेंट थी, गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करने का प्रयास था, मोड़ा भर था, केवल एक रन। अब तक 4 रन इस ओवर में, 2 गेंदे शेष हैं, 43 रन 2 विकेट पर। अगली वेरहम की, वेरहम देखिए बहुत बढ़िया गेंदे कर रही हैं, गेंद को आई लाइन के ऊपर कर रही हैं, बीच में फास्टर वन करती हैं, लोअर ट्रेजेक्टरी की गेंदे करती हैं, भरपूर वेरिएशन विविध लिए हुए उनका ओवर होता है और कुल मिलाकर टूर्नामेंट में उनका इस्तेमाल किया है और जब इस्तेमाल किया उन्होंने ब्रेक थ्रूज दिलाए हैं। हालांकि इस समय हावी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, सातवें ओवर की एक गेंद शेष है, 43 रन 2 विकेट पर, 43-2 ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग, इंग्लैंड बैटिंग आफ्टर लूजिंग द टॉस। अगली गेंद बहुत नीचे रह गई एकदम और अब लाचार हैं, खफा हैं अपने आप से और क्या करें, गेंद बल्ले पे आ ही नहीं रही और ओवर पूरा हो गया।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: England's woes with the bat continuing at the moment, 43-2. If there's a positive they can take from it is that they haven't lost a third wicket. And this is the phase now where they're going to have to really start looking to move on. But the Lord's pitch in recent times, whether it was the test match between New Zealand and England, whether it was the earlier games played in the county championship,

0: प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी

0: को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई

0: तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
3: ऑस्ट्रेलिया पेगिंग अवे एंड स्ट्राइकिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। इंग्लैंड इन ट्रबल, 70 for 4। 11 ओवर्स हैव गॉन, जस्ट 54 बॉल्स लेफ्ट इन दिस इनिंग्स। हाउ मच कैन इंग्लैंड गेट? The kind of scores that have been talked about, par would be about 170-ish as Wareham comes.

0: into the attack again. This one's driven straight past the bowler. Will it be cut off? Should be. It is. Athletic dive towards her left and limiting the scoring to, is it three runs? Looks like three or two. We'll wait and see. It was Siva Brunt. So two runs taken, hitting it straight field. Jackie Williams showing a lot of sharp movement as well, getting out of the way, the umpire, and the total moves to 72. Siva Brunt now standing tall amidst the flagging England innings. Can she pull them out of trouble? Wareham Bowles again tosses this one up, inviting the England skipper to commit an indiscretion, which she doesn't. Watches it carefully and quietly pushes it away back to the bowler. 72 for 4. Siva Brunt on 28. And here's Wareham again. Bowles down the leg side this time again. Not quite coming on to the bat. And Siva Brunt unable to make the bowler pay for a wayward delivery. 9 times out of 10, Siva Brunt puts that away for a boundary. But not on this occasion. Just a single. We haven't seen the umpire signal whether that came off the bat or the pad. Only time will tell. Watching a replay of what might have been a cotton ball, but my judgment says the ball dropped in front of the bowler's hand. The previous shot that Siva Brunt had prayed. Now Freya Kemp, the left-hander, on strike, 73 for 4. Georgia Wareham, jersey number 35, tosses this one on the leg side, and Kemp has helped it round the corner. But there is a fielder, just a single. Australia's field positioning, Georgia Wall down there on the boundary, moving quickly to her left. Clearly, Australia in control, Australia in command. I think what they're trying to show us on our monitors is the fact that if the ball had hit the stumps, maybe Freya Kump could have been run out at the far end. This one's down the leg side again, swept, misses, will be signaled wide, and it is by Jackie Williams. Spreads her arms wide to say, Georgia Wareham, you'll have to bowl that again. 75 for 4. We're in the 12th over at Lord's. The final of the T20 World Cup for women. Makes some room this time. Does Siva Brunt again unable to beat the fielder at 45. Just a single. In fact, not even the single. They did take the single. A little bit difficult to follow it when you're watching a TV monitor. 76 for 4 in the 12th over. Last ball, in fact, of the 12th coming up. Siva Brunt is on 29, just under a runner ball. Freya Kemp has just come in, and she's now facing this ball. Again, almost yorking her there, Georgia Wareham. Australia holding all the cards. 76 for 4, over bowled.
1: Gati ka bahut hi chaturai ke saath parivartan kar rahi hai, aur uska asar pad raha hai batters ke upar. Dobara sochna padega, par score is pitch pe kya hoga. क्योंकि जिस तरीके की ये अब तक का बैटिंग हुई है उससे देखकर लगता है कि खेलना इतना आसान नहीं है इस पिच पे. गेंद कुछ नीची रह रही है, रुक कर आ रही हैं. तो मैं समझता हूं कि यहां से जबकि 76 रन बने हैं और अभी 8 ओवर शेष है, 140-150 जूझना पड़ेगा इस पिच पे. अगर ये ऐसा ही खेलती है, आजकल तो हाइब्रिड पिचेस का ज़माना आ गया है. भारत में भी धर्मशाला में वो बनी है. इस टूर्नामेंट में हाइब्रिड पिचेस का इस्तेमाल हुआ है जिसमें सिंथेटिक रेशा होता है और इतना ज़्यादा वियर एंड टियर उन पिचेस पे नहीं होता. लॉर्ड्स पे भी है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है. ओवल में भी है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है. साउथहैम्पटन और एजबास्टन दो जगह हाइब्रिड पिचेस का इस्तेमाल इस T20 महिलाओं के विश्व कप में हुआ है. 13वां ओवर शुरू हुआ. क्रीज के एज ऑफ द क्रीज से क्या रन के लिए दौड़ रही हैं. बहुत विलंब के साथ बैटर वाले छोर से हटी थी. थ्रो आया लेकिन अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो मुश्किल में पड़ जाती. अंततः वो रन पूरा हुआ. हैमिल्टन को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए. रूसी हैमिल्टन महिला क्रिकेट में बाएं हाथ की तेज बॉलर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. 5-6 रही हैं इस टूर्नामेंट में और लूसी हैमिल्टन उनमें से एक हैं. गेंद को लगातार अपनी पेस को परिवर्तित करती हैं, बैक ऑफ द हैंड करती हैं और सीम के ऊपर से उंगलियों को फिसलाती हैं. आउटस्विंग उनकी स्टॉक बॉल है और इस समय मीडिया एंड या नर्सरी एंड से बॉल हो रही है. बाएं हाथ से ओवर द विकेट पैड पर लगी है. क्या अपील की जाएगी, हालांकि फील्ड नहीं हुई है. ग्लव्स से लगने के बाद या

0: कहां लगने के बाद गेंद गई है ये तो समय बताएगा, लेकिन पलट कर रन के लिए आ रही है। गार्डनर वहां पर मौजूद थी, थोड़ी सी गफलत हुई, गेंद थोड़ी पीछे की तरफ गई और फिर उसको जाकर लाना पड़ा। उनको खेलने का प्रयास किया था, फ्रंट फुट पे कमिट हो गई थी, फिर संतुलन बनाए रखा और खेला था उस शॉट को। गेंद हवा में थी लेकिन जब रोकने का प्रयास था पूरी तरह से पहुंच बना नहीं पाई थी गेंद तक, और दूसरा रन भी पूरा हो गया था। 79 रन 4 विकेट पर 13वें ओवर में ड्राइव किया स्ट्रोक में, हालांकि टाइमिंग अधिक ताकत कम, लेकिन इस बार सीधा स्ट्रोक काफी समय बाद 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: इससे थोड़ा विश्वास बढ़ेगा। एक कदम बाहर निकाला गेंद की पिच तक पहुंचकर खूबसूरती के साथ बॉलर्स बैक ड्राइव के अंदाज में, हालांकि गेंद कुछ देर के लिए अपेश अवश्य थी। अगली गेंद और इस बार गति का परिवर्तन कर दिया, आड़े बल्ले से खेला, पास की फील्डर से दायरे के अंदर रुका नहीं। महिला क्रिकेट में दायरा केवल 25 गज का है, 30 गज का नहीं है, बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड होकर आती तब तक एक रन और। 5, 6, 7, 8 रन अब तक इस ओवर में बने हैं। और वो जो शॉट था स्ट्रेट शॉट, काफ़ी समय के बाद कितना समय था उस स्ट्रोक को खेलने के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन ड्राइव बॉलर के दाईं तरफ से खेल दिया था। पहले विकेट के लिए 7, दूसरे के लिए 25, तीसरे के लिए 35 और चौथे के लिए 3 रन की साझेदारी। इंग्लैंड जूझ रहा है इस पिच पर और ऑस्ट्रेलिया जो माहिर है, खेल के हर क्षेत्र में अग्रणी है, तंग कर रहे हैं बॉलर्स और खेलना बैटिंग करना आसान नहीं है इंग्लैंड के लिए। बार बार कप्तान पिच पे मौजूद हैं, कैलकुलेशन कर रही होंगी कि पार स्कोर क्या होना चाहिए, कितने रन पर्याप्त होंगे कि एक अवसर बने इस फाइनल मुकाबले में, इंग्लैंड अपने मैदान पर वर्ल्ड कप जीतना चाहेगा। लेंथ अगर आप देखें तो लगातार प्रयोग नजर आ रहा है, लेंथ को बदला है, गति को बदला है, गेंद नीची रही है इस पिच में, लॉर्ड्स का मैदान है। अंतिम समय में स्ट्रोक को नियंत्रित किया, हवा में झूल गई गेंद, लगभग फुल टॉस पे आ रही थी उस गेंद को, मुड़कर खेलना चाहती थी लेकिन जिस तरह से चकमा खाया, अपना संतुलन भी लगभग खो पा रही थी, वहाँ पर ठीक से खेल नहीं पा रही थी, नियंत्रित किया, ओवर समाप्त हो गया 13वां।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: The reaction of Beth Mooney there suggesting that there might have been some glove. She was disappointed with not having been able to catch it. Not too far away from where the manner in which Danny Wyatt Hodge got out. Very similar. Siva Brunt looking to play the paddle. But that's all done and dusted. First ball of a fresh over. This one's taking the top edge of the bat and screamed away over the top of the keeper. There's a chase down there for Hamilton, I think it is, and they'll come back for the second. So two more runs to Siva Brunt, who's just holding this innings together. Not her normal fluid self, but as Vineet and I have been telling you, the wicket has played a big role. You just feel that it's a little bit on the slower side. The odd one is stopping. This one's been hammered away off the back foot, again with no real timing. So a single is all she'll get down towards wide-ish long on. And that will take her total, Siva Brunt's total, up to 34. The total now 88 for 4. And the run rate 6.6 runs and over at the moment, with Freya Kemp now on strike, the left-hander. This one's going in with the arm from the right arm off-spinner. Worked away on the onside for a single. They'll go back for the single. Second, little of a fumble down at the boundary. Just coming off it is Carey. And that will take the total to 90. Kemp moves to 10 off 7. Siva Brunt on 34. Both openers dismissed for single figures. And as indeed was the former captain, Heather Knight. That really was a big wicket, one felt. That after the performance of the semi-final, a lot was expected from the two captains, the immediate predecessor and the current one. Didn't happen for England. This one's again tossed up, driven away past the diving effort of the bowler for a single, before it is fielded by Ellis Perry. Amazing athlete, Ellis Perry. as indeed is the

0: majority of the Australian cricketers on view here at Lord's, with the 14th over in progress. England 91 for 4. Siva Brunt waits, bat raised, and goes in for the slog sweep, rolls her wrists over the bat, makes sure that the ball stays on the ground, and a single is all she'll get as the return comes in from the deep very, very quickly to the ball, the fielder coming off the boundary there. That's what I mean. Quick, sharp, and constantly alive to the evolving situation of the match, the Australian players. 92 for 4. Last ball of the 14th coming up now. On the leg stump, worked away on the onside. Might be a leg by. We'll wait for the signal, but the over is complete. Total goes up to 93 for 4.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: ड्रिंक्स मैदान पर आ गई है. 14 ओवर का खेल हो चुका है. इंग्लैंड टॉस हारा, पहले बैटिंग करने पर मजबूर किया गया और एक ऐसी पिच जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. लॉर्ड्स की पिच की पहले कुछ आलोचना हुई थी जब ये टेस्ट मैच खेला गया था और उसके बाद उसमें कुछ बदलाव किया गया है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि ये जो पिच नंबर 10 है जिस पे कि ये खेल हो रहा है और जिसको ग्राउंड्समैन ने ये सोच के किया कि एक ऐसी पिच दी जाए जिस पे अब तक खेल नहीं हुआ है. हालांकि 3 मैच से पूर्व हुए हैं मात्र इस टूर्नामेंट में, लेकिन फिर भी ये इस पिच पे गेंद कुछ नीची रह रही है और दोनों एंड्स पे रह रही है, रुक कर आ रही है और ऐसे में बड़े स्ट्रोक्स खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है. ज़्यादातर डिफ्लेक्शंस रहे हैं. 8 चौके, 1 छक्का अब तक लगाए. कैप्सी ने 1 सिक्स लगाया था लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में. बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रोक था, काफ़ी बाहर जाकर गिरा था. दर्शक दीर्घाओं और बाउंड्री लाइन के बीच में जाकर गिरा था क्योंकि बाउंड्रीज छोटी होती हैं. महिला क्रिकेट में बॉल भी हल्की होती है, छोटी होती है और जैसा कि मैंने बताया 25 गज का घेरा होता है. लेकिन यहां से ये मैच किस ओर जा रहा है प्रकाश? कितने रन चाहिएंगे इंग्लैंड को कि वो एक टक्कर दे सके, मुकाबला कर सके ऑस्ट्रेलिया?
0: आई थिंक दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन. द पिच सर्टेनली प्लेइंग अ रोल, बट आई वुड लाइक टू बिलीव पर्सनली गिवन द शियर डेप्थ एक्सपीरियंस एंड द कॉम्पिटेंस एंड द स्किल दैट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम हैज, that anything England will get, Australia will chase down. But for them to make a fight of it, to have something to bowl at, I think anything less than 155, 160 might be just a cakewalk. But that being said, as they say in cricket, and you and I know this very well, Vineet, no game's over till the last ball is bowled.
2: But ye bhi dekhne wali baat hogi, jabki drinks abhi bhi maidan par ek khel shuru nahi hua hai, ki pitch kaise khelti hai dusre half mein. 2018 में नॉर्थ साउथ एंटीगा में इंग्लैंड 105 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और लोएस्ट टीम टोटल एवर इन विमेंस T20 फाइनल. आंकड़े निकाले जा रहे हैं ओम प्रकाश जी. इंग्लैंड 105 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन 2018 नॉर्थ साउथ एंटीगा. वेस्ट इंडीज़ ने एक बार जीता है. पहले 6 ओवर में 39 रन 2 विकेट पर और 7 से 14 में कुछ रन गति बढ़ी, 54 रन 2 विकेट पर, तो रन रेट 6.75 तक पहुँचा. लेकिन फिर भी अभी भी, क्योंकि जिस तरह से टूर्नामेंट में आपके औसतन स्कोर 170-180 का तो रहा है, हालांकि 200 के स्कोर्स इंग्लैंड ने भी किए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने भी किए हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत ही 200 रन से की थी इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ, वो पहला मैच था. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी 220 करके नया रिकॉर्ड कायम किया T20 वर्ल्ड कप का. तो ये सूरत हाल रहा है. 93 रन 4 विकेट पर. सिवर ब्रंट 35 कैंप खेल रहे हैं, 12 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना किया है. सिवा ब्रंट ने 36 गेंदों का सामना किया है. ड्रिंक्स मैदान के बाहर सदरलैंड की पहली गेंद को ऑफ द हिप्स खूबसूरती के साथ मोड़ दिया है. गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ जा रही है. इस बार 4 रन मिलेंगे.
3: ये लगा आभा का चौका.
2: ड्रिंक्स की बात की पहली ही गेंद पर ये 4 रन मिले. बाएं हाथ का खिलाड़ी वैसे ही आकर्षक होता है. पहले ही गेंद की लेंथ को पहचान कर अपने आप को पोजीशन कर रही थी. कोई बहुत ज़्यादा डग आगे नहीं निकाला उन्होंने, केवल अपने को संतुलित कर थोड़ा हल्का सा पैरों पे फिरकी होकर पॉपिंग क्रीज के पीछे की ओर घुमा दिया 4 रनों के लिए. 97 रन 4 विकेट पर. और इस बार एक सिंगल जरूर मिलेगा. 2 फील्डर बाउंड्री लाइन के करीब से आ रहे हैं उसको उठाने के लिए.

0: और एक रन से संतुष्ट हैं। नौवां चौका था पारी का, एक छक्का है। ये अनुमान लगाना होगा, पिच की तासीर को आप समझ गए। सिल्वरबर्न कप्तान है, स्वयं फैसला कर सकती हैं कितना आक्रामक उनको होना है, पिच कितना अलाउ कर रही है और कितने रनों की आवश्यकता होगी। भाई जवाब ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो आपको बख्शते कहाँ हैं। और बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें तो लूसी हैमिल्टन जो नंबर 11 पर आएंगी, 19 कैप्टन है और नंबर 3 पर खेलती थी, 98 रन 4 विकेट पर। सदरलैंड की तीसरी गेंद 15वें ओवर की और शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आ गई और फिर घूमकर उल्टा खेला उसको, ऑन साइड में मोड़ दिया उस गेंद को, बाउंड्री लाइन के करीब वो गेंद फील्ड हो रही है, तब तक पलटकर आती है क्या दूसरे रन के लिए। देखिए रफ्तार में लगातार परिवर्तन, केवल 1-2-3 क्लिक्स की थी गेंद, 99 रन 4 विकेट पर स्कोर है, केवल 1 रन मिला उस गेंद पर। अनुमान लगाया थोड़ी सी वहां पर समझ होती, पहला रन तेजी से लेती तो शायद हो सकती थी कि वो दूसरे रन के लिए पलट कर आ सकती थी। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट, इस बीच ये गेंद धीमी गेंद थी आगे, और क्योंकि गेंद की रफ्तार कम थी संतुलन चूके, लेकिन संतुलन फील्डर का भी चूका और बाउंड्री लाइन से जाकर टकरा गई, 4 रन मिल गए इंग्लैंड।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: और इसके साथ ही इंग्लैंड के पारी के 100 रन पूरे हुए 14.4 ओवर की बैटिंग करने के बाद, ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला उसको, और ड्राइव लगाते हुए फील्डर के हाथ से लगने के बाद गेंद जाके टकरा गई, वेयर एम वहां पर मौजूद थी। इस बीच ये गेंद सदरलैंड की अगली गेंद, ड्राइव किया और गेंद जा रही है फील्डर के पास, 1 रन लेने से नहीं रुक सकेंगे। एक 104 4 विकेट पर रन बनाने का औसत अब पहली बार 7 के ऊपर जा रहा है। फील्डर नहीं बल्कि बॉलर भी जिस तरह से फिसली थी उस गेंद को लेने के लिए, हाथ ऊपर किए थे उन्होंने, उनकी उंगलियों के पोरों से लगकर गेंद पीछे की तरफ चली गई थी। सदरलैंड का ये ओवर 15वां ओवर है पारी का, एक गेंद शेष है, फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। वेरम आमतौर पर सब कुछ झोंक देती हैं, डाइव लगाई थी, पसर गई थी वहां पर, लेकिन फिर भी उसको हाथ से छिटकी हुई गेंद को अंततः दोबारा प्रयास करने पर भी रोक नहीं सकी। ये अंतिम गेंद थी, इस पर भी सिंगल मिल जाएंगे, 4 सिंगल 2 चौके इस ओवर में, और 15वें ओवर की समाप्ति पर 105 4 विकेट।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: 15 overs have been completed. Time for England to now go on the charge, one feels. The charge of the light brigade will be required. 105 for 4. This partnership worth 35 important runs. But England will be targeting at least 50 runs from these last 5 overs. And that means they'll have to get a move on. Molyneux, 2 overs so far. Comes in and bowls. And the first one's punched away through extra cover. Wide-ish mid-off region. And nicely timed indeed by Sivabrunt to get to 41 now. And England move to 109 for 4. Good start to the over. It's always a good thing for a batter if you can get some runs off the first ball.
1: Ye laga, abha ka choka.
6: Molyneux in again, bowls, and this one short and has been pulled away on the onside. Will this be cut off? Yes, it is. Georgie Wareham is there. Just a single at the deep mid-wicket region, and one more to the total. Freya Kemp on 22 of 13. She has been the one batter who has seemed to have timed the ball well. She's played 2 or 3 very delightful shots. One was the flick of the hip. The other one was the whip through the mid-wicket region. Certainly timing it superbly. Here's Molyneux. Balls now to the left-handed Kemp, who's off the back foot, not able to beat the fielder at short extra. No run. 110 for 4 it remains in the 16th over now. Run rate just creeping over 7 runs and over. Kemp high back lift, waits now, bat raised, looking for a force in shot, gets a thick outside edge. The ball's running down towards the third man boundary. Will it be cut off? Yes, it is. As you'd expect, the Australians don't let too much go past them. 2 more runs to the total Nevertheless, 112 for 4 with two balls in the 16th to come. Molyneux, left arm spin going really wide of the crease. And as a result, that outside edge just flying away very fine. But no pace on the ball to really work with for Kemp. And that's something that Vineet's been consistently telling you. Here's Molyneux, last ball of the over. No, fifth ball of the over. Worked away nicely. Wide of mid-on for a single by Kemp. And this partnership now is worth 42, 43 with that single. 113 for 4. Last ball of the 16th coming up. And the field changes for the right-handed Siver Brunt. The right-left combination working to England's advantage. But Australia won't be too fussed. Balls to Siver Brunt, who works it away on the onside, paying it with soft hands. They look for the second run. Will they get it? No, there's no chance. A single is all they'll get. Over bowled, 16 gone. 114 for 4.
0: हालांकि कोशिश की है इंग्लैंड के बैटर्स ने कि विकेट के पीछे और इसीलिए कई बार वो मुसीबत में भी पड़ी और विकेट भी खोया है उन्होंने क्योंकि उस ओर बाउंड्री शॉर्ट हैं विकेट के पीछे लगभग 55-58 मीटर की बाउंड्रीज हैं उसको टारगेट करने की कोशिश की है लेकिन अब उस जगह ये मैच पहुंच गया है ये पारी पहुंच गई है यहाँ एक तो दोनों फिनिशर जो अब तक रही हैं इंग्लैंड की एक तो फ्रेया कैंप उनमें से हैं जो कि मैदान पर पहले से ही मौजूद हैं और उसके बाद डेनी गिब्सन आएंगी वो भी आक्रामक शैली से खेल सकती हैं अगर ये दो खिलाड़ी यहाँ से कुछ आक्रामक स्ट्रोक खेल पाती हैं तो ऑस्ट्रेलिया का भरोसा भरेगा कि इस पिच में स्ट्रोक्स लिए जा सकते हैं तो ये एक सारा नज़रिया है समय के साथ पल पल रंग बदलता T20 का खेल है और 114 चार विकेट पर 16 ओवर के बाद इस फाइनल मुकाबले में लॉर्ड्स क्रिकेट के मुख्यालय में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबला यहाँ चल रहा है और अब ये देखना 6 बॉलर्स का इस्तेमाल पहले ही कर चुकी हैं और देखना है कि अब किसके हाथ में वो गेंद देती हैं गार्थ किम गार्थ को 3 स्पेलों में इस्तेमाल किया है एक एक ओवर के बाद भी बॉलर्स को बदला है लेक्सम के बाहर पे छिटकती हुई गेंद क्या वाइड का इशारा आएगा अंपायर का जी हाँ वाइड गेंद मिली एक रन मिला इंग्लैंड को चाहिए रन और ज़्यादा से ज़्यादा रन और ऐसे में ये एक्स्ट्रास काम आएंगे गेंद भी और मिलेगी और उसको वो खेल पाएंगे लेंथ अगर आप देखें तो सेमीफाइनल 1-2 में अगर आप देखें तो लेंथ बहुत अलग थी क्योंकि पिच बिल्कुल अलग थी उसमें बाउंस ज़्यादा था इस बीच ये गेंद अंतिम समय में अपने आप को चेक किया और ये गेंद जिसको कि थोड़ा सा फ्लाइट कर दिया था देखा गेंद डिप हो रही है अपने स्ट्रोक को बदला और धीरे से मोड़ भर दिया उस पर कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं लिया तो इरादे तो अब मनसूबे तो बन गए हैं कि आक्रामक खेलना है चौथा ओवर है अंतिम ओवर है गार्थ का 10 डॉट बॉल्स हैं उनकी 14 रन दिए एक खिलाड़ी को आउट किया हैमिल्टन का एक ओवर है मॉलिन्यू और सदरलैंड का भी एक एक ओवर बचा है और वेरम और गार्डनर के दो दो ओवर शेष रह जाते हैं यहाँ से ये 17वां ओवर है अभी केवल एक गेंद हुई है बहुत समय ले रहे हैं फील्ड प्लेसमेंट में मॉलिन्यू ले रही हैं और समय पे ये ओवर समाप्त नहीं कर पाएंगी अगर ओवर रेट में पीछे पिछड़ेंगी तो बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी कम मिलेंगे लेकिन सुखद स्थिति में है ऑस्ट्रेलिया लेकिन पिच का कुछ पता नहीं है एक एक रन रोकना भी चाहेंगे ये भी एक नज़रिया हो सकता है फील्ड प्लेसमेंट में तो आप देखेंगे तो दायरे के अंदर खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं 3 ऑन साइड में 2 ऑफ साइड में और ये लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रही हैं ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद आ रही है बैत मुनी को आप देखें बड़ी सुरक्षित कीपर हैं और बहुत बढ़िया कैच आज पकड़ा और फिर अपील भी की और फिर रेफरल भी दिलवाया और उनको विकेट मिला था ऑस्ट्रेलिया को तब गति पर अगर आप देखें तो सीमर्स बहुत कम रफ्तार की गेंदें करते रहे हैं 88, 87, 103 फास्टर वन 99, 92 तो जो प्रकाश और मैं आपको बार बार बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भी रणनीति धीमी गेंदें करने की या गति का परिवर्तन करने की रही है अभी गेंद को सीधा खेला है और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब कोई 10-5 गज अंदर गेंद को फील्ड किया जाए उससे पहले एक रन और सदरलैंड एनेबल सदरलैंड वहाँ फील्ड कर रही थी सोफी मरिनी कप्तान है एलिसा हिली के बाद ये कप्तान हुई एलिसा पहले से पहले मैग लेनिंग थी लंबे समय तक मैग लेनिंग रही क्या खिलाड़ी थी फिर संन्यास उन्होंने लिया हालांकि लीग क्रिकेट और जो चैंपियन जो ट्रॉफीज चलती हैं हर देश में उसमें वो अच्छा खेलती हैं इस बीच अगली गेंद पर क्या स्ट्रोक उल्टा घुमाकर खेलने की प्रक्रिया प्रतीक्षा की रैंप कर दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन
1: ये लगा आभा का चौका।
0: गेंद हालांकि हवा में थी ऊपर, लेकिन सोच समझ के उसको, जैसे स्कूप होता है, लेकिन जिस तरह से गेंद

0: रन जोड़ने में लगे हैं और वो गतिवती और पिच विच का कोई असर नहीं है, वो स्लो स्ट्रोक खेलेंगे क्योंकि वैसे भी पर्याप्त रन बनते नजर नहीं आ रहे हैं। एक आध विकेट और गिर जाएगा तो कोई बात नहीं है। और एक फिनिशर जो कि रोल दिया ही गया है टूर्नामेंट में कि आपको तेजी से रन बनाने हैं। ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉले चूंकि विकेट कीपर के ग्लव्स में, 17वां ओवर पूरा हो।
1: तुम रिपोर्ट लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 18th over about to commence. 122 for 4 is the total. And Kim Garth's bowled out. 4 overs, 1 for 20. Ash Gardner round the wicket. Bowls, and this one's pulled away. Backward a square on the onside for a single. One more to the total. And that'll bring up Siva Brunt's 50. Back-to-back 50s for the captain. Our statistician Om Prakash Sharma right on the money. 9th 50 in the World Cup, first versus Australia, and 20th in T20 internationals for the England captain. So holding the innings together, Nat Siva Brunt, 123-4, and Kemp on 26 on strike now. Looking to play a first shot again, no pace to play with at all. And the inside edge results in a squeaky single, 124 for 4. In the middle of the match, once the innings is over, there will be a program from the studios. I'll tell you who you can listen to. Once bowled, once again, looking to play the big shot on the onside. Could have been a run-out chance. Shy at the striker's end, the ball runs behind the wicket. And the run is complete and the batter is safe. Rhea Kemp there, diving to save her wicket, and just as well, because England would not want to have lost another wicket. Beth Mooney's throw going over the stumps. 124 for 4 now. Siva Brunt on 50, and this one's been pulled away wide of mid on. She'll get 4 runs.
4: Ye laga abha ka choka,
5: beating Ellis Perry, who was running on to her left. So welcome boundary for England. 129 for 4 now, and moves to 31. Short and wide, pulled away very nicely by Kemp, sitting on her back foot, and really timed it well. She has, as I said before, been the one England batter who seemed to have got the measure of the pace of the pitch. She struck some good blows with good timing. Gardner in again, bowls, makes some room, goes inside out on the offside, will get runs, but only a single down towards the wide-ish long off boundary. She was looking for a squarer space, didn't get it. 130 for 4 now, with the last ball of the 18th coming up. 130 for 4, 7.3, just a shade below that is the current run rate. Siva Brunt looking to be aggressive now, bowls, and she goes back in deep in a crease and pulls it away. Own towards deep mid wicket for a single. 18 overs bowled, 131 for 4.
6: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: तो ये दिलचस्प है कि जब पिच में उतनी रफ्तार ना हो और गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है, तो आपकी बैट स्पीड बहुत मायने रखती है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। वो काम कैंप ने बढ़िया किया है और इसीलिए वो अब ज़्यादा तेज़ी से खेल पा रही हैं। स्ट्रोक्स अब इस पिच को देखकर उस हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी है। सदरलैंड नए ओवर की शुरुआत करते हुए धीमी गेंद और उसमें पूरी ताकत के साथ कलाइयों को घुमाकर मोड़ दिया उसको ऑन साइड में और एक रन ले लिया। सेवा ब्रंट 52 रन बनाकर खेल रही है। 9वां शतक पूरा हुआ, 132 चार विकेट पर। ये 19वां ओवर चल रहा है, इसके बाद एक ओवर रह जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रन इंग्लैंड जोड़ना चाहेगा। और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से रोकेगा, क्योंकि सेवा ब्रंट काफ़ी देर से खेल रही है, क्योंकि बैटिंग काफ़ी ज़्यादा शेष रह गई है। अब हर गेंद पर

0: भरपूर प्रहार करने का प्रयास इंग्लैंड का रहेगा, 7.27 का रन बनाने का औसत है। सदरलैंड लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं, 114 के आसपास की इस गेंद पर केवल एक सिंगल, तो सिंगल से ऑस्ट्रेलिया को आप कोई परेशानी नहीं होगी इस समय खेल के, तो बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत है। सर हिला रहे हैं, बैटर जिस तरह से कैंप हिला रही हैं उसको देख के लगता है कि निराश हैं, करें तो करें क्या इस पिच पर। फील्ड देखने को मिली तो आप थर्ड मैन दायरे के अंदर है, पॉइंट भी दायरे के अंदर है, कवर्स है शॉट वो भी दायरे के अंदर नज़र आ रहा है, हवा में झूलती हुई तैरती हुई गेंद को घुमाया लगभग फुल टॉस पे और दूसरे रन के लिए इस बार जा रही हैं। दिशाहीन थ्रो, हाफ पिच पर आया, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाती, ये होता है दबाव बनाने का नतीजा। आसानी के साथ दूसरा रन पूरा हुआ, 3 गेंदें 4 रन अब तक बन चुके हैं, 135 चार विकेट पर, ये 19वें ओवर की 3 गेंदें अब तक हुई हैं। शिवा ब्रांड 54 गेंदों पर 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर कैंप खेल रही है, लेकिन स्ट्राइक इस समय शिवर के पास है। फुल टॉस में घुमाया एक बार फिर, उस बार तो गेंद थोड़ी गैप में जाती हुई भी दिख रही थी, इस बार सीधे फील्डर के पास, एक रन और। हर गेंद पर रन तो बन रहा है लेकिन बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है इंग्लैंड को। 5 चौके लगाए हैं ब्रंट ने अपने 55 रनों में 50 गेंदों पर, विकेट के चारों ओर खेली अवश्य हैं लेकिन इससे ज़्यादा तेज खेलने की क्षमता रखती हैं, इम्प्रोवाइज भी किया है, उल्टे शॉट्स भी खेले हैं, रैंप और स्कूप भी खेले हैं। लगातार दूसरे मैच में उनका शतक, फिर धीमी गेंद हवा में झूलती हुई मोड़ा, बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही हैं, कोई अवसर नहीं दे रही हैं कि बड़ा स्ट्रोक लगे, क्योंकि रफ्तार कम हो और वो भी इस पिच पर तो स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हाइट हॉज सबसे अधिक रन इस टूर्नामेंट में 302, साउथ अफ्रीका की ओपनर टैस्मिन ब्रिट्स 225, सेवा ब्रेंट तीसरे नंबर पर आ गई हैं 224। सदरलैंड की अंतिम गेंद और लगातार ब्रॉक होल में टिप्पा खिलाती हुई स्विंग होती हुई धीमी यॉर्कर 110 के की, उसको रक्षात्मक रूप से खेला, 19वां ओवर समाप्त हो गया 137 चार विकेट पर।
1: राइट देन वी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द England innings, and after this innings, before Australia start, free hit 20 is the program you'll be able to listen, where our experts Chetan Sharma and Vaishali Mathur, both former cricketers, and Mona Parth Sarthi, sport journalist, will be in conversation with Vinish Jolly and Gitanjali Soni. So do tune in for that at the end of the England batting innings before Australia start their reply. At the moment, the game is poised at 137 for 4 with the last 6 balls to come, and England look well below par, but the wicket has been a little bit strange, it's been a little bit funny, and England spinners will certainly, Charlie Dean, Sophie Eccleston, will be looking to try and make the most of it. Molyneux will finish things off with the final over, first one driven to long on, Perry Fields, one more to the total, and Siva Brunt now on strike. 55 she's got off 51 balls, and 138 for 4. 7.2 the run rate. Fielders now moving around as we come to closing stages of this game. Now it doesn't matter that the final over has begun. Charlotte Edwards close up on our TV monitor suggesting that she's got a few worries about where this game might go. Have to wait and see. Now taking her time, Sophie Molyneux, now that the final over has started. Wide of the crease, balls to Siva Brunt, who goes inside out onto the wide-ish mid-off region, and they will come across for the second run. So the England captain trying to get as many as she can. One gets the feeling there might be a close game here if England can pick up a few wickets, but this Australian batting lineup is formidable. 140 for 4 now. 4 balls to come in this England innings. Remember, they were put into bat, both openers were dismissed for single digit scores, and then after that, of course, Nat Siva Brunt and Alice Capsey gave some momentum. Capsey fell soon thereafter looking for a reverse sweep. Heather Knight didn't last long at all, looked out of sorts, and since then Freya Kemp, who's I think been the best batter on view today, has held the innings together along with her captain. Coming down the wicket, flicked away to mid-wicket, just a single. And you can see that when in the final over of the game, the England batters are only able to get singles or twos. That tells you how the ball has dominated bat. 35 not out, free kick of 25. On now. Can she hit a couple of lusty blows? 141 for four. And she's gone straight upfield over the top and manages to get it all the way. Just as I was saying, a few lusty blows. She's hit one straight over the top for six.
2: Ye laga, Abha ka chakka.
1: England now coming into striking distance of the 150. 147 for four. And Kemp moves to 41. She can get a couple more boundaries away in the last two balls. That will be very, very welcome for England. 147 for four. Two balls left in this innings. Siva Brunt 58, Freya Kemp 41. And Molyneux in again. Pulled away from the crease by Kemp, looking for the second run. They're going for it. This could be tight. And a fumble by Molyneux ensures that Siva Brunt is back into the crease in safety. 149 for four. Not Siva Brunt on 58. Freya Kemp will in fact face the final ball of the England innings. This was a sitting run out to be made. Molyneux fumbles the throw. It wasn't a great throw, but nevertheless should have been done. Last ball of the innings, and Freya Kemp tonks it away towards deep wide-ish mid-on. They'll take one, and that's all they're going to get. So England finishing on a round figure of 150 for four, and that means Australia will need 151 if they are to win their seventh title. Time for me to hand over to our hosts of the program, Monish Jolly and Gitanjali Soni.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा?
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
7: स्वागत है आप सभी का फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं के पास 151 रनों का टारगेट है। मेरा नाम है मुनीश जॉली, मेरे साथ हैं गीतांजलि सोनी और बहुत छोटे से ब्रेक में हमारे साथ बहुत बड़े दिग्गज पैनलिस्ट यहां जुड़ रहे हैं, चेतन शर्मा जी फॉर्मर इंटरनेशनल, मोना पार्थसारथी और साथ ही साथ गीतांजलि सोनी की बाई तरफ बैठी है। मैं चाहता हूँ कि आप उनको इंट्रोड्यूस कराएं। गीतांजलि
8: जी बिल्कुल, वैशाली माथुर है हमारे साथ और जैसे श्रोता जानते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला चल रहा है अभी और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी होते हैं ना, जैसे कुछ लोगों के सपोर्टर्स होते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंग्लैंड टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो मैच हुआ है, मैं सबसे पहले चेतन जी से पूछना चाहती हूँ। चेतन, फर्स्ट ऑफ ऑल, योर प्रेडिक्शन वाज बैंग ऑन द वे यू सेड। आपने कितना स्कोर बताया था बताइए।
9: देखिए, मैंने कहा था कि मैंने जो पूरा वर्ल्ड कप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की बोलिंग इकोनॉमी रेट है, दैट इज 6.2, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा था 140-150 के बीच में, बिकॉज फाइनल्स है। फाइनल्स में ऑब्वियसली इंग्लैंड विल ट्राई द बेस्ट टू रीच 180। अगर आप 180 सोच के जा रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी हुई तो 140-150, बट स्टिल आई थिंक गीतांजलि दे आर 30 रन्स लेस,
8: बिकॉज
9: डेफिनेटली इफ यू बैटिंग फर्स्ट इट शुड बी 180, बट इंग्लैंड के स्पिनर्स में अच्छा दमखम है। लेट्स सी हाउ दे कम बैक एंड विन अ गेम फॉर देयर कंट्री, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऑस्ट्रेलिया यू नो दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप, तो 30 रन मुझे अभी भी लगता है कम है इंग्लैंड के।
8: सो क्लियरली इंग्लैंड इज देयर एंड गिविंग अ गुड फाइट एंड वी जस्ट हैव टू सी हाउ ऑस्ट्रेलिया फेयर्स नाउ।
9: डेफिनेटली यस, एंड देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, मैंने उस समय मैच से पहले वाले शो में ये बात की थी, आप एंड ऑफ द डे द बॉलर्स विन यू द गेम्स, बैटर्स नेवर विन यू द गेम्स, तो लेट्स होप कि इंग्लैंड के स्पिनर्स में जो दमखम है वो आ जाएं, अपना दमखम दिखाएं और ऑस्ट्रेलिया को मात दें, क्योंकि तीन बार फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मात दी है, 2012, 2014, 2018, तो लेट्स होप 2026 अलग हो इंग्लैंड के लिए।
7: वैशाली, 150 का स्कोर इंग्लैंड ने बनाया, आप ज्यादा चाह रही होंगी, बट क्या ये फाइटिंग स्कोर है?
10: अभी इंग्लैंड की बारी बाकी है एंड वहाँ उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स भी हैं एंड देखना ये है कि उनके स्पिनर्स क्या कमाल करके दिखाते हैं। okay. वो बहुत ज़रूरी है एंड 150 स्कोर, अगर उनके जिस तरह से उनके पेपर्स पे आंकड़े हैं उनके स्पिनर्स के, तो उस हिसाब से 150 भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए वो। एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लॉर्ड्स की पिच पे स्पिनर्स का

0: स्पिनर्स के हाथ में जो बॉल है और वो जिस तरीके से टर्न कराएंगे आज, वो कितना मुश्किल होगा बेथ मूनी के लिए खेलना और हमारी पैरी के लिए खेलना, एलिसी पैरी। तो ये दोनों एक बॉल बैटर हैं कि उन पे ज्यादा इंग्लैंड की आंखें होंगी, नजरें होंगी कि उनको बाहर कैसे दिखाएं।
1: मोना, एक समय था जब लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम 150 भी ना टच करे, 130 के आसपास, वो एक क्षण आ गया था वहां पे। लेकिन आपको लगता है एक अच्छी रिकवरी की, क्योंकि पापले उतना तो इफेक्टिव नहीं रहा इंग्लैंड के लिए, बट इट वाज गुड रिकवरी। आखिरी के 10 ओवर में लगभग 90 टच किया उन्होंने।
2: देखिए बिल्कुल, आप जब दो विकेट आपके पांचवें ओवर में ही गिर गए, पावर प्ले में आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा, उसके बाद जो आपकी कैप्टन है नेट सीवरब्रंट, वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा है आज, उसके बाद मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि जो सोफी मोलिनू है, जब जॉर्जिया वेरहम इतनी अच्छी गेंदबाजी करी थी, दो ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे, और आपको ये भी पता होगा कि लेग स्पिनर है और नेट को उनके खिलाफ प्रॉब्लम आती है, पिछले 5 T20 इनिंग्स में 3 बार उनको वेरहम ने आउट किया है, उसके बाद उनका कोटा पूरा क्यों नहीं कराया गया, जबकि अनाबेल महंगी साबित हो रही थी, कुछ सोफी बाद में महंगी साबित हुई। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉलिंग में अगर चतुराई से किया होता तो 130, जैसे कि आप कह रहे हैं 130 के आसपास ही इंग्लैंड का स्कोर रहता, लेकिन आखिर में कुछ फ्रेया कैंप ने अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो ऊपर के क्रम के बल्लेबाजों को करनी चाहिए थी।
3: चेतन, बहुत ज़्यादा कुछ कंसर्निंग तो लग ही नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से, बहुत सारा ऑलराउंडर्स हैं इनकी टीम में, बैटिंग कोई कंसर्न नहीं है, कुछ ऐसा आपको लगता है कि कंसर्निंग हो सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए?
4: देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ये टोटल जो 150 का नजर आ रहा है, इट वुड हैव बीन 180, मतलब फील्डिंग की आप तारीफ करनी होगी, ऑस्ट्रेलियंस ने जिस तरह की फील्डिंग की, कैचेस पकड़े। अब इंग्लैंड को भी बहुत ज़रूरी है कि 150, मतलब आपको वो रन्स जो 15-20 रन्स कैसे फील्ड में रोकने हैं, मेक द लाइफ मिजरेबल फॉर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, वो तभी हो सकता है अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे, मतलब उनको 150 बनाने के लिए 170 की बैटिंग करनी होगी, तब वो 150 बनाने के नज़दीक पहुँचेंगे। इफ़ योर फील्डर्स बेसिकली, मैं हर समय कहता हूँ, फील्डर्स अगर अपने गेंदबाजों की मदद कर रहे हैं तभी आप मैचेस जीतेंगे। तो इस समय इंग्लैंड के पास गेंदबाज एंड द फील्डर्स, वो जो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया अपनी फील्डिंग में, कमाल की फील्डिंग है। एक कैचेस आप देख लीजिए, जैसे कैचेस पकड़े उन्होंने और जैसी फील्डिंग की है, कम से कम 20-25 रन रोके हैं, तो अदरवाइज दिस टोटल वुड हैव बीन 170 ऑड।
3: एंड पिच इज गोइंग टू बिहेव एनी डिफरेंट?
4: आई डोंट थिंक सो। इट्स ए नाइस बैटिंग विकेट, इट्स अप टू द बॉलर्स, इट्स लिटिल स्लो। आपने देखा होगा कुछ गेंदें बिल्कुल नीचे रह गई हैं, बिल्कुल लो रह गई हैं, तो जब गेंद नीचे रहती है इसका मतलब इट विल डेफिनेटली हेल्प द स्पिनर्स। आप थोड़ा धीमा डालिए गेंद, तेज डालिए, बल्लेबाज को आने दीजिए गेंद के पास, ना कि आप गेंद को पहुंचाएं बल्लेबाज के पास। ये थोड़ी सी स्ट्रेटजीज हैं व्हिच आई थिंक सो द बॉलिंग कोच विल बी टॉकिंग टू द गर्ल्स, एंड आई होप, मैं अच्छा मैच देखना चाहता हूं। देखिए एज ए इंडियन मेरा इंटरेस्ट तो अच्छी क्रिकेट के ऊपर है, हमारी टीम बाहर है तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट ये है कि अच्छी क्रिकेट और फाइनल एक फाइनल की तरह लगे, दैट्स इंपॉर्टेंट।
1: राइट देन, टीम भले ही बाहर हो लेकिन अंपायर वृंदा राठी हैं, जीएस लक्ष्मी मैच रेफरी हैं, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन इंडिया दिखाई देती है। वैशाली, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट द पार्टनरशिप जो हमने देखा शिवा ब्रांड के बारे में, और एक 85 रनों की मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी साझेदारी मैं कहूँगा कैंप के बीच में हुई। यू थिंक क्या फील्डिंग करने जब आएंगे बोलेंगे चलो हमने एक रिस्पेक्टेबल स्कोर इस पार्टनरशिप के जरिए तो कर दिया, देयर इज सम न्यूज़ फॉर मोटिवेशन?
0: दोनों की पार्टनरशिप, लेकिन ना स्कीवर का यहाँ पे एक बड़ा रोल है कि जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं ना, उन्होंने कॉन्टीन्यूअस स्कोर किया है। अगर हम उनके स्कोर की बात करें ना, तो कोई भी उन्होंने 40 के अंदर कोई स्कोर नहीं किया, उससे अबव ही किया है। तो ये एक है ना बेनिफिट था इंग्लैंड के पास, और इसको थोड़ा सा ऊपर भेजते तो मे बी ये स्कोर डबल हो सकता था आज। एंड अगर हम फील्डिंग की बात करें, जैसे मैंने फर्स्ट पहले भी बोला था कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके दिखाई है।
1: दोनों क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड टू हियर दैट।
0: एंड इंग्लैंड अगर फील्डिंग ऐसे ही टाइट फील्डिंग करती है एंड स्पिनर उनके टाइट करके बॉल डालते हैं, लाइन टू लेंथ बॉल डालते हैं, तो हो सकता है कि वो ये किताब अपने नाम भी जीत सकते हैं।
1: लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट बन सकती हैं आज इंग्लैंड?
2: नहीं, मुझे लगता है कि जब बार बार हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, और ऑस्ट्रेलिया का जिस तरीके से आप बैटिंग लाइनअप देखिए, जॉर्जिया वॉल से शुरू होता है, बेथ मुनी पर हम बात पहले भी कर चुके हैं, फीबी लिचफील्ड 2022 में डेब्यू किया था उन्होंने, और 2023 में ने आखिरी आईसीसी पहली बार फाइनल है और वर्ल्ड कप जीतना चाहती हैं, जबरदस्त खिलाड़ी है, उन पर काफी दारों

0: दमदार होगा। एलिस पेरी की हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो कितनी कमाल की खिलाड़ी है। एशले गार्डनर जो एशिज सीरीज हुई थी 2025 में दोनों टीमों की, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी। तो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा डेप्थ है, बहुत गहराई है, और ये सारे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत सारा अनुभव है इनके पास। आप एलिस पेरी अकेले दम पर मैच जिताने का वादा रखती है, तो स्कोर वाकई में जो चेतन सर ने कहा 30-35 रन कम रह गया है।
1: Chetan, always we talk about there's a pressure on players and it's a big finals, it's a big tournament. But when you talk about teams like Australia and England, they have done so well, they have won all the matches till here. What kind of pressure actually players go through?
2: गीताजी, मैं जो बात सोच रहा था ना, मेरे दिमाग में आपने वही क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना, आप हमारे समय की क्रिकेट छोड़ दीजिए, आजकल आपको जब आउट होने से डर नहीं लगता ना, तो आप निडर हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इंडिया के खिलाफ देखी, द वे दे एक्चुअली बैटेड, वहां से आपको अनुमान लगता है कि जब आपका डर, वो आउट होने का डर खत्म हो जाए ना, तो एक्सप्लोसिव क्रिकेट आपको नजर आती है। आपने ये अंदर प्लान कर लिया है कि अगर वी आर 23 for 3 ऑल्सो वी विल गो फॉर इट। मतलब आजकल की जो क्रिकेट है वो इस तरह की क्रिकेट होगी, वो मेंस क्रिकेट है, वुमेन्स क्रिकेट, डजंट मेक ए डिफरेंस, इट्स सेम, द मेंटेलिटी इज सेम। जब ये मेंटेलिटी आपकी हो जाती है तो 150, जो अभी हम पार्था था शर्मा मैम बोल रही थी और मैं वही पहले बात कर रहा था कि आपको 150 की जगह 180 चाहिए था, एक क्वेश्चन चाहिए था आपके, बट अब आपके पास 150 है, 151 जीतने के लिए चाहिए। यू हैव टू फाइट ऑन दिस, यू हैव टू रियली फाइट, इट्स अ मैटर। आपने इतना हार्ड वर्क किया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, दोनों अनबीटन साइड्स पहुंची हैं, इतनी मेहनत करके आप पहुंची हैं, और एक मैच की वजह से ट्रॉफी निकल जाएगी हाथ से। यू हैव टू गिव वॉट एवर यू हैव विद यू, जस्ट गो एंड डू इट
3: राइट। देन मेरे को ना लग रहा है कि ये शो जब वे 1983 में अगर कोई लंचार शो हुआ होगा तो तक क्या बात की होगी वेस्ट इंडीज के बारे में। चेतन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड की भारतीय क्रिकेट टीम की 1983 की जो टीम थी उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बड़ी जल्दी से सोफी एकलस्टोन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। शी इज ऑफकोर्स द टॉप सेकेंड बोलर ICC की रैंकिंग में, उनका इम्पैक्ट कितना होगा?
4: उनका इम्पैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि क्योंकि अभी तक देखा गया उनकी इकोनॉमी 6 से ऊपर नहीं गई है अभी तक, एंड वो 6-5 के बीच में ही रही है।
3: हाइट भी उनकी 6 फुट है
4: बिल्कुल, एंड वो 110+ विकेट्स भी उन्होंने लिए T20 के अंदर। तो ये इम्पैक्ट ना एक बेटर है इंग्लैंड टीम के लिए, एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, एंड वही आती है जो बीच में जो मिडल ओवर्स होते हैं उसके अंदर आके वो जो चटका आती है डिफरेंट होता है, और वहाँ पे लाना और वो विकेट्स, आज उनको वो चटकाने बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया टीम के, क्योंकि ये वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो ये उनको करना पड़ेगा, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो अपना दिखाना पड़ेगा इस पिच पे आज।
1: And you know, everyone is excited because we want to see great match, as Chetan says. One thing which I really want to ask now, that Australia is very comfortable. It's England's ground and they know that, you know, they have been winning on this particular ground. What are the chances that Australia skips? Is it overconfidence or it might be like they in their mind decided they are going to do well?
2: देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो अपने जैसे नॉर्मल क्रिकेट खेलती है ये वैसे खेलेगी। आपके पास एज ए बॉलर यू हैव ए चांस बिकॉज दे लव द अटैकिंग क्रिकेट। अगर आप मेरे से इस समय ये पूछेंगे कि फेवरेट्स, मैं अभी भी फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया को मानता हूँ, तो विद 150-60-40 रेशियो इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आई विल गिव इट।
3: चेतन भैया, बड़ी जल्दी से हमको कमेंटेटर्स को हैंड ओवर करना है। आप फेवरेट तो मार रहे हो, लेकिन अंदर की कोई आवाज इंग्लैंड के लिए कुछ कह रही है?
2: आई डोंट नो, आई हैव अ लिटिल डाउट अबाउट इट, यू आस्क मी द ट्रुथ। 180 होता तो मैं जरूर कहता मनीष।
3: मोना, बड़ी जल्दी आपसे पूछना चाहूंगा, चार्ली डीन के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बट आपका मन क्या कह रहा है?
0: देखिए, मुझे अगर स्कोरबोर्ड पे बहुत बड़ा स्कोर होता ना तो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होता है। एक यहाँ एक एडिशनल प्रेशर तो है ही कि आपको सिर्फ 150 रन डिफेंड करने, तो उससे थोड़ा सा असर तो पड़ेगा।
3: वैशाली, बड़ी जल्दी से योर
4: प्रेडिक्शन।
3: ओके, थर्ड अंपायर का रोल प्ले कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन भाई आपका, मोना पार्था आपका, और वैशाली माथुर आपका, और गीतांजी सोनी के साथ मैं मुनीष जौली यहाँ पे आप सभी लोग से विदा ले रहा हूँ, क्योंकि कॉमेंट्री टीम हमारा इंतजार कर रही है अगले 20 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए।
5: Pre-Hits 20।
3: आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास. हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे विनीत गर्ग, एंड द बॉल बाय बॉल कमेंट्री इन इंग्लिश विल बी विद प्रकाश वाकनकर. टू लेजेंडरी फिगर्स अलोंग द स्कोर ऑफ भूपेंद्र सिंह भाटी, स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा. ओवर टू द कमेंट्री टीम.
5: स्वागत है आपका लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर. ये दूसरी पारी 2026 के फाइनल मैच की शुरू होने जा रही है. 151 का लक्ष्य है और सातवीं बार ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप जीत लेगा. ये स्थिति यहाँ पर है. इंग्लैंड प्रयास करेगा, उनका अपना मैदान है, यहाँ पर वो कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया को रोकना चाहेंगे. सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कितनी तगड़ी टीम है और मशहूर है कि नॉकआउट में उनके मुकाबले वो बिल्कुल एक तरफा कर देती हैं, इतनी हावी हो जाती हैं विपक्ष पर. तो क्या ऐसा होगा? इस समय सब भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं. एक रोमांच इस समय तो कम से कम है कि 151 रहने. क्या इंग्लैंड शुरू में कुछ अच्छे विकेट्स निकाल लेता है, जल्दी जल्दी कुछ उसकी विकेट उसकी झोली में आ जाते हैं तो उनके अवसर बन सकते हैं इस मैच पे. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप यूँ समझ लीजिए नंबर 11 तक बैटिंग करती है, तो इसलिए बैटिंग की कोई कमी है नहीं. पिच में भले ही थोड़ी बहुत दुश्वारी हो कि वो धीमी है, नीची रहती है, लेकिन जिस तरह से स्टंप्स को अटैक किया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने, कंटिन्यूसली स्टंप्स को प्ले में रखा और बैटर को बाध्य किया कि वो सावधानी से खेलें और गति का बहुत ही चतुराई के साथ लगातार परिवर्तन करना, इस तरह से करना कि पकड़ में ना आ सके, और उससे मात खाई. इंग्लैंड को शिकस्त दी उन्होंने उस पारी में, उसको बांध के रखा. 7.55 के औसत से 151 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए. जॉर्जिया वॉल और बेथ मूनी दोनों फॉर्म में है और बेथ मूनी तो ज़बरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में भी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी. तो उम्मीद ये की जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए. प्रकाश,
6: well, that's what you'd expect. Stranger things have happened, but yes, one does feel this game is Australia's to lose. England, one feels, will almost have to bowl Australia out. I don't think they can defend 20 overs and limit the scoring below 151.
5: पिछले मैच में 61 रन बनाकर नाबाद रही थी बेथ मूनी, विकेट कीपर है, अच्छी कीपिंग की और कम से कम दो, एक में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका योगदान रहा. चार्ली डीन ऑफ स्पिनर वो बॉलिंग करने जा रही हैं और जब नेट सेवर ब्रांड नहीं थी तब उन्होंने कप्तानी भी की इस टूर्नामेंट में, तीन मैचों में, और ये अच्छा मैचअप है. दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर, लेकिन इस समय राइट हैंडर सामने, पहले ही गेंद को ओवर द टॉप खेल दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन.
7: ये लगा आभा का चौका.
6: दैट्स अ स्टेटमेंट विनीत, दैट्स द वे ऑस्ट्रेलिया प्ले, राइट? ब्रिलियंट शॉट टू स्टार्ट ऑफ.
5: हाफ वॉली ऑन दी ऑफ स्टंप और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बैट का, अच्छी बैकलिफ्ट, पूरा फॉलो थ्रू, अच्छी फ्लरिश, 4 रन. अगली गेंद बहुत खतरनाक ढंग से आई, गेंद ये और उंगली उठी और आउट. खतरनाक ढंग से गेंद मूव हो रही थी, हालांकि रेफरल लिया गया है, ऑन ग्राउंड निर्णय है आउट का, वो मद्देनजर जरूर रखा जाएगा, वो मायने रखा जाएगा. और रेफरल लिया है जबकि 3 सेकंड शेष थे टाइमर पे. और वेस्ट इंडीज की जो अंपायर है जैकलीन, अब इशारा कर रही है हाथों से टीवी बनाकर कि टीवी अंपायर ये सुनिश्चित करे कि भाई ये निर्णय बदलने की आवश्यकता है या नहीं है, क्या वो आउट था या नहीं था. गेंद वास्तव में कुछ ऐसी अप्रत्याशित कर रही थी, चकवा खा गए थे बैटर. बैट के दूर नजर आ रही है प्रकाश गेंद.
6: Yeah, very similar to the way that she got out against India, Vinit, if you remember. Struck on the back, and this will be close.
5: Kim Cotton, jabki leg stump ke bahar gend tippa khaye to out nahi diya ja sakta, aur aisa hi hua hai. Acha referral, aur umpire, itna varishth umpire hai ye, Jacqueline itni varishth hai. Kam se kam senior most umpireon mein se ek hai. Anyway, the ball pitching outside the leg. और बच गए वहाँ पहले विकेट देने से ऑस्ट्रेलिया. बॉल सामना करेंगे अभी इस गेंद की. डीन की गेंद घूम रही है, खेला है बहुत विश्वास के साथ नहीं, लेकिन पहले ही पूरा मन बना लिया था उस स्ट्रोक को खेलेंगी, कमिट हो गई थी उस स्ट्रोक के लिए और उसको बखूबी खेल भी दिया. आसानी के साथ 1 रन ले लिया, 5 रन जीतने के लिए बनाने हैं, कुल मिलाकर 151 रन. मूनी और बॉल की जोड़ी मैदान पर है. ऑस्ट्रेलिया चाहे तो इत्मीनान से भी खेल सकती है क्योंकि आस्किंग रेट 7.5 के आसपास का है, 5 रन बगैर नुकसान के

0: अब मुनी के ही लिए डीन ने अपने को मोर्चे पर लगाया है, क्योंकि बर्ट मुनी विकेट कीपर लेफ्ट हैंडर है और ये अच्छा मैचअप है ऑफ स्पिनर डीन, जिन्होंने की काफ़ी विकेट लिए हैं। कुल मिला के चार्ली डीन अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में छाई रही हैं, 9 विकेट उनके खाते में इस मैच से पूर्व पहले ही हैं, टॉप 3 बॉलर्स में उनकी गिनती है। चार्ली डीन ये गेंद और उसमें सिंगल लेना चाहते थे, गेंद को वहीं पास में खेला था, कोई स्ट्रोक में टाइमिंग नहीं था, ज़्यादा दूर गेंद गई नहीं, मुश्किल से 5 गज के फासले पर गेंद जा रही थी, ये देखते हुए पलटकर अपने बॉलिंग मार्क पे वापस आ गए। ऑफ स्पिनर हैं, राउंड विकेट बॉलिंग कर रही हैं लेफ्ट हैंडर को। इस बार क्रीज में जगह का परिवर्तन उन्होंने किया और फास्टर वन कुछ हड़बड़ाकर खेला और आमदा हैं, हर गेंद पर रन लेना चाहती हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। इधर उधर प्लेस करके सिंगल स्ट्राइक रोटेट करके एक अवसर बनाती ही जा रही हैं और बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई बैटिंग नजर आ रही है। और इस बार गेंद की लंबाई थोड़ी सी कम थी, बैकफुट पे जाके खेला, हालांकि स्ट्रोक की बहुत ज़्यादा टाइमिंग या और प्लेसमेंट नहीं था, दो खिलाड़ियों के बीच में से निकलने की कोशिश थी, स्मिथ के हाथ में लगने के बाद गेंद छिटकी लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने उसको उठा लिया और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: इन वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट, batters ranked 1 and 2 are the Australian openers, Beth Mooney and Georgia Vall. They are the ones who've started things off to try and get Australia to their 7th T20 Women's World Cup title. Whether or not that will happen, we'll find out as Lauren Bell gets ready. She's one of England's rising stars. She comes in to bowl to the left-handed Mooney. She's in, she bowls, Mooney comes down the wicket, looks to go over the offside, is beaten. The aggression from Australia up front, very visible, trying to put the England bowlers off, not letting them settle into a line and a length. How will England respond? That is the key question. Good delivery, just back of a length. She made some room, did Mooney, looking to drive through the offside expansively. Didn't make any contact, lucky, didn't take an edge. Nice bouncy run up to the wicket. Tall figure of Lauren Bell bowls on the pads. Follows Beth Mooney. A shy at the last strike is end. If she had struck, Georgia Vall might have been short of her ground. But as it turned out, Lauren Bell's throw was off target. Excitement early on in this Australian chase. The two batters, like two cats on a hot tin roof, want to run off every ball. She was a goner, was Georgia. If that ball had hit stumps, anguish on the face of Lauren Bell. She knew she had a chance there. In comes Bell again. Two dot balls to start things off. Bowls to Mooney. No timing, but she'll get that ball away just in front of short cover. They'll pick up a single. 7 without loss. Alice Capsey there charging in jersey number 28. And a run to Mooney. She goes to 2. Vall is on 5. Australia 7 without loss. Chasing 151. Which I think everybody agrees, at least statistically speaking, is below par. Conversations between the England captain and the bowler now settles. And Mooney waits as settles the right-hander. And Bell comes in, goes wide outside the off stump. And the ball's been deflected off the gloves, running down towards the third boundary for 4 runs. By
6: ye laga abha ka chauka.
5: Waiting for the umpire to signal to see whether there was anything on it, whether it's a leg bye or whatever. 4 runs nevertheless. No ball to boot because it was outside the tram line, the guiding return crease, and so that is not on the playing surface, which means it's a no ball and a free hit, just what Georgia Vall would have looked for. The batter moved to the offside, but

0: not sufficiently, and in any case, anything that pitches outside the cut surface on the return crease is a no ball. Lauren Bell was thrown away by that movement. Comes in and bowls now, and Wall pulls handsomely. Question is, did it go all the way or did it drop inside the boundary? Looks like one bounce four, and Australia's innings gaining momentum. Our scorer Bhatti very keen to tell me that this was the 1,000th boundary in the T20 World Cup. Thank you. And 1,000 fours, if that means anything. I think it does to those who are statistically minded. But 16 without loss now. Australia setting the tone for this run chase. Here's Bell again. Comes in and bowls. Down the leg side, will be called wide, I am certain. We'll wait for the umpire's signal to confirm. It is 17 now without loss. Australia creating panic among the England bowlers who haven't been able to settle down. Lauren Bell bowling a no ball, not for the front foot but for direction. As Wall waits now for the fifth ball. This is an extended over, this one. And she's pulled it on. George Wall has dragged this one from outside the off stump, inside edge. Smiles on Charlie Dean as well as Lauren Bell's faces. And that is the first wicket. England will need plenty more of that. 17 for one. Vineet.
1: जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपदा थी हर गेंद पे बड़ा स्ट्रोक या रन लेने की, और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, अंदरूनी सिरा लगा, जंप से जाकर टक गई। बेल युवा हैं, अभी 25 बरस की हैं, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं, हड़बड़ा गई थी जिस तरह से उनके ऊपर आक्रामक तेवर दिखा रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बैटर, और उसकी वजह से उनकी लाइन बार बार वो बदल रही थी, लेंथ भी बिगड़ी। शॉर्ट गेंद ये देखते हुए कि दो फील्डर बाहर हैं और मिड विकेट बाउंड्री पे कोई है नहीं, शॉर्ट गेंद की और पुल कर दी गई, और एक गेंद तो उनकी पिच से बाहर, जैसा कि प्रकाश ने बताया, टिप्पा खाया, और इसलिए क्योंकि पिच के बाहर टिप्पा खाया वो नो बॉल दी गई थी। लेकिन अच्छी वापसी की है, एक विकेट मिल गया है, महत्वपूर्ण है, अब शिकंजा कसा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगा था कि दोनों छोर से ताबड़तोड़ बैटिंग करने का मन बनाकर मैदान पर ऊपर वो हड़बड़ाकर इधर उधर गेंद करते रहे, लेंथ भी चूके। मेलिनी काफी अच्छी कप्तानी करती रही हैं पिछली पारी में। इस बीच ये गेंद सीधा ड्राइव कर दिया, उस और कोई फील्डर है ही नहीं, चार रन स्ट्रेट ड्राइव, फोर रन्स।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: बहुत ही इत्मीनान के साथ 21 रन एक विकेट पर दूसरा ओवर भी समाप्त हो गया।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: दिलचस्प क्रिकेट। इंग्लैंड चाहेगा झोली में एक विकेट और आ जाए, और ऑस्ट्रेलिया अब दोबारा सोच में लगा होगा कि क्या जिस तरह से शुरुआत की थी उसको बदल कर कुछ धैर्य से काम लिया जाए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर उनके सामने है नहीं, जीतने के लिए 151 रन बनाने हैं, बहुत बैटिंग उनके पास है। बेल का निश्चित रूप से हौसला बढ़ेगा। इस बीच गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, गेंद को अपना संतुलन नीचे करते हुए फिर खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही है और वो पूरा भी हो जाएगा। 23 रन एक विकेट पर। स्मिथ बॉलिंग में परिवर्तन, चार्ली डीन की जगह लिंसी स्मिथ आई हैं, बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं। ये मैचअप्स का ज़माना है जनाब, तो जिस तरीके का बैटर है, अगर आपको गेंद बैटर से अलग जा रही है तो खेलने में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दिक्कत होती है, तो ऐसे ही बॉलर को लगाया जाता है जो बैटर से दूर गेंद को निकाले। कुछ गेंदें बिल्कुल ग्रिप हो जाती हैं, नीची भी रहती हैं, और ये बात सही है कि गेंद वाइड थी, लेकिन उन दो कारणों की वजह से वो बोल्ड आउट हुई। बहुत बढ़िया फील्डिंग करने का प्रयास तो था, कलाबाजी खाई, लेकिन रोक नहीं सकेंगी ये चार रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: स्मिथ ने कुछ तेज गेंद की थी, ऑफ स्टंप की सीध पे आती हुई गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला, गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच के क्षेत्र की तरफ गई, पूरी लंबाई में डाइव लगाई, लगभग गेंद तक पहुंच गई थी, एक हाथ आगे बढ़ाया लेकिन गेंद रुकी नहीं और बाउंड्री पार हो गई। अगली गेंद में स्टंप पर अटैक कर रही है स्मिथ। स्मिथ अच्छी लगातार, कई बार उन्होंने नई गेंद का भी इस्तेमाल किया है और यही सही नई रणनीति है इंग्लैंड की, वो भी लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था, एक एक ओवर के बाद भी बॉलर को हटाया गया, थोड़ी सी शॉट नीची थी, पुल करने में थोड़ी दिक्कत तो आई लेकिन फील्डर है वहां पर, वो उसको उठा लेंगे आसानी के साथ और केवल एक रन मिलेगा। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। डैनी थी वहां पर जो फील्ड कर रही थी, बेथ मूनी, 65 रन की आवश्यकता है 1000 वर्ल्ड कप में रन पूरे करने के लिए। एलिस पेरी का क्या कहें, महान क्रिकेटर, इनको पिछले 50 साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। या तो आप एज ए बैटर ही उनको शामिल कर लें या एज ए बॉलर, दोनों कामों को भरपूर अंजाम देती हैं। अगली गेंद को ओवर द टॉप खेला, फील्डर मौजूद है, केवल एक रन मिलेगा, स्ट्रोक के साथ दौड़ते हुए उस एक रन को पूरा किया। और कुछ लोग उनको गैरी सोबर्स ऑफ विमेन्स क्रिकेट बुलाते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन एक विकेट पर।
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम वही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
6: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
7: आभा
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Very evidently, Australia looking to maximize the power play. They're going just under 10 runs an over in these 3 overs so far, 29 for 1. Georgia have all the batter out, dragging one on. Molyneux waits. It's Phoebe Litchfield who's come in. I don't know why we've been saying Molyneux since the new batter came in. One more to the total. Tucked away around the corner. And total moves up to 30 now. We're in the fourth over. And England dearly would want to pick up not one but at least 2 more wickets quickly in the power play if they want to put some roadblocks. And one gets the feeling Sophie Eccleston will have a big role to play in this game as we wait and watch. Mooney waits now for the next one. Again, just making some room, driving straight past the bowler and the fielder mid off 4 runs.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: Slower ball that one, and picking it very quickly was the experienced Beth Mooney. What a batter she is, on the move and hitting it with full face of the bat, elbow up, so absolutely no problem for Mooney. And that means there is 4 more to be had. 34 for 1 now Australia, and Mooney moved up to 13, just a little over runner ball. Litchfield is on 6. That first ball boundary certainly helping her. And Lauren Bell with a little bit of a worried look on her face. Young Lauren Bell, as Vineet said, fairly early in her career. But the moment you see Lauren Bell, her face is often a reflection of her emotions. Very, very reflective. Very happy when she gets a wicket. And concerned writ large. Amy Jones, the keeper, now getting a helmet and standing up to the stumps to try and prevent Beth Mooney from leaving the crease. Bell goes in, bowls to Mooney. Mooney looking to work it on the onside. Struck on the pad, taken by the keeper from behind the stumps. No run possible. 34 for 1. In the middle of the fourth over now. Litchfield on 6. Phoebe Litchfield, another one of the young budding stars of Australian cricket. Very accomplished, has certainly performed well in all formats that she plays for Australia. And Lauren Bell with a skip and a jump into her run-up comes in bowls, and Mooney lofts this one high over the top and will get runs and will get 4 of them. 2-3 bounces, the ball rolls into the boundary cushion. So Mooney not letting up, she's up now with that boundary to 17 and the total is 38 for 1.
2: ये लगा आभा का चौका।
0: Remember that England got only 39 runs in their power play. Australia already

0: almost there now, 38 for one in the fourth over. Nicely lofted shot, the ball plugging a little bit in the outfield and then rolling into the cushions. Mooney waits for Bell, who's gone for nine in this over. Once again, making some room, exposing her stumps and carving the ball out on the offside. And they will come back for just the one run. Mooney goes to 18 and the total now moving up to 39-14. Only two fielders, remember, during the power play allowed outside the 25-yard circle. And Lauren Bell, having gone for 10 in this over, has now given away 21 runs in her 11 deliveries. Comes in, bowls again. Down the leg side, will be called wide off the keeper's pad. The ball ricochets, but good work towards the short fine region. Umpire now signaling wide. And that's extra runs for Australia. Two more, in fact. So 41 now, the total moves up to 110 runs separate Australia from a seventh Women's T20 World Cup title. What domination. Even though Australia have been missing silverware for a couple of years now, they look like they've got one hand on the trophy already. Bell bowls and nicely worked away in the gap. This will run away and will get to four runs. Yes, it is. Four more. Ye laga, abha ka choka. Beth Mooney on fire. She's on to 22 and another expensive over has been completed.
1: चार ओवर समाप्त हो गए. एक बात तो फर्क पड़ता है, जब आपके पास कोई बहुत ज़्यादा विशाल स्कोर का दबाव ना हो तो फिर आप ज़्यादा हौसले के साथ बैटिंग कर सकते हैं. पिच में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है इस पारी में, पहली पारी की तुलना में, और गेंद अभी भी फंस रही है, रुक कर आ रही है इस पिच पर, और इसी वजह से वो पहला विकेट भी मिला था जब वो आउट हुए थे. तो वो इसी तरह से हुई थी कि गेंद टिप्पा खाने के बाद फंस गई पिच में, रुक गई और बाहर थी ऑफ स्टंप के, और उसमें जो मूवमेंट था फिर नीचे भी रह गई थी थोड़ी, और फिर इस तरह से उसको खींच लिया, प्ले डाउन हो गई और स्टंप्स पे जट के टकराई थी गेंद. लेकिन इरादे मजबूत हैं ऑस्ट्रेलिया के और इसीलिए तेज़ी के साथ वो करती हैं. डीन वापस बॉलिंग करने के लिए आ गई हैं, उनकी पहली गेंद को ड्राइव किया. इंग्लैंड भी स्टंप्स को अटैक कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरह, यथासंभव लगातार स्टंप्स की सीध में गेंद करने की कोशिश है. लेकिन युवा लॉरेन बेल कुछ ज़्यादा वाइड इधर उधर की गेंदें करती रही हैं. अगली गेंद को स्वीप कर दिया उस ओर फील्डर, अब पहुंच रहा है, पहुंच से दूर, चार रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: ये बात तो माननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया सोच समझ के उन क्षेत्रों में ही स्ट्रोक खेल रहे हैं जिस ओर फील्डर दूर हैं या हैं ही नहीं. और वैसे भी दो ही हैं बाउंड्री लाइन के पास, एक मिड विकेट की तरफ हटकर स्क्वायर फील्डर है लेग साइड में और एक कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, और ये पावर प्ले का फायदा वो उठा रहे हैं. अभी इसमें गेंदें शेष हैं. एज ऑफ द क्रीज से ये गेंद की कट करने का अंदाज, लेकिन फील्डर दायरे के अंदर है, फाइन लेग की बाई तरफ लेकिन दायरे के अंदर, 25 गज के, कोई रन नहीं मिलेगा. दो डॉट बॉल, एक चौका. पाँचवा ओवर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को बनाने हैं 151 रन, 49 रन एक विकेट पर. अब वो लेग साइड का फील्डर अब ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पे कर दिया गया है. अगली गेंद को एक कदम बाहर निकला, हाफ वॉली पर उठा कर खेला, इस बार क्या 6 रन मिल जाएंगे, 6 रन.
2: ये लगा आभा का छक्का.
1: और इस छक्के के साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ, पहले 50 रन ऑस्ट्रेलिया की पारी के. बहुत तेजी के साथ आए हैं. फीबी लिचफील्ड एक अर्धशतक पहले ही बना चुकी हैं इस टूर्नामेंट में, हालांकि बहुत सारे मैचेस में वो नहीं खेली गई हैं, खिलाई गई हैं, लेकिन हौसले, क्योंकि लक्ष्य ज़्यादा नहीं है, इस तरीके के कुछ स्ट्रोक लगे तो फिर चेहरे लटकते और बुझते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड को. हौसला रखना पड़ेगा. 11 रन के ऊपर से ज़्यादा का इस समय रन रेट है, 11.79. अगली गेंद और बहुत लेट के लिए, अंतिम समय तक क्रीज की गहराई में लगभग पीछे चली गई थी और लगभग स्टंप्स के करीब पहुंच गई थी, और गेंद चली ही तो गई थी स्टंप्स के पास. इस तरह से वो जो स्ट्रोक खेला था 6 रनों के लिए, कदमों का इस्तेमाल करके बाहर निकलाना इस पिच पर, मानना पड़ेगा आत्मबल, आत्मविश्वास, संकल्प, तीनों चारों को. और नज़रिया है, क्रिकेट खेलने का अपना अपना नज़रिया, एक मिड विकेट और ऑफ साइड में कवर पॉइंट बाउंड्री पर

0: खिलाड़ी बाहर है, बाकी सब दायरे के अंदर। अब धीमी गेंद, कोण बनाती हुई एंगल डिलीवरी मिडिल स्टंप पर, उसको रक्षात्मक रूप से पुश भर कर दिया, आके दबा भर दिया, बैट से टकरा नहीं दिया। पांचवा ओवर समाप्त हो गया 55 रन एक विकेट पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Australia look to be in a real hurry here, Vineet. Maybe they've got an early flight. I don't know. 55 for one. Dominating England's bowlers. The loss of Georgia Wall not putting any change whatsoever to their approach, which has been dominating. Lindsay Smith continues, pulled away towards wide-ish long on. They'll take one and the total will move up to 56. Mooney goes to 23. Litchfield on 16. And long faces in the England crowd. There are three players in this England team who have already gone through the pain of losing to Australia in a World Cup final. One of them is Heather Knight, Nat Siver-Brunt, and Heather and Danny Wyatt. This one struck her on the pad. There's a big appeal, but umpire Rati is unmoved. I think the ball probably pitching outside the line of leg stump. Looking for the reverse sweep, there was Phoebe Litchfield, making no contact. Lindsay Smith bowling and varying her pace. That's what I think England haven't done. Lauren Bell in particular has bowled pretty much at a standard pace. Smith bowls again. This one's wristily pushed away on the offside. This is turning out to be a decent start to the over. Just the one run, ensuring that they try and keep the Australian batters at bay. Three balls of the power play to come. Here's Smith bowls again, nicely holding her length back a little bit and defeating the batter in the air, but able to adjust was Litchfield, pushing it away towards wide-ish mid-on for a single. 57 for one. Litchfield 17, Mooney on 23. Two balls of the power play to come, after which England will have some relief in terms of placing a couple of fielders, and I suspect we'll see Eccleston into the attack immediately after that. Short ball pulled away on the onside. There could be runs, four runs.
4: ये लगा आभा का चौका.
5: Just a little bit of length, back and short of a length, and pulled away authoritatively by Beth Mooney. What a cricketer, in complete control, and really timing it beautifully. 61 now for one, and the last ball of the power play is now coming up. Australia showing how to play the power play. And they've knocked off 61 of the target already. Nicely worked away on the onside for a single. Will keep the strike. Six overs bowled. Power play complete. 61 for one. Australia in the driver's seat.
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: तो 6 ओवर पूरे हुए, ड्रिंक्स मैदान पर हैं, खेल रुका हुआ है, खिलाड़ी अपने आप को तरोताजा कर रहे हैं। चार खिलाड़ी मात्र खोए थे इंग्लैंड ने, लेकिन रन केवल 150 बना पाए थे। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने में इस पिच पे दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं। हौसला बुलंद है उनका और वो आक्रामक शैली से खेल रहे हैं। कई बार अपने स्ट्रोक्स को चेंज करना पड़ा है, चेक करना पड़ा है, क्रीज छोड़ के बाहर भी निकली हैं खिलाड़ी। बैटर्स जो इस तरह से खेलना चाहते हैं वैसे खेल नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद ताबड़तोड़ रन बना दिए। इंग्लैंड ने बनाए थे 39 रन दो विकेट पर पावर प्ले में, और ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन बनाए हैं एक विकेट पर। इतना फ़र्क है। और कहा जाता था कि बैटिंग पहले करें या फील्डिंग पहले करें, क्या सही रहेगा फाइनल्स में, और पहले बैटिंग करने का जब अवसर मिला तो पिच की दुश्वारियों को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग चेंजेस, गति में परिवर्तन और स्टंप्स को अटैक करने का वो जो उनकी रणनीति थी उसका मुकाबला ठीक से इंग्लैंड कर नहीं सकी, अपनी इनिंग्स को पेस नहीं कर पाई क्योंकि प्रकाश केवल 4 विकेट ही गिरे और उसके बाद भी वो पेस को फोर्स नहीं कर पाए। अब यहाँ से ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन के लिए अतिरिक्त रात का समय जुगाड़ना चाहेंगी और इसीलिए कुछ तेज़ी से खेल रही हैं। स्मरण रहे कि इंग्लैंड में 9:30 बजे से पहले दिन सूर्यास्त नहीं होता और इसीलिए पहले वनडे क्रिकेट जब शुरू हुआ तो 60 ओवर का खेल हुआ करता था, तो सूर्यास्त का समय लगभग 9:30 के आसपास का है लंदन में, जहाँ के 2 प्रसिद्ध मैदान है। ओवल में दोनों सेमीफाइनल हुए और लॉर्ड्स में इस समय फाइनल चल रहा है। 151 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए और 62 रन वो पहले ही बना चुका है 6 ओवर में। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, क्या कर सकता है इंग्लैंड यहाँ से। और सो एकलस्टन की बात कर रहे थे प्रकाश वाकनकर, एकलस्टन ने वो एक शानदार कैच वोल्फर्ट का पकड़ा था जब 43 रन बन चुके थे, को विकेट नहीं गिरा था अपने कद का फ़ायदा उठाकर। उनकी बॉलिंग भी बहुत कारगर साबित हो सकती है निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह से रन बनाने पे आमदा हैं ऑस्ट्रेलिया, आज अग्नि परीक्षा होगी। बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं लेकिन कैंप डीन की जगह लगाई गई, चार्ली डीन की जगह कैंप आई हैं और वो बॉलिंग करेंगे। बैटिंग अच्छी की उन्होंने आज और देखें क्या करती हैं। लेफ्ट हैंडर मूनी सामने हैं उनके और खेला है गेंद, स्ट्रोक को चेक किया, गेंद हवा में है लेकिन उस ओर फील्डर है कहाँ, दूर से आना पड़ेगा उठाने के लिए, तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही हैं। और रन उन 2 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 64 रन 1 विकेट पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर। नेट शिवन ब्रंट नॉट आउट रही 53 गेंदों पर 58 रन बनाकर, और फ्रेया कैंप ने 28 गेंदों पर 44 रन बनाए, एकमात्र बैटर जिन्होंने कुछ हौसला दिखाया। कैंप चली, उनकी ये गेंद स्टंप्स के पास से की, कलाइयों को ऊपर उठाकर, कोहनी को ऊपर उठाकर मोड़ा भर जगह निकाली और तेजी से दौड़कर दोनों बैटर ने अपने सिरे बदल लिए। ये जो लॉन्च फेज होता है 1-6 पावर प्ले में, कितने रन किस टीम ने ज़्यादा बनाई हैं, ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले में औसतन 9.53 का औसत रहा है, इंग्लैंड का भी 8 और 9 के आसपास रहा है। दोनों शीर्ष पर रही हैं पावर प्ले की बैटिंग में और गेंद की अंतिम समय तक प्रतीक्षा की, पंजों पर ऊपर उछली, कलाइयों को मोड़ दिया, एक रन मिल जाएगा, 2 फील्डर हैं लेकिन उसको रोकें उससे पहले। कैंप की ये गेंद लगभग 92 थी, स्लोअर डिलीवरी करने की कोशिश, स्टंप्स पे कर तो रहे हैं इंग्लैंड लेकिन देखिए नज़रिए का कितना फ़र्क पड़ता है, आप किस सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं वो फ़र्क पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया का अपना अंदाज है खेल के मैदान पर, चाहे वो क्रिकेट हो, रग्बी हो, फुटबॉल हो, लगातार स्टंप्स के पास आकर गेंद कर रही हैं। बॉटम एज लगी है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, विकेट कीपर के पीछे गेंद गई है, बहुत ही फाइन, 4 रन।
4: ये लगा आभा का चौका,
0: वॉवल सीम से की थी, गेंद की रफ्तार कम की थी लेकिन इतनी वाइड थी और इतनी नीचे रह रही थी और उसमें कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं थी, अपने बैट को दबाया उस वाइड गेंद पर, सिरा लगा, बॉटम एज निचला हिस्सा जिसको कहा जाता है, और उसको लगने के बाद लुढ़कती हुई गेंद चली गई लॉर्ड्स के उस ओर जहाँ की वो मीडिया सेंटर है। कैंप चली, 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर में, लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं, मिडल और लेग स्टंप की इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्शन में कितने रन आज इस पिच पर दोनों ही टीमों ने बनाए हैं। मूनी और लिचफील्ड की ये जोड़ी है, अब तक केवल 1 विकेट गिरा है, लिचफील्ड ने रन बनाए हैं और इस पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 50 किया था इस टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में। गेंद की लंबाई कुछ ज़्यादा रख रहे हैं, कोई स्विंग तो है नहीं, नॉ स्विंग के लिए कोई ऐसी रफ्तार भी है, इस बार गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, अपने आप को व्यवस्थित किया, लाइयों को मोड़ दिया, फुर्ती में नज़र आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ताबड़तोड़ आनंद फानंद में इस मैच को ख़त्म कर देना चाहती हैं, ओवर समाप्त हो गया।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें

0: And here's Eccleston. First ball worked away on the onside. They've taken one. Think of the second and change their mind. Litchfield goes to 20. Australia 73 for one now. Required run rate just about a run a ball. And if Australia continue like this, unless there is a mini collapse and England can strike now and not just one wicket, I think England need a couple to try and come back into this game. Can Eccleston provide that? Left arm over. Experienced bowler, tossed up, turned out towards the wide-ish mid-on region for a single by Beth Mooney. More fielders in the deep now permitted, of course. Four fielders in the ring, five will be in the deep. Capsi is out at long on. Eccleston bowls and driven on the offside, but straight to Nat Siva-Brunt at short mid-wicket. There is no run. 74 for one in the seventh over, chasing 151 to notch up their seventh title. Australia this time making some room, pulled away, fine, swept beautifully. Initially I thought it hadn't been timed, but it was placed and timed well by Litchfield, and that gave up four more runs. Ye laga abha ka choka. Swept very well indeed. Proactive movement. In fact, that's been a feature of the Australian batting so far, has been the proactive footwork of the Australian batters, achieving angles that otherwise wouldn't be available. And England facing annihilation here. This one's inside out, driven out towards the deep cover boundary. She was looking to go a little bit straighter over extra cover, the ball taking the outside part of the bat, and as a result, just a single. 79 for one. Litchfield 25, Mooney 37, and Australia now require less than a run a ball. And we're not even completed halfway stage yet. Pushed away on the offside nicely by Mooney, in control. Very sensible cricket. Eight overs complete, 80 for one.
1: ओवर समाप्त हुआ है आठवां, और किसी भी तरीके का इस अनुभवी बॉलर ने गति का परिवर्तन नहीं लिया अपने इस पहले ओवर में. एकलस्टर ने 51-52-53 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही बॉलिंग की.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
1: अब बचे रन केवल 5.92 के औसत से ही बनाने, यानी कि 6 से भी कम रन बचे हुए ओवर्स में उस गति से ही बनाने शेष हैं, क्योंकि पहले ही 10 के औसत से वो खेल रही हैं. पहली गेंद और उसको लगभग पुल के अंदाज में बैकफुट पर संतुलित होकर खेल दिया. एक रन मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को. 81 रन एक विकेट पर, टारगेट 151 का है. क्रिकेट से संबंधित हर व्यक्ति आपको इस समय लॉर्ड्स में दिख जाएगा, बड़े से बड़ा अधिकारी और छोटे से छोटा फैन, सब लॉर्ड्स की ओहरी तो आ गए हैं. कितना बड़ा अवसर है ये, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो भी लॉर्ड्स के मैदान पर. कंधे का इस्तेमाल किया पटका गेंद को गिब्सन ने. गिब्सन से लगातार बॉलिंग कराई है, नई गेंद का इस्तेमाल भी किया है गिब्सन ने. आज थोड़ा देर से तलब किया है. अब 70 गेंदों पर 70 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया. लिचफील्ड 25-19 गेंदों पर, और मूनी ने 39 रन बनाए 26 गेंदों पर. यह नौवां ओवर है जिसकी तीसरी गेंद आ रही है. काफ़ी स्टंप छोड़कर लेग स्टंप की गार्ड कर खेल रही हैं. सीधा ड्राइव किया, ऐसा एक बार को लगा कि टाइम नहीं कर पाई हैं. फील्डर बाउंड्री लाइन के करीब डाइव लगाई, उनसे रुकेगी नहीं,

0: फोर रन्स।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: जैसे अब तो ये एक तरफा मुकाबला हो गया है, जैसा चाह रही हैं वैसा खेल ले रही हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स, और इसको पहले ही समझकर अपने आप को पोजीशन किया और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया बॉलर के पास से चार रनों के लिए। और इस बार केवल एक प्लेसमेंट बहुत इत्मीनान से चलते हुए एक रन पूरा किया इससे पहले कि गेंद को उठाया जाए। ये नौवां ओवर चल रहा है, 86 रन अब एक विकेट के नुकसान पर। सूफी डिवाइन, टू हू हू और वरिष्ठ खिलाड़ी, कुल मिलाकर तीन रिटायर हुए न्यूजीलैंड के, सूजी बेट्स भी रिटायर हुई, अलविदा कहा इस टूर्नामेंट में। कितने बड़े बड़े कैरियर समाप्त हुए। इस बार बिल्कुल स्टंप्स के करीब आ रही थी गेंद, शॉट तो थी लेकिन स्टंप से इतनी ज़्यादा दूर नहीं थी, अपने पैर फैलाकर जगह निकाली उस स्ट्रोक के लिए और फिर खेला उसको ऑफ साइड में। 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी, 56, आप समझ सकते हैं एक बाएं हाथ का स्पिनर 53 की मील प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा था, और ये मीडियम पेसर अगर आप देखें तो ये बॉलिंग कर रही है 56 की स्पीड से। घूम कर खेला और रन लेने के लिए बाहर निकल आए, क्या इसमें रन आउट का अवसर होगा, अंपायर से पूछा जा रहा है अंपायर। आमतौर पर इस टूर्नामेंट में हमने देखा है प्रकाश, निर्णय ले लेते हैं तुरंत और बता देती हैं वहीं पर कि आउट है या नहीं है, तीसरे अंपायर के पास नहीं भेजती हैं, और लगता है कि विकेट मिल गया है वहां पर। हालांकि निश्चित रूप से ये तय कर लिया जाएगा कि सही है क्या नहीं है, अंपायर का रिव्यू इस समय चल रहा है कि ये रन आउट है या नहीं है। फिसलाया, बैट को आगे बढ़ाया, अच्छी तकनीक, ठीक उस समय जब बैट आगे सरक रहा था, क्या ऊपर हवा में उठा है, क्या ग्लव से वो जो हटाया था वहां पर, बेल्स को जब हटाया था तब तक बैट अंदर पहुंच गया था। मुझे लगता है बैटर के पास एक अवसर बन गया है क्योंकि बैटर भी नहीं उठा है और जब वो हटाया था, तो तकनीक जब आप अच्छी इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। पहले तो उन्होंने अपनी पूरी पहुंच में बैट आगे बढ़ा दिया और बिल्कुल नीचे घास पर चिपकाते हुए पिच के ऊपर रखते हुए उसको फिसला दिया, उनकी पहुंच बढ़ गई और इसलिए विकेट कीपर के पास जो एक अवसर था वो जाया होता रहा। हालांकि अभी प्रतीक्षा की जा रही है औपचारिक निर्णय की।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: 87 for 1, a close call for a run out, looking for second run there, but going Australia's way. Lauren Bell back into the attack, replacing Eccleston, pulled away on the onside. That itself, with that single, the total moves to 88 now, and just watching that replay. It's very close thing, short again from 88 for 1. Is where the total has moved now, requiring runs at 5.8 and over. And Australia really in complete control. Slower ball driven between the legs and past the fielder at mid-off. 4 runs.
1: Ye laga abha ka choka.
6: Phoebe Litchfield really peppering that long off straight boundary. Probably her third or fourth boundary there, using her feet, keep her standing up, but that doesn't deter young Phoebe Litchfield. And Lauren Bell's been taken to the cleaners, even though she tried to bowl a slow ball there. 92 now for 1. Needs just 59 more runs. Slow ball, full toss, hammered away, and that will be a 1-bounce 4 at quite long on.
1: Ye laga abha ka choka.
6: Back-to-back boundaries, Litchfield on fire as well. Australia not just dominating, they are destroying England's bowling at the moment. It is unbelievable that in a World Cup final, having done the bowling bit, the Australian batters now just pulverizing the opposition with their super aggressive stroke play. and they have made the England bowling look very, very

0: ordinary indeed. Here's Bell again, bowls, and this time and the stumps, not able to beat the fielder at mid-on, and the total stays 96-1. 55 runs required for Australia to lay their hands on a seventh title and complete the, or rather stop the drought of silverware, ICC silverware, that is, that they have had for the last couple of years. Here's Bell again in bowls to Litchfield, who's steadily driving it to mid-on and will steal a single in front of the fielder coming in from there. 97 now for one. Litchfield 39 and Beth Mooney on 41. So these two really taking the attack to England. Great footwork, intent very obvious, not afraid, brave cricket. And as they always say, never judge a pitch till two teams have batted. Australia making this pitch look like a very good batting wicket, while England certainly struggled, and that's credit to Australia's bowlers. Here's Bell. Slower ball, cracked away into the deep cover region for a single by Mooney. She'll go 52, and that is Taylor's bowl, 98 for one.
1: जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
1: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1477।
3: जीत की ओर कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल ये नहीं लग रहा सबके जहनों में कि वो जीतेंगी या नहीं, सवाल यह है कि कितनी जल्दी जीतेंगे। तो अब सवाल ये भी है कि अब चैंपियन टीम वही होती है जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले, और ऐसा नहीं है कि पिच कोई बहुत ज़्यादा बदली, कई बार अपने को ढालना पड़ा है, इम्प्रोवाइज करना पड़ा है, अंतिम समय में स्ट्रोक को बदलना पड़ा है ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को। डाइव लगाते हुए बॉलर से छिटकी गेंद, अपने फॉलो थ्रू में अपनी बाईं तरफ जाती हुई स्मिथ ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। एक रन मिल गया ऑस्ट्रेलिया को 99 पर। ये 11वें ओवर की पहली गेंद है, 100 रन पूरे होने जा रहे हैं, जीतने के लिए चाहिए 151, यानी कि अब 59 गेंदों पर मात्र 52 रनों की आवश्यकता है सातवीं बार T20 विश्व कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को। स्मिथ की गेंद ओवर द विकेट, बिल्कुल स्टंप्स के पास से की थी। अब तो उधर दाएं बाएं चारों तरफ रन बन रहे हैं और रन पूरे हो गए ऑस्ट्रेलिया के। दूसरे गेंद पर ये दूसरा सिंगल, 10.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 100 रन। लिचफील्ड 40, 26 गेंदों पर और मूनी 43 रन पर खेल रही हैं और लगातार अपने दूसरे अर्धशतक की ओर बढ़ रही है। पिछले मैच में 61 बनाए थे उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया सभी सोच रहे थे कि जीतेगी, लेकिन इस तरह से इस अंदाज में जीत जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी, ये देखते हुए कि इंग्लैंड नहीं छोड़ेगा अपने मैदान पर, और हालिया दिनों में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप रोक तो नहीं सकते। एक और सिंगल मिला है, इत्मीनान से अब ये हो रहा है, और फाइनल मुकाबला है, लॉर्ड्स का मुकाबला है। आप विश्व कप जीतना चाह रहे हैं, जो खेमे में नॉट आउट बैट्समैन बैठे हुए हैं, बैटर्स बैठे हुए हैं, वो सोच रहे होंगे क्या हमें अवसर मिल जाएगा, हम कुछ बैटिंग करके दिखाएं। यहाँ पर स्वीप किया, गेंद कुछ देर के लिए हवा में, लेकिन चार अवश्य मिलेंगे। सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है, अंपायर भी पहले सुनिश्चित करना चाह रहे हैं चार है अथवा छह है, प्रतीक्षा करेगा, हर व्यक्ति प्रतीक्षा करेगा, और ये 6 रन।
2: ये लगा आभा का छक्का।
3: रिवर्स यानी कि उल्टा घूमकर खेला उसको, और स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉपिंग क्रीज की सीध में उन्होंने लगा दिया ये 6 रन। और स्मिथ अच्छे अच्छे बैटर्स को छकाया है इस टूर्नामेंट में। आज भारी पड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स उनके ऊपर, 6, 7, 8, 9 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं, 82.5। 11 ओवर समाप्त हो गए 107 एक विकेट पर।
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
1: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
1: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 90-run partnership between young Phoebe Litchfield and the experienced Beth Mooney has powered Australia into a position where one feels it's a question of only the formalities now. In how many overs will Australia win this title, and how many more wickets can England get, if any? These two are on a mission, and start of a fresh over from Eccleston, lofted over the infield, beautiful shot, inside out from Beth Mooney, takes her to 48, four more runs.
2: ये लगा आभा का चौका।
0: They're in a real hurry, the Aussie women, batting superbly. And England bowlers have absolutely no answers to how they are going to respond as Australia continue the juggernaut. Nelson on the board. 111 for one. So most fours in the World Cup. Wyatt Hodge 42, Smriti Mandhana 30, and Beth Mooney now just one shy on 29. Eccleston in again, bowls, and a lovely ball. The arm ball just straightening and beating Beth Mooney. The first time really in this innings that we've seen an England bowler defeat an Australian. Beautiful ball, just went past the outside edge. Siva Brunt for a moment thought there might be an opportunity, there wasn't. Mooney waits on 48. Eccleston bowls, worked away to short mid wicket. This is good. Just two or three balls here, but certainly trying to put a little bit of a break on the Australian rate of scoring. They need much more than that, do England. They need wickets in a hurry here. Eccleston bowls, Mooney pushes on the offside. They go off for a single. Two England fielders collide. I think that's the story of England's performance today. Two fielders going for the ball and both of them running into each other. 112 for one now. That was Danny Wyatt Hodge. 112 for offside, it was away. I think that was Freya Kemp and Wyatt Hodge who ran into each other. 1-1-2 for one, the fifth ball of the 12th over. Eccleston bowls and looking for a reverse sweep again was Phoebe Litchfield. Good take by the keeper, Amy Jones, and no runs. 95 of 61 is this partnership, dominating partnership. And Litchfield's done the bulk of the scoring. Eccleston bowls down the leg side. Will be called wide. We'll wait for the umpire. Yes, it is. Another wide, another run. 113 for one now. And the last ball of the 12th over has to be re-bowled by Sophie Eccleston, who's gone for 14 runs so far. One ball to come. Reverse sweep attempted. And once again, she misses it. She holds her head, does Eccleston. Wondering how she hasn't got through. 12 overs complete, 113 for one.
6: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन खाली है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमार्केट के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: तो धीरे धीरे मंजिल की तरफ कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब स्पष्ट विजेता नजर आ रही है क्योंकि केवल 4.7 के औसत से शेष रन उनको बनाने हैं। 113 एक विकेट पर, कुल 151 चाहिए जीतने के लिए। पहली बार एक्लस्टन की फास्टर बॉल देखने ली, पहली बार उन्होंने गति परिवर्तन लिया और उस पर बीट भी किया ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंडर को। बहुत ज़्यादा टर्न नहीं था, अच्छा बाउंस उसको मिला। 92 क्लिक्स की वो गेंद थी, नहीं तो 80 के आसपास की वो करती रही हैं। अब यहाँ से ये आप देखें कि कौन प्लेयर ऑफ द मैच हो सकता है। मामला थोड़ा विकट है क्योंकि चार बॉलर्स ने एक एक विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। चार ही विकेट गिरे इंग्लैंड के, दो फील्डर्स के बीच में तेजी के साथ दौड़कर अच्छा तालमेल।

0: खेल सूझबूझ के साथ सिंगल दौड़ती हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और इसके साथ ही मूर्नी का अर्धशतक पूरा हुआ केवल 38 गेंदों पर, 50 रन, नौवां अर्धशतक है उनका विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के खिलाफ पहला है और 31st विमेन टी20 इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं उनका अपना ये है जिसमें उन्होंने ये करके दिखाया है। और इस टूर्नामेंट में मूनी का तीसरा शतक है। मूनी ने 74 रन बनाए नीदरलैंड्स के खिलाफ, पिछले सेमीफाइनल में 61 रन बनाए ओम जी। तो कुल मिलाकर मूनी ही मुझे लग रही हैं मैन ऑफ द मैच होंगी, क्योंकि इन्होंने ही शुरू में बढ़िया बैटिंग करके इस मैच को एक तरफा किया। क्यों, बॉलिंग में कोई एक खिलाड़ी आप चुन नहीं सकते। बैट मूनी 38 गेंदों पे 50 रन बनाकर अपने तमाम अनुभव का लाभ अपनी टीम को देते हुए 7, 10, 74, 0, 22 और 61 ये स्कोर्स रहे हैं। वाइड का इशारा वेस्ट इंडीज के अंपायर द्वारा। अब 46 गेंदों पर मात्र 36 रन की दरकार है। लिचफील्ड पलटकर लेग साइड की फील्ड का मुआयना कर रही है, देख रही है कहाँ फील्डर है। धीमी गेंद को खेलने की कोशिश, जाके टकराई उनसे गेंद। क्या ये कोई ऐसी बात है, क्योंकि गेंद तो काफी सीधी थी, लेकिन किसी तरीके का कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है दोनों ही तरफ की टीमों से। शायद कुछ हाइट कम हो या, लेकिन गई सीधी थी, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग थी। अगली गेंद को कलाइयों के सारे सामने की ओर ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास। अब आतुर हैं इस मैच को खत्म करने के लिए, हालांकि शैली शुरू से ही रही है। मुड़कर जब उसको ऑन साइड में खेलना चाहती थी, निश्चित रूप से लेफ्ट हैंडर के ऑफ स्टंप को छोड़कर जा रही थी ये गेंद। और सर्कल के अंदर गेंद रुकी नहीं, बाउंड्री पे चली गई, बाएं हाथ से गेंद को उठाया जाए तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही है। ये 13वां ओवर चल रहा है। लिचफील्ड अब अपने अर्धशतक पे 48 रन बनाकर वो खेल रही थी, अब उनके लिए ये अवसर है कि वो अपने अर्धशतक को पहुंच सकें। पार्टनरशिप 100 रन की पूरी हुई है 69 गेंदों पे, कमाल की साझेदारी। ओ बोल्ड कर दिया, चार्ली डीन ने विकेट ले ही तो लिया, और थोड़ा सा विलंब होगा ऑस्ट्रेलिया की जीत में, लेकिन वो जो विकेट गिरा है वो बोल्ड साफ कर दिया। लिचफील्ड अपनी अर्धशतक से 2 रन से चूकी, वहां पर 35 गेंदों पर खेल रही थी और ये गेंद को अच्छा फ्लाइट किया था अबव द आई लाइन, और उसको डिफ्लेक्ट भर करना चाहती थी और उनके मिडल स्टंप को ले उड़ी और वो गेंद, और इस तरह से ये दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, और 13वां ओवर समाप्त हो गया।
1: Forty-eight is what Phoebe Lichfield got. That partnership just going past 100 runs, 117 now for 2, and I suspect we'll see Ellis Perry coming into bat, unless, of course, the Australians decide that they want to change in the batting order. 117, Eccleston 2 overs done for 14, and Charlie Dean striking after that early wicket for Lauren Bell, where Georgia Vold dragged a ball back onto her stumps from outside the off stump. Last couple of overs, the England spinners just beginning to find a little bit of bite and make a little bit of an impact, but it's too little too late, one feels. Australia now need just under 5 runs an over, and they've got 8 wickets in hand. So the question is, how soon Ellis Perry, the champion Australian, is at the non-striker's end. First ball of a fresh over, worked away on the onside. They wanted a single. Perry wasn't interested. Mooney's on 50. And it's a question really of how does Beth Mooney play from here. Young Phoebe Lichfield, maybe that ball just keeping a little bit low as well. But aiming at the stumps and getting the reward was Charlie Dean. Bowls worked away nicely on the onside. Will it go all the way? Yes, it looks like it has. I think it's Capsi who Ives over the ball. And four more runs to Beth Mooney and to Australia.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: 121 for two now. 54 to Beth Mooney. Just worked the ball away. And a pedestrian effort really in the deep. And 121 for two is the Australian total now. 16 fours and two sixes. Inside edge, fortuitous runs this time off the bat of Beth Mooney. Fortune favours the brave, they say. That's exactly what happened here. Another boundary, four more.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: Mooney moves to 58, Australia to 125. Now really, only the formalities remain. 26 more runs needed. And Australia will be keeping whatever it is, whatever beverage it is that they choose to have after this game on ice and getting it ready. 26 runs required, 125 for two, making room again. This one was played a little bit in the air, but not carrying to the bowler, Freya Kemp, and so there's no damage done. Elise Perry's helmet has been the topic of significant discussion. We've seen the national county cap of many a player being worn out over the years, and they're very touchy about it and they look after it well, but they also keep it with them. Now looking at the rebound of the bowler's fingers is the third umpire. Elise Perry doesn't look like she was outside the crease. We're just trying to figure out whether the ball actually hit the bowler's fingers on its way or not. My eyesight certainly not as good as Vineet's. Maybe he can tell us whether he thinks the ball's hit the finger of Freya Kemp or not.
0: बहुत नज़दीक तो थी उंगलियों के पास वो गेंद, लेकिन आजकल तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं बता पाती है. कितनी ही बार उसके रिप्लेस देखने पड़ते हैं, लेकिन मामला नज़दीक अवश्य है. अच्छा प्रयास था.
1: Maybe they need to start putting a chip in the cricket ball like the football now.
0: Yeah.
1: To decide whether or not the fielders touched it. Who knows what technology will do next, Vineet. But at the moment, the umpire now ruled there's no damage done. 125 for two. 14th over in progress. Perry yet to face a ball. Beth Mooney on 58. And Freya Kemp waits. And now the umpire has gone up and signaled for a television replay. What was all of that earlier? I'm not sure. Maybe they just realized that we've got so much time in this game that we might as well get a TV replay and see what happens. We saw about 20 images of that, whether or not the umpire had, the bowler had touched the ball or not. Elise Perry having a word there with the umpire. Right. Now they're going to use ultra edge on the finger.
0: Oh, God.
1: Which is not something I have seen before, but it's a fair call. I mean, you have the technology, you might as well use it. And ultra-edge certainly looks clean. And what many of us felt earlier, now being confirmed, not out. It almost is like, take no risks. Doesn't matter if the game gets held up. 125 for two. Kemp back into the attack. Bowls to Mooney, who lofts this over the head of mid-off. And four more runs.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: Not a very nice thing to say, Vineet, but I'm going to say that I think England also are in a hurry to finish this game. The way they're bowling, there's no fight. The stuffing, as they say, has been taken out of England's bowlers. Really, really ordinary bowling effort. I think it's just a question of formality. Now, here's Kemp in again to Mooney, who's moved to 62. Pulls this one round, doesn't get hold of it. Off the pad, over complete. 14 gone, 129 for two.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: शुरू से ही 10 का औसत रखा बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने, और उसका नतीजा यह है 3.67. कि अब

आस्किंग रेट रह गई है। आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो कितनी 16 वर्षीय बालिकाएं हैं जिनको कि डेब्यू दिया गया है और वो आज बड़े क्रिकेटर बन के तैयार है। ना मालूम 15 वर्ष की उम्र का इतना वो क्यों उठाया जा रहा है, इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। सूर्यवंशी हालांकि डेब्यू कर चुके हैं, उनको एक अच्छे गाइड की आवश्यकता है। हर गेंद को सिक्सर नहीं लगाया जा सकता। बड़े खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से, सारे गुण उनमें मौजूद हैं, थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है। 129 दो विकेट पर, ओवर कितने हुए हैं भाटी? 14वां ओवर है, हो चुका है, इसका मतलब ड्रिंक्स मैदान पर हैं, हालांकि हमको नहीं नजर आ रही। तो खेल तमाम संभावनाओं के साथ शुरू हुआ लॉर्ड्स के इस मैदान पर, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे और बड़ी हसरत के साथ, ऑस्ट्रेलिया पिछली दो बार जीत नहीं सका था, ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ इंग्लैंड अपने यहाँ कभी हारा नहीं और ऑस्ट्रेलिया को कभी फाइनल में हराया नहीं, लेकिन दोनों ही टीमें विजय रथ पे सवार और परचम लहराती हुई पहुंची, कोई मैच हारी नहीं टूर्नामेंट में, और इसीलिए लगा कि टक्कर का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा, रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर हो और वो भी नॉकआउट स्टेज में, तो मुकाबले एक तरफे हो जाते हैं। पिच कुछ धीमी कुछ नीची है और अभी भी है, ऐसा नहीं है सेकेंड हाफ में या दूसरी पारी में कुछ बदलाव आया है, लेकिन जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। पिच अभी भी कहीं कहीं बीच बीच में नीची हो जाती है, गेंद

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का। एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते। आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया
1: जी।
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी, जी,
0: रहे
1: जी।
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है, आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई, और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नवरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ए मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी, और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे, और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मन पसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है। इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: तुम क्षमा मैं भूल हूँ, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी,
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर
0: हाँ।
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार, और
0: हाँ।
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की
1: इसीलिए
0: है।
1: फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी। एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की,
1: जी,
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशोरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था, और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
0: जी,
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे, और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था,
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था, और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी, 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की, और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई, और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत, और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्ड सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए।

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
0: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कॉम्पिटिशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश

कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूँगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपने जाने कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो। कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो ऐसे करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
5: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
4: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीज़ें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, वो छोटी छोटी चीज़ें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीज़ें उसने बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है, स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: वेयर का वो बहुत ज़बरदस्त कैच था। और आप देखिए 3,000 से ज़्यादा वनडे में रन बनाए हैं, 3,200 से ज़्यादा T20 में रन बनाए हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेडल गोल्ड मेडल जीता था उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए। तो काफ़ी सारे अपोनेंट्स के खिलाफ काफ़ी दुनिया भर के मैदानों पे रन बना चुकी है, कई फाइनल खेल चुकी है। तो उनके लिए क्या कहा जाए, सोने पे सुहागा है कि एक जीत और।
1: जी बिल्कुल, और हमारे पास तो सोने पे सुहागा हमारे कॉलर स्टूडियो में आते ही रहते हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्ते
2: हेलो नमस्ते
1: जी, नाम बताइए अपना।
2: जी मैम, मैं संत दिल्ली से। जी
1: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
2: आपको गोली भाई पर, और मेरे मेरे दो सवाल, और एक सवाल तो ये जो होती है या और भी है ना,
1: जी अनफॉर्चुनेटली आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से। हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमें कॉल करेंगे और आपकी आवाज़ हम सब सुन पाएंगे अच्छे से। बट आई एम श्योर कि जितने भी लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं वो आज के खेल के बारे में, जीत के बारे में, और ऑब्वियसली अपनी क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाने के बारे में बात करना चाहते हैं। वैशाली, चूंकि सब बात करना चाह रहे हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेस क्रिकेटर्स की होनी चाहिए, आपने काफ़ी बार प्रेशर की भी बात की, और बार बार हम यही बात मानते हैं, जैसे अगर आप जॉर्जिया वॉल को ले लें, बहुत ही अच्छा उनके लिए तो टूर्नामेंट रहा है, बट आज देखिए उनका जो रन है 9 रन बनाए हैं 6 बॉल पर उन्होंने। तो ये इतने बड़े जब प्लेयर्स हो जाते हैं, इतना अच्छा टूर्नामेंट जाता है, और पता है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छी पोजिशन पे है, उसके बावजूद कैसे, समटाइम्स यू नो आई कैंट रियली फैदम व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेशर इट इज।
3: आप कितने भी बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हो, लेकिन आपको एक अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके लिए खेल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी हजारों की करोड़ों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, वो एक प्रेशर अलग होता है। तो आप कितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, कहीं ना कहीं वो प्रेशर माइनर होता ही होता है, लेकिन उसके साथ हमारा सबसे मेन होता है कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं एज अ प्लेयर। आप विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, या फिर आप लीड कर रहे हो अपनी टीम को एज अ कैप्टन, वो सबसे मेन होता है लीड। क्योंकि एक लीडर जो होता है वो आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं देख रहा, वो आप सभी अपने अलावा 10 जो आपके प्लेयर्स हैं उनको भी देखना है, उनकी बैटिंग लाइनअप भी करना है, एंड उसके साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, एंड कौन से बॉलर को कहाँ पे यूज करना है, कौन सा बैटर के सामने लेके आना, वो भी माइंडसेट। आप देखिए कि एक कैप्टन को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ग्राउंड करनी पड़ती है।
4: राइट देन, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, शायद आइए देखते हैं कि कहां से बोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है।
2: जी नमस्ते, हेलो।
4: हाँ जी बोलिए, क्या कहेंगे और अपना पूरा परिचय दें पहले।
2: जी सर, मैं कर रहा हूँ दिल्ली
4: जी। आपकी आपकी तरफ से ना कोई थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है और आवाज़ आपकी जो है हम तक पहुंच नहीं रही है, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं जिसके सहारे आप हमारा इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं वो हैं 011 दिल्ली का कोड, और उसके बाद 2342-1084 और 2342-1085। चेतन भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भारत ने भले ही सेमीफाइनल के लिए हम लोग क्वालिफाई ना कर गए हो, लेकिन श्री चर्नी टॉप विकेट टेकर हैं 14 विकेट्स लेकर। मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो एनरी डर्कसन साउथ अफ्रीका की हैं टॉप पर, लेकिन शेफाली वर्मा दूसरे नंबर पे हैं 5 सिक्सेस के साथ। ये स्टैट्स आजकल मॉडर्न डे में बहुत काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा चौके अगर देखे जाएं तो स्मृति मांधना तीसरे स्थान पर हैं, अ ग्रेट हिटर, अ वेरी एलिगेंट प्लेयर, 30 चौके उन्होंने लगाए हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहा, मैं चाहूंगा कि इन तीनों उपलब्धियों के बारे में आप कुछ कहें।
5: देखिए, सबसे बड़ी बात चर्नी की जो आपने बात की कि जिस समय पर उन्होंने गेंदबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी की। आप शुरू में भी गेंदबाजी कर रहे हैं और डेथ ओवर्स में आकर एज ए स्पिनर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी

0: गेंदबाज के लिए, और चन्नी ने बहुत अच्छे तरीके से टीम को संभाल कर मतलब ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया कि कुछ मैचेस अब जीत पाएँ। और शेफाली और आपने स्मृति की बात की, देखिए वो अपने आप में ही, अगर आप दोनों ओपनर्स की बात कर रहे हैं और दोनों की आप तारीफ कर रहे हैं, तो वहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय टीम अगर कहीं ना कहीं लड़खड़ाई है तो मिडिल ऑर्डर वो सक्षम नहीं रह पाया, मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप ऑन एंड ऑफ अगर रन्स बनाते हैं, ऊपर से भी ऑन एंड ऑफ रन्स बनाते हैं। स्मृति की मैं बात करूं, स्मृति के मैचेस कुछ बहुत अच्छे गए, कुछ एकदम गिर गए, लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मनीष, आप तो इतने समय से फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप्स को, कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इतने देखिए वर्ल्ड कप आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप आ जाते हैं, 2 साल के बाद आपको वर्ल्ड कप मिलता है, हमारे समय में 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता था, 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता था। कितने ऐसे सुपरस्टार्स हैं इस कंट्री के अंदर जिन्होंने 10-10 साल 12-12 साल क्रिकेट खेली है लेकिन वर्ल्ड कप एक नहीं खेला। देखिए हो जाता है कभी कभी, वर्ल्ड कप के समय आप फॉर्म में नहीं थे, टीम में नहीं आए, तो जब वर्ल्ड कप में आपको मौका मिलता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं सभी की, और वहाँ पर फेलियर्स आप एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए आपको मिलने 5 या 6 मैचेस हैं, अगर उसमें से 2 मैच या 3 मैच एज ए प्लेयर आपके खराब हो गए तो टीम को बहुत नुकसान होता है, वही हुआ भारतीय टीम के साथ। अगर आप आंकड़े देखेंगे इंडिविजुअल बहुत अच्छे नज़र आएंगे, जब आप कंबाइन चीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का डाउनफॉल कहाँ हुआ, ये रीज़न था कि आपने एक मैच में बहुत अच्छा किया, 2 मैच खराब हो गए, वो 2 मैच भारतीय टीम हार गई, तो वो समस्या आई आपके साथ।
1: जी, और इस वक्त उम्मीद करते हैं हमारे कॉलर जब कॉल करते हैं उनको कोई समस्या ना आए, बिल्कुल क्लियर उनकी आवाज़ हम तक पहुँचे। हेलो,
2: सबको नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं वाई वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ।
1: वेंकट सर,
2: जिला सूर्यापेट तेलंगाना से।
1: जी वेंकट, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
2: चेतन जी, आपसे मेरा सवाल है।
0: जी बताइए।
2: नमस्कार, पहले
0: नमस्कार जी।
2: ऑस्ट्रेलियन टीम ने चैंपियन की तरह खेलते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया, पहले इनको कांग्रेट। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेन्स हो क्या वुमेन्स हो, गैप्स में शॉट्स ज्यादा खेलते हैं, हवाई शॉट्स बहुत कम खेलते हैं। हमारी टीम मेन्स हो या वुमेन्स हो, हवाई शॉट्स अधिक से अधिक हवाई शॉट्स खेलते हुए आजकल विकेट्स खो रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये तो मेरा क्वेश्चन है आपको, आपसे।
0: नहीं जी, आपका प्रश्न देखिए, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स अगर आप खेलेंगे रन्स बनाएंगे, लेकिन मैं आपके थोड़े से नॉलेज के लिए डाल दूं कि T20 दो वर्ल्ड कप्स में भारतीय टीम जीती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती है, तो भारतीय टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेलती है, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन भारतीय टीम अगर अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेट्स सपोर्ट आर इंडियन टीम, बिकॉज अगर हम अपने इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। मेंस क्रिकेट की बात करें, पिछले 2 साल के चैंपियंस कौन है? भारतीय टीम है, और हमारी वुमेन्स क्रिकेट भी हाल ही में 50 ओवर्स मैचेस जीत के आई है। ठीक है, वन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इट हैपन्स, नथिंग टू वरी अबाउट। हम जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा हम तारीफ करेंगे, अगर भारतीय टीम भी अच्छा खेलेगी वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट।
1: जी बिल्कुल, और जब भी हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं ना, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हवा में खेलते हैं, एक ये ज़रूर मुना बहस छिड़ जाती है कि T20 फॉर्मेट और वन डे फॉर्मेट दोनों बहुत ही डिफरेंट मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं, और आजकल कोशिश ये की जा रही है कि जैसे कि हम लोग T20 में ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, वन डे में टिक कर खेलना पड़ेगा, क्या सेम प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट में खेलें या फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, T20 में यंग अलॉट इंट्रोड्यूस किया जाए तो बेटर है?
3: देखिए T20 निश्चित तौर पर कि आपको एक ही स्पेल में मैच का रुख बदल सकता है, आपको आते से ही पहली गेंद से मारना शुरू करना पड़ता है, और 50 ओवरों का जो क्रिकेट है उसमें आपको टिक कर खेलना है। लेकिन अभी आप ज़्यादातर टीमों को देखिए तो जो फलक्रम होता है, जो कोर ग्रुप होता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर हम अपनी महिला टीम की भी बात करें तो ऑलमोस्ट वही टीम है, ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवरों का। तो अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए आप, कि आप वो T20 में भी आपने देखा IPL में किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे अब तो वो रिटायर ही हो चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अच्छी

0: प्रतिभा है तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। ये जरूरी कतई नहीं है कि T20 के लिए अलग टीम हो, और लेकिन जब बात होती वर्कलोड मैनेजमेंट की,
1: जी
0: वहां ये बात आती है कि जो अलग अलग किस रेस्ट की जरूरत है, आप एक सीरीज खेल रहे हैं दूसरी सीरीज नहीं खेल रहे, तो
1: जी
0: वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर आता है। लेकिन आप जो अगर ये कहें कि एक खिलाड़ी में प्रतिभा है कि वो सिर्फ T20 खेल सकता है और वो वनडे नहीं खेल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है।
1: क्योंकि अभी रिसेंटली हरमनप्रीत को लेकर काफी चर्चा हुई कि वेदर शी इज फिट फॉर T20 एंड शी शुड बी स्टिकिंग विद ODI।
0: देखिए, जब हमारे यहाँ फैंस जो होते हैं ना, वो सिर पे भी बिठाते हैं और क्रूअल भी बहुत होते हैं, और मेमोरी स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ये भूल जाते हैं कि टीम वर्ल्ड कप विनर टीम है, और अभी बात होने लगी कि रीथिंक नहीं करना, रीसेट करना है इस टीम को, और हरमनप्रीत टीम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जो आखिरी मैच था उसमें उनकी ही इनिंग थी कि इंडिया 170 तक पहुंच सकी है। तो ये सब तो चलता रहेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत तुरंत प्रतिक्रियाएं आती हैं। और जो अक्सर मैं सुनती हूँ खिलाड़ियों को, चेतन सर बिल्कुल इसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कि जो मैदान के बाहर का नॉइस होता है वो हमें अफेक्ट नहीं करता, तो ये जो नॉइस है वो सोशल मीडिया का नॉइस है, वो मीडिया का नॉइस है, तो वो प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज्यादा, उनका फोकस जो रहता है वो अपने प्रदर्शन पर रहता है। और कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल का हो, वो हारने के लिए कभी नहीं मैदान पे उतरता।
1: वेरी ट्रू।
2: वैशाली, आप कुछ कहना चाहेंगी, सोशल मीडिया कितना प्रभावशाली हो रहा है प्लेयर्स के लिए, उसके बाद चेतन भाई बोलेंगे।
3: एक्चुअली सोशल मीडिया पे ये देखा जाता है कि जैसा आप दिखाते हैं वैसा आपको समझना पड़ेगा, क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि उसका प्रभाव आप पे कैसा पड़ रहा है या लोगों के पे कैसा पड़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको समझ आता है कि किस प्लेयर ने कहाँ पे कैच ड्रॉप किया, कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी था, या बैटिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर बैटिंग जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि किस वे में हम बॉल स्विंग हुआ, कितना हुआ। एंड उसके बाद अगर हम विकेट कीपिंग की भी बात करें तो वहां पर भी हम जज कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को कि किस वे में कौन सा प्लेयर बेटर है और कौन प्लेइंग इलेवन के अंदर खेलने के लिए लायक है और कौन नहीं है। तो वो हमारी जजमेंट देखने से, मैच को देखने से होती, नॉट ऑन द शॉर्ट रील्स देख के हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं।
1: जी जी, बिकॉज चेतन आप तो बहुत ही इंटेंसली मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, प्रो एंड कॉन सोशल मीडिया के काफी हो सकते हैं, और जैसे मुना ने बोला कि ज्यादातर जो है वो जीरो नॉइस कर देते हैं क्रिकेटर्स, वाकई ऐसा हो पाता है? बिकॉज दे एवरीबडी हैज अ मोबाइल, ऑल्दो हमने सुना था कि अलाउड नहीं होता, बाकी आप ही ज्यादा बता सकते हैं कि कितना मोबाइल यूज कर सकते हैं।
4: देखिए, मुझे नहीं लगता कोई अफेक्ट करता है सोशल मीडिया, या मीडिया को कोई चीज अफेक्ट करती है प्लेयर्स को, और ना ही ध्यान देने की जरूरत है, वो किसी को अफेक्ट नहीं करती। बिकॉज अगर आप देखेंगे 90% चीजें जो चल रही होती है मार्केट में, बिकॉज आई वॉज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रशियन सेलेक्टर्स, तो 90% चीजें होती हैं वो मतलब आसपास नहीं होती जो अंदर चीजें हैं, तो वो इसलिए प्लेयर्स को मालूम होता है कि जो चीज चल रही है, इवन सेलेक्टर्स को मालूम होता है जो चीज चल रही है वो आसपास नहीं है, बिकॉज मेन चीज तो मालूम ही नहीं है और ना ही कभी वो जिंदगी में बाहर आएगी, और क्या है क्या नहीं, और उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस, बिकॉज अभी जैसे मैं मोना जी अभी बात कर रही थी हरमनप्रीत का, हरमनप्रीत इज मतलब शी इज ए लीडर, शी इज नॉट अ कैप्टन, शी नोज हाउ टू लीड ए साइड, एंड कैप्टन और लीडर में, कैप्टन तो कोई भी बन जाता है, लीडर बनना बहुत मुश्किल होता है। वर्ल्ड कप्स जताने अपने आप में बहुत बड़ी बात आती है। हिंदुस्तान इंडिया की अगर आप बात करें, कितने साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने कैप्टन हैं जिन्होंने हमें ICC वर्ल्ड कप जितवाया, कपिल देव इज नंबर वन, नंबर टू इज महेंद्र सिंह धोनी, नंबर तीन इज रोहित शर्मा, नंबर चार इज सूर्य कुमार यादव, और हाल ही में अभी कैप्टन बने थे और वो बने, ओनली 4 कैप्टन्स इन सो मेनी ईयर्स। तो कैप्टन्स तो बहुत बने हैं, लीडर्स बनना बहुत मुश्किल होता है। तो कभी कभी जब पब्लिक उठकर बात करती है ना हमारे लीडर्स के बारे में, दुख लगता है। देखिए, बहुत शॉर्ट मेमोरी रहती है कि अभी आप जिताकर आए तो आप राजा हैं, नहीं जिता के आए तो आप रंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड सपोर्ट द गेम को सपोर्ट करें, और हार को कैसे आप स्वीकार करें बहुत इंपॉर्टेंट है। हार जीत पहलू है स्पोर्ट्स में, हर समय आप जीत नहीं सकते। आज ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग यहाँ बैठकर बोल रहे हैं ना अच्छी खेल रही है, अगर नहीं तो हम कहें नहीं वो अच्छे नहीं खेले, इंडिया अच्छी खेली थी लेकिन वो किस्मत खराब थी, इंडिया हार गई। नो, ऑस्ट्रेलिया प्लेड

0: better cricket, they deserve to win, they won it. This is sportsmanship. And that should come in our fans. कि नहीं अच्छा है ठीक है हाँ जो गलतियां वो तो हम बोल ही रहे हैं गलतियों पे यू हैव टू गो बैक ऑन द ब्लैक बोर्ड. वो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं इंडियन टीम के साथ वुमेन्स इंडियन टीम के साथ और यू हैव टू गो ऑन द बोर्ड एंड रेक्टिफाई थिंग्स.
1: राइट देन याद दिला दें कि ये जो डिस्कशन आप सुन रहे हैं इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं और ये डिस्कशन जो है ये वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल के ऊपर हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है. 150 रन बनाए थे इंग्लैंड ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से मैच जीत लिया. 17.1 ओवर में ये मैच खत्म कर दिया. आंकड़े बता रहे हैं कि विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में वो टीम जिसने अनबीटन रन रखा अभी तक इंग्लैंड ने रखा था साल 2009 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था और ऑस्ट्रेलिया ने ये तीसरी बार ऐसा किया है कि पूरे वर्ल्ड कप में वो एक भी मैच नहीं हारे. 2010 में 2023 में और 2026 में T20 वर्ल्ड कप अनबीटन वो जीते हैं. चेतन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी हमारे साथ मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ हमारे इस पैनल में जुड़ी हैं और मुझे लगता है गीतांजलि पैनल में एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो है हमारे नए कॉलर और देखते हैं कि वो कहां से बोल रहे हैं.
2: हेलो हेलो.
1: राइट देन आई थिंक थोड़ी देर में उनके पास आते हैं लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ टेकअवेज हो वैशाली अगर हम अच्छी परफॉर्मेंसेज की बात करें तो हम दीप्ति की वो परफॉर्मेंस कैसे भूल सकते हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक धुआंधार गेंदबाजी की 5 विकेट ली. बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस उनके बन गए मेरे ख्याल से उससे बेहतर कर तो सकती हैं लेकिन यादगार वो रहा. श्री चरणी भी 4 for 19 सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस वर्ल्ड कप अगर हम बोलर्स की बात करें तो ये एक अचीवमेंट है भारतीय बोलर्स के लिए.
3: बिल्कुल और राधा राधा यादव भी है आप शायद ऐड करना भूल गए उसे भी वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट. एंड वहाँ पर दीप्ति शर्मा ने जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी की थी. तो यहाँ पर दिखाता है कि आप जब आपका कॉन्फिडेंस अप होता है तो आप कैसे अच्छी और परफॉर्मेंस दे सकते हैं जैसे कि दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फील्डिंग में दी एंड उसके बाद उनकी बैटिंग में भी हुआ. एंड अगर मैं बात करूँ श्री चरणी की एक यंग प्लेयर है एंड वुमेन टीम के अंदर ऐसा यंग प्लेयर राधा यादव के बाद जो राधा यादव एज अ बेस्ट फील्डर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर बोली जाती है लेकिन अब एक और नाम जुड़ गया श्री चरणी जो बेस्ट बॉलर बोली जाती है. दोनों यंग प्लेयर्स हैं तो अब आने वाले टाइम पे यंग प्लेयर्स काफ़ी अच्छा खेलेंगे और उनका कहीं ना कहीं दबाव बनता रहेगा और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलना बहुत जरूरी है उनको क्योंकि उनसे जो एक्सपीरियंस उनको है वहाँ से वो उनको गेन करना भी बहुत जरूरी है.
2: मोना जितने भी ऐसे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं रेप्यूटेड टूर्नामेंट होते हैं इनकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात होती है कि दे कम आउट विद अ ब्यूटिफुल स्टोरीज और यू बींग सच अ सीजन्ड जर्नलिस्ट आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग लवली स्टोरीज टू टेल. कोई ऐसी आपकी फेवरेट क्रिकेटिंग स्टोरी जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है आप शेयर करना चाहें ऑन दिस प्लेटफॉर्म?
4: देखिए ऐसी तो बहुत सारी है. जब हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता था तो काफ़ी प्लेयर्स के बारे में स्टोरीज आई थी. मुझे ऋचा घोष का याद आ रहा है कि जब वो खेलना शुरू किया था सिलीगुड़ी में तो कोई लड़कियां वहाँ खेलती नहीं थी लड़कों के साथ वो खेलती थी और उसी से उन्होंने अपने खेल में वो ताकत पैदा की उस तरीके की वो शॉट लगाती थी और रॉयल बंगाल टाइगर का टैटू बनाया था उन्होंने अपने हाथ पर कि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है. तो काफ़ी सारी जब आप जीतते हैं तो बहुत सारी कहानियां आपकी सामने आने लगती हैं और बहुत मोटिवेशन. अभी एक क्रांति गौड़ की मैं स्टोरी सुन रही थी कि उनकी मदर को उनकी ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी एक क्रिकेट किट खरीदने के लिए. तो कहां हमने सफलता हम सब देखते हैं लेकिन उसके पीछे कई लोगों का जो योगदान होता है कई सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं.
2: आई एम श्योर हम लोग पूरी रात अच्छी अच्छी स्टोरी सुन सकते हैं लेकिन हमारे कॉलेज में वो अपनी भी स्टोरीज बताना चाहेंगे. एक और कॉलेज जुड़ गए हमारे साथ. हेलो
5: नमस्कार सर. मैम
2: जी नमस्कार. नाम बताइए अपना.
5: हम आकाश कुमार बोल रहे हैं बिहार पूर्वी चंपारण से.
2: जी आकाश पूछिए क्या पूछना चाहते हैं.
5: सर मेरा पहला सवाल है सर कि ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड का फाइनल जब जब होता है सर उसका भी दबाव से इंग्लैंड के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया का दबाव रहता है इसी वजह से एक तरफा मैच चला जाता है क्या?
2: जी, एक्चुअली हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं प्रेशर के बारे में, दबाव के बारे में।

0: लेकिन एक चीज मैं चेतन जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने पहले कहा आप सिलेक्टर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर रहे हैं, और बहुत सारे अभी भी मेंटरिंग आप बच्चों की करते हैं, इतने सारे जो आजकल कैंप्स लगाए जाते हैं जिसमें लोअर स्ट्राटा, जिसे अभी जैसे बता रही थी मोना कि कैसे जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते, हाउ दे गो टू एनी लेंथ टू बी अ क्रिकेटर, तो इसमें आप कैसे, हाउ यू हैव दैट आई, द कीन आई टू फाइंड आउट द टैलेंट? What's the process? People who are listening right now, the youngsters who want to really come in, they can't really afford much. What exactly would you like to tell them?
1: देखिए आजकल अगर टैलेंटेड क्रिकेटर है कोई, वो आपकी आंखों से नहीं दूर नहीं होगा. अगर आप बेशक जितने मर्जी बच्चों के बीच में हैं तो बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है. कोचेस की आंख इतनी अच्छी होती है कि इट टेक्स ओनली फॉर ए बेटर, मतलब 6-7 गेंदों में समझ आ जाती है. देखिए क्या है कि एक जो हुनर है ना वो ऊपर वाला आपको देता है और देन उसको तराशता एक कोच है. तभी तो कहते हैं ना हीरे को तराशता कौन है, तो वो कोच है. तो वो आपका टैलेंट नहीं छुप सकता और टैलेंटेड जो बच्चा है वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा. इमटेरियल आजकल देखिए बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर जाकर बच्चा खेल सकता है. देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. और मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे को लेकर कोई ज़्यादा समस्या है कहीं भी. अगर अच्छा क्रिकेटर है उसको कोई भी अपनी अकेडमी में, या मतलब मैंने जितना आज तक सुना है, बिकॉज जितना मैं सुनता हूँ बहुत क्रिकेटर्स की है, दे लव टू हैव गुड क्रिकेटर, बिकॉज सबको तराश के देश के लिए तैयार करना है. उनका नाम होता है, कोचेस का मेहनत करते हैं. देखिए आसान नहीं होता एक प्लेयर को छोटी उम्र से बड़ा तक करना और वहाँ जाकर देश के लिए खेलना, बिकॉज एंड ऑफ द डे ओनली 15 प्लेयर्स सेलेक्टेड टू प्ले फॉर द कंट्री. लाखों करोड़ों बच्चों में से 15 ऊपर जाते हैं. बहुत मुश्किल काम है.
0: मैमथ टास्क.
1: या तो वो जो टैलेंटेड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आजकल बहुत स्कूल क्रिकेट भी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. एक जमाने में अपॉर्चुनिटीज थी नहीं. तभी मैं हर युवा बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहता हूँ कि देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रैब इट जहाँ आपको मिलती है. इतनी क्रिकेट अवेलेबल है आज के समय में यंगस्टर्स के लिए कि यू कांट इवन थिंक अबाउट इट. और जब से ये 3-3 टीम्स बनती है, आप देखिए आईपीएल के साथ 3 टीम्स, कितनी अपॉर्चुनिटीज अपना अपना टैलेंट दिखाने के लिए. देन अगर उसके बाद भी आप नहीं ब्रेक इन कर सकते तो मतलब या तो आपके कहते हैं ना किस्मत में नहीं लिखा हुआ और या फिर आप कहीं गलतियां कर रहे हैं. तो अदरवाइज टैलेंट को तराशना, इट्स वेरी इजी फॉर द कोच कि पता करना कौन से लड़के में वो हुनर है और उन प्लेयर्स को जाने नहीं देते कोचेस, तो पकड़ के रखते हैं उनको.
0: चेतन थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज बहुत सारे क्रिकेट लवर्स जो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और मैं तो हर समय ढूंढता रहता हूँ ऐसे प्लेयर्स, कहीं भी मिले तो वी विल ट्राई एंड पास ऑन द मैसेज टू द स्टेट्स एज वेल एज टू द क्रिकेट अकेडमीज. इवन हमारे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत अकेडमीज चलाते हैं कि ये लड़का अच्छा है इसको रख लीजिए. बिकॉज मैं तभी कहा ना अच्छा क्रिकेटर कोई नहीं छोड़ेगा और वो मैटर ही नहीं करता कि उस बच्चे के पास ऐसे हैं कि नहीं है.
0: That's great to hear.
2: Right then, player of the match, ये डिस्कशन आप सुन रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो विजयी ट्रॉफी पकड़ाई जाएगी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को, जो बन गई है वर्ल्ड चैंपियंस और 7वीं बार उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है. 2010, 2012, 14, 18, 20, 23 और अब 2026 में वो वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग बात की जब चर्चा चली चुकी है तो वैशाली मोना आपसे जानना चाहेंगे, इंग्लिश विलो, चेतन भाई तो बता ही देंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, विलो जो लकड़ी है वो आती है इंग्लैंड से, पूरे वर्ल्ड ओवर में चेतन भाई वो विलो जो है हेल्थी रहती है. लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो बैट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके बल्ले अब इंग्लैंड के प्लेयर्स, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर्स जो हैं वो उन बल्लों को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें खेल रहे हैं. वैशाली सबसे पहले आप.
3: जी बिल्कुल, क्योंकि एक बैट के अंदर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर कैसे स्ट्रोक्स हैं एंड उसको अगर हम जब टैप करते हैं बॉल तो वो कितना आपको बैट पे बाउंस देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि बैट को चेक करना और आपका आपके हिसाब से उसका बैलेंस कैसा है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक प्लेयर का बैलेंस अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है एंड उसके साथ उनका जो बैट का वेट होता है, हर प्लेयर का बैट का वेट अलग अलग होता है. तो वो एक और वहाँ पर वो कौन से बैट के साथ कम्फर्टेबल है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स के लिए. तो ये मैटर करता है एंड इट्स गुड कि अभी आजकल काफ़ी अच्छे इंग्लिश

0: इंग्लिश बिलो बैट आ गए हैं तो आप भी यूज कर
1: इंडिया
0: लो।
1: इंडिया आते हैं और वहां से फिर इंग्लैंड जाते हैं और साउथ अफ्रीका जाते हैं। मोना, आर यू सरप्राइज्ड?
2: नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि जो हमारी राष्ट्रीय खेल नीति आई है उसमें मेजर जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि भारत में खेल साजो सामान निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इतना सारा वो अब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो उस पर काफ़ी फोकस है। और मुझे लगता है कि अभी पीछे एक सम्मेलन भी हुआ था स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स का, तो शायद मेरठ के बल्ले तो पहले से बहुत फेमस
3: बहुत
2: है
3: फेमस
2: कश्मीर
3: है।
2: विलो, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है। और जैसे आपने कहा कि अब विदेशी खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं और भी खेलों में जो स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट देखने को मिले।
4: जो आपने बात की मोना जी, मैं जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है इंडिया का वर्ल्ड में आई थिंक नंबर वन है। मतलब जिस तरह के आप, इट्स नॉट क्रिकेट, इट्स क्रिकेट तो है ही, उसके साथ आप फुटबॉल की बात करें, आप मतलब जलंधर एंड मेरठ आर द टू प्लेसेस जहां पर बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है और भी होती होंगी जिसका हमें आइडिया नहीं, बिकॉज हमारा क्रिकेट में मनीष बेसिकली वी टॉक अबाउट जलंधर एज वेल एज मेरठ। तो बट जब हम इन फैक्ट्रीज में विजिट करते हैं हम देखते हैं कि जिस अमाउंट पे फुटबॉल्स बन रही हैं, जिस अमाउंट में हॉकीज बन रही हैं, स्पोर्ट्स आप किसी कंट्री में, मतलब क्रिकेट प्लेइंग नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, आई कीप गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आपको हर जगह पर इंडियन इक्विपमेंट नज़र आता है, पैड्स, ग्लव्स, जो वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है ना, बैट को आप थोड़ा साइड पे रख दें वो तो मतलब मैसिव है इंडिया का जो मार्केट है एंड वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ इट कि जो चीज़ें हैं वो जब हम जाकर देखते हैं कि भारतीय कंपनीज की इस्तेमाल होती है वर्ल्ड वाइड, इट्स अमेजिंग। वो आपका ना दिल को बड़े सुकून मिलता है, मज़ा आता है देखकर कि आज हमारी वो इक्विपमेंट जो हमारे समय में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था ना मनीष, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेकर आया था स्पोर्ट्स, मतलब था अगर मैं थाई पैड की बात करूँ, चेस्ट गार्ड की बात करूँ, उस समय हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। और आज देखिए हमारे देश से हर चीज़, हर वर्ल्ड के हर कोने में वो इक्विपमेंट सप्लाई हो रही है, तो इट्स अमेजिंग एंड इट्स रियली प्लेजेंट फॉर आईज, यू नो, जब हम जाते हैं वर्ल्ड वाइड हर जगह, मतलब वर्ल्ड में क्रिकेट इक्विपमेंट की बात करूँ, इंडियन इक्विपमेंट हैज बीन यूज्ड।
3: एंड यू नो, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि क्रिकेट एक रिलीजन है खासकर हमारे भारत में, और बहुत पैशनेटली लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को। और जैसा हम पहले कह रहे थे चेतन, आप भी बोल रहे थे बार बार कि लोगों को एक थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, कभी कोई परफॉर्मेंस नहीं अच्छी भी होती तब भी बी विद योर टीम टू गिव देम कॉन्फिडेंस एंड नॉट पुल देम डाउन। बिकॉज जब हम इनसिक्योरिटीज़ की बात करते हैं ना, तो ये बात भी आती है जब क्रिकेटर्स को पता चलता है कि लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एक ये भी चेतन डर रहता है ना कि हो सकता है टीम से ड्रॉप ना कर दें।
4: नहीं, मैं
3: उतनी सिक्योरिटी दी जाती है उनको।
4: बिल्कुल गीतांजलि, क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी गुड टू ए लिमिट। मतलब ये नहीं कि आप पीछे हाथ दौड़ के पड़ गए कि किसी के, ठीक है, देखिए अगर आप खराब खेलेंगे आपका क्रिटिसिज्म बनता है। इवन हम जब कमेंट्री करते हैं या हम स्टूडियो में होते हैं, हम भी तो बात करते हैं ना, किसी ने खराब शॉट खेला और उसकी वजह से आप मैच हार गए, तो यू क्रिटिसाइज, यू जस्ट स्टे टू द क्रिकेट ओनली। जब देखिए फैंस हैं तो हर चीज़ है, हम फैंस की बहुत इज्जत करते हैं, बट जब वो क्रिकेट एंड क्रिकेट के बाहर चीज़ें चले जाती हैं ना, वो दुख लगती है। आप क्रिकेट की बात क्रिकेट तक सीमित रखे, उसने खराब शॉट खेला, उसने खराब गेंदबाजी की, खराब फील्डिंग की, एक्सेप्टेड, बट व्हेन इट गोज बियॉन्ड इट दैट हर्ट्स, दैट्स इट।
1: तो मैं समझ सकता हूँ कि मध्य रात्रि हमारे भारतीय समय के अनुसार हो चुकी है, लेकिन हम अभी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कि अब ट्रॉफीज जो हैं वो दी जाएं ऑस्ट्रेलिया को, विनिंग ट्रॉफी, इंग्लैंड रनर्स अप रही अपने ही घर में, लॉर्ड्स जो गढ़ है क्रिकेट का, कहा जाता है कि अब इससे बड़ा कोई वेन्यू नहीं है, वहां पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से परास्त कर दिया गया। बेथ मुनी विकेट कीपर बैटर 64-49 और उनको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। एंड ऑफकोर्स फोबे लिचफील्ड ने 48 रन की जो नॉक खेली और 100 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में, वो एक आसान सी जीत तय कर गई ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध।
3: और अब हमारी साझेदारी होने वाली हमारे एक और कॉलर के साथ। हेलो
5: हेलो शीशी, गुरु गौरंग गदाधर नित्यानंद अद्वैत हरे कृष्ण राधे राधे नमस्कार जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभाष है। और मेरा प्रश्न है कि मैं प्रेम प्रदीप दास बोल रहा हूँ श्री कृष्ण चैतन्य जगन्नाथ परशुराम क्षेत्र बैंगलोर से।
3: प्रश्न पूछिए।
5: ये कि अभी जो आप हमारे जो टीम का जो मेंटल मेकअप देखा है ना, जो ऑस्ट्रेलिया जो जिताया, जैसे टीम वर्क जो इतना अच्छा है, तो क्या हमारे टीम में क्या बदलाव ले आ सकते हैं? माने जैसे बोलते हैं ना द टीम दैट प्लेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, माने उनका जो टीम वर्क में और हमारा जो इसमें जो क्या बदलाव ला सकते हैं इंडिया के टीम में, इसको देख के हमारा प्रश्न है।
3: जी बहुत सारी डिस्कशंस, अगर आप सुन रहे हो हमारे कार्यक्रम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमने क्या एडिशन हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, उस बारे में चर्चा जरूर की है। जैसे जैसे अभी आगे चर्चा बढ़ेगी आप और इस बारे में जान पाएंगे। लेकिन एक चीज मोना, बिकॉज ये परफेक्ट मौका है, आप जर्नलिस्ट हैं एंड दैट टू सच अ सीजन वन एक्सपेंशन जो क्रिकेट की हुई है, खासकर ये जो वर्ल्ड कप है मैसिव, 12 टीम्स थी, कहीं आपको लगता है ऑब्वियसली दिस इज गुड फॉर क्रिकेटर्स, बट जैसे आयरलैंड को बीच में लाया गया, सो व्हाट डू यू थिंक दिस एड्स एन एडेड टाइम एंड अ प्रेशर एंड टेक्स अवे द क्वालिटी लाइक यू नो सम ऑफ द पीपल वर सेइंग, और दिस इज रिक्वायर्ड टू फाइंड मे बी मोर स्टेबिलिटी इन क्रिकेटिंग ग्राउंड?
2: देखिए फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है साथ में, ठीक है, 48 टीमें, और बड़ी आलोचना हुई थी कि इससे क्वालिटी चली जाएगी और वो मजा नहीं आएगा जो बड़ी टीमों के बीच होना चाहिए। लेकिन आपने केप वर्दे का नाम सुना
3: जी,
2: कुरासाओ का नाम सुना, तो ऐसे अगर आप एक तरफ बात करते हैं आईसीसी बात करती है क्रिकेट को उन टेरिटरीज में ले जाने की जहां पर क्रिकेट नहीं खेला जाता, इतनी सारी लीग्स दुनिया भर में खेली जा रही है, तो ये जो छोटे देश हैं जिन देशों की आपने बात की जो पारंपरिक रूप से महाशक्तियां हैं क्रिकेट की, अगर उन्हीं के बीच में वर्ल्ड कप करा लिया जाएगा तो फिर इन देशों को इस तरह के एक्सपीरियंस का मौका कहाँ मिलेगा? और आप देखिए कि कितनी बार हमने वर्ल्ड क्रिकेट में उलटफेर देखे हैं जब छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को हराया है। तो अभी T20 फॉर्मेट है, इसमें कोई किसी टीम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एक फेस की बात है, मैच का पूरा नक्शा बदल जाता है।
1: राइट देन, समय आ गया कि अब हम लॉर्ड्स एक बार फिर से चलें, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी, उस बड़ी विश्व कप की प्रेजेंटेशन सेरेमनी अब ऑन है।
6: ऑफ फील्ड अंपायर्स जैकलिन विलियम्स एंड ब्रिंडा राठी। TV umpire Kim Cotton. And fourth umpire Nimali Pereira. We now invite the runners-up, England, to the stage to collect their runners-up medals from Mr. Richard Thompson and Miss Claire Connor. First up, Lauren Bell. Alice Capsey. Tilly Courtney Coleman. Charlie Dean. Sophia Dunkley, Sophie Eccleston, Lauren Filer, Danny Gibson, Danny Wyatt Hodge, Amy Jones, Freya Kemp, Heather Knight, Lindsay Smith, Izzy Wong, and England's captain, Nat Sivabronks.